0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लूट।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: करदर्शन.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं जिंसन आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। टाल मटोल अर्थात टालना, अगर मगर, आनाकानी, अनसुना, बहानेबाजी, डरकाना आदि। टालने का दोष समय की पाबंदी की गुण की ठीक विपरीत है। वर्तमान समय ज्यादातर लोग अति आवश्यक कार्य को टालने वाले रवैये के शिकार है। समय आने पर कर लेंगे या तो बाद में भी हो सकता है, चिंता मत कर, हो जाएगा, अभी तो वक्त है। ये सब फिक्रें टालने की प्रति को दर्शाते हैं। कुछ समय के बाद यह टालना भी व्यक्ति की आदत बन जाती है। चिंता, उदासी, बेचैनी और साथ झंझराहट आदि की वजह से भी व्यक्ति विलंब की स्थिति में आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर टाल मटोल के कारण क्या है। जैसे कुछ व्यक्ति इसलिए मन को टाल देते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी तो उस कार्य को करने का समय ही नहीं आया है, बहुत समय पड़ा है, इसे तो बाद में भी कर लेंगे। और यह प्रतिक्रिया अंत तक बनी रहती है। फिर व्यक्ति आलस्य के कारण उस कार्य को टालता ही रहता है। कुछ लोग इसलिए टाल मटोल करते

भी कार्य में कभी भी सहयोगी नहीं बनते। कई व्यक्ति यह कार्य करना चाहिए या नहीं इस बात का फैसला ही नहीं कर पाते और उस कार्य को टाल देते हैं। कुछ लोग इसलिए भी कार्य को टाल देते हैं कि क्योंकि उन्हें अंत समय में होने वाली भागदौड़ में रस मिलता है और उत्तेजित होकर कार्य करने का आनंद लेते हैं। इससे हो सकता है कि कार्य समय पर पूरा न हो। मेहनत की भी उनको लगातार अधिक करनी पड़ती है, थकावट के कारण परेशान भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है टैलमटोल भी एक विकार है। टैलमटोल के नुकसान क्या है? आत्मविश्वास डगमगाता है, इससे आत्मविश्वास कैसे डगमगाता है? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक टैलमटोल करता रहेगा तो एक दिन कोई भी व्यक्ति उससे काम करवाना पसंद नहीं करेगा। समय पर कोई भी कार्य नहीं करने की इस आदत के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान, दुखी और भागते हुए दिखाई देगा। कार्य को लेकर उसके मन में डर इस कदर बैठ जाएगा कि वह कोई भी कार्य आगे के लिए अपने हाथ में लेने से बचता नजर आएगा। यह टालने की आदत दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाएगी कि हम अनेक प्रकार के बहाने खोज निकालेंगे। टालमटोल की प्रक्रिया यदि लंबे समय तक चलती रहे तो शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर हो सकती है। इसके बाद चिंता, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, अनेक संगी आ जाते हैं। अर्थात आत्मविश्वास डगमगा जाता है तथा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। एक तरफ हम देखते हैं आत्मसम्मान भी कम होता है।

वाले को अक्सर अपनी इस आदत पर गर्व होता है, लेकिन काम टालना एक बुरा विचार है। टाल मटोल करने वाले लोग तनाव से भरे हो सकते हैं, वह यह आदत उनको दिमागी बना सकती है। अहम कार्यों को टाल देने की आदत की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़े हो सकती है, परंतु जो टाल मटोल करते हैं उनका आत्मसम्मान भी कम होता है। एक देते कार्य की जो गुणवत्ता भी उनमें नहीं रहती। कोई काम सामने आता है तो लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर कहते हैं कल सुबह कर लेंगे या दोपहर में कर लेंगे। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और काम वहीं का वहीं रह जाता है। आज का कार्य जुड़कर वह काम और अधिक बड़ा हो जाता है। इससे कार्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ जाती है। फिर यदि वह कार्य जल्दी कर लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता नहीं रहती। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे आकर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। जैसे कि हम देखते हैं टाल मटोल का नियम है इंतजार करो। टाल मटोल करने वाले का जो है प्रिय वाक्य होता है, इसे करने वाला हूँ किसी दिन तो अवश्य करूंगा, और इसका जाप करते हुए अपने वर्तमान अवसरों के प्रति अंधे बहरे और गूंगे हो जाते हैं। टाल मटोल का तो नियम है इंतजार करो, अभी नहीं किसी और वक्त। टाल मटोल बीज है और इसे करने वाला हूँ वह पेड़ है जिससे यह कल का जुनून

उत्पन्न होता है। टाल मटोल के संस्कार को कैसे बदले, कल का काम आज, आज का काम अभी, यही है उसका मूल मंत्र, इस संस्कार को बदलने का। यदि किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि यह काम दो सेकंड बात करूंगा, तो यह आलस्य, अलबेलीपन और टालमटोल की निशानी है। काम से जुड़ी मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि कल का काम आज, आज का काम अभी, तभी हम महान कार्य कर पाएंगे। दुनिया के महान लोगों की आत्मकथा से भी यही सार निकल कर आया है। निश्चय से कहें, मुझे अवश्य करना है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो एकाएक ही आदर्श बनकर प्रकट होता हो। हम जो भी करना चाहते हैं, हाँ, पाना या बनना चाहते हो, उसे साकार करने और उसका फल पाने से पहले हमें उसे शुरू करना होता है। हम अगर आशा, सपने और इच्छाएं छुपा कर रखते हैं, तो उन्हें आजमाने के साहस के बिना दिन, महीने, साल गवा देते हैं, तो वे एक दिन नाकामयाब हो जाते हैं। अतः जिस काम से हम जुड़े हैं, उसे उसके लिए निश्चय से कहें, मुझे अवश्य करना है, मुझे ही करना है, यह कार्य मैंने ही चुना है, तब कोई और क्यों करेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www....
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक रिश्ता हम अपने आप से कायम रखते हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे कि अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके साथ जो रिश्ते हमारे हैं उनके बारे में सोचते थे, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में हमने ये जाना कि सबसे सुदृढ़ सबसे मजबूत रिश्ता हमारा अपने आप से होना चाहिए। जब वो रिश्ता कायम हो गया तो बाकी रिश्तों में भी सौहार्द्रता और मधुरता नजर आने लग सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को लेंगे उसी तरह से हम अपने आसपास जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी ले सकते हैं।

0: और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर रिश्ते को टटोला, चाहे वो घर में था या फिर बाहर। जब हम कर्म क्षेत्र में हैं, जब हम अपने ऑफिस में हैं, चाहे किसी भी तरह का हमारा काम है, हम एक परिवार की तरह वहां रहते हैं अगर, तो फिर रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे माइंडसेट पे, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं उसी ऑफिस में जहां हम काम कर रहे हैं और किस तरह से कई बार हम अपने एंगर को या फिर जो हमें लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता ज्यादा, उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। और क्या ये एंगर जस्टिफाइड होता है, कुछ और ऐसी ही बातें हैं, और किस तरह से अध्यात्म को शामिल करके, किस तरह इस पूरी बातचीत को अपने ऑफिस क्षेत्र में, अपने ऑफिस में भी शामिल करके हम एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति, ओम शांति। सिस्टर शिवानी, सचमुच एक नया रस आने लगता है जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया, उसी हिसाब से मैं बाकी रिश्ते भी कायम कर रही होती हूँ। ऑफिस की बात की हमने, ऐसे पीछे मुड़कर देखें अपनी तीन चार जो हमने सीरीज में हमने बात की है, उसमें यही बात सामने आई कि परिवार की तरह अगर लेते हैं तो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर सिचुएशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़े, क्योंकि एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है एंगर, यानी कि गुस्सा, जो हम मान लेते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो कितना जस्टिफाइड होता है उस पर हम अभी आज बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक थोड़ा सा रिकैप करें और जानें कि किस तरह से वो जो सिचुएशंस थी उनको हमें डील करना है।
1: हमने ईर्ष्या के विषय को देखा था कि जेलसी जब किसी को हमारे से हो जाए तो इट कैन क्रिएट अ वेरी वेरी बिग ऑब्स्टिकल फॉर मी इन माय वर्कप्लेस, क्योंकि एक व्यक्ति को भी अगर मुझसे वो ईर्ष्या हो जाए, वो सबको, अगर चाहे तो, अगर वो बहुत ज्यादा उस पर दृढ़ होकर कार्य करे तो वो चाहे तो सबको मेरे अगेंस्ट कर सकता है बाय सेइंग all sorts of things, by spreading all kinds of information which may be true and in many cases which may not be true. और तब कहीं ना कहीं अपनी stability को maintain रखना, जबकि कभी कभी ऐसा हो जाता कि हम एक तरफ और पूरा office एक तरफ, तो अपनी stability को maintain रखना और कई बार काफी समय तक maintain रखना थोड़ा सा challenging हो जाता, तो उस समय पर अपने ऊपर विश्वास, यही हमें इस परिस्थिति से लेकर जा सकता है कि आई नो वॉट आई एम डूइंग एंड दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने ये सारा फैलाया उसके अंदर तो कोई डर है, तो उन्होंने इसलिए अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, मेरी पोजीशन को नीचे गिराने के लिए मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाई, ये सोचकर कि ऐसा फैलाने से उनकी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। तो उस डर से, उस भयभीत व्यक्ति पर गुस्सा न करके हम रहम की भावना, कंपैशन की फीलिंग रखते, और बाकी जो लोग हैं उनकी भी कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो असर तो करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगे। सो आई कीप माय पॉजिटिव थॉट्स फॉर ऑल ऑफ देम अगेन विद दैट सेम बिलीफ कि नोबडी इज रॉन्ग।
0: एंड अनदर थिंग इज, आपने कहा था कि एक्सप्लेनेशन नहीं देने की जरूरत किसी को,
1: तो फिर देन आई डोंट नीड टू प्रूव ना। अगर मुझे भी डर लगे तो फिर मैं अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं सारे ही अगेंस्ट ना हो जाए। इट्स अ लिटिल फेज जो आएगा बीच में, अगर हम अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अर्थात खुद नहीं डरे और दूसरा दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखे, तो वेरी सून, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, वेरी सून द ट्रूथ विल ऑल बी रिवील्ड, सत्य अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन उस समय के अंदर अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो हम ही नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो किसी को सिद्ध नहीं करना, अपनी बात पर जिद नहीं करना, बस अपने स्वमान में रहना, तो बात आएगी और बात चली जाएगी और सच हिलेगा डुलेगा लेकिन कभी भी डूबेगा नहीं। तो उस विश्वास के साथ अपनी सत्यता की नाव पर रहे, और कई बार जब हम कहते हैं कि वैल्यूज को, हमें आज अपने कॉरपोरेट लाइफ में वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, तो ये भी आपका डिसीजन होगा। तो आप अगेन थॉट डेस्टिनी, तो अगर बिलीफ ये है कि मुझे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, डिसऑनेस्टी पर चलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होना
0: नहीं
1: ही पड़ेगा,
0: चाहती लेकिन उनके कारण
1: व्हाटएवर, ये तो हम अपने आप को मतलब वो क्या कहते हैं प्ली दे देते हैं, जस्टिफिकेशन है हमारे पास। लेकिन अगर ये हमारी बिलीफ है तो सो विल बी माई थिंकिंग, तो मेरा कर्म भी ऐसा होगा और उसका रिजल्ट भी वैसा होगा, और उस डेस्टिनी में फिर खुशी का कहीं ना कहीं कमी तो डेफिनेटली होगी। तो अपने आप चॉइस कीजिए, चॉइस इज ऑलवेज माइंड। तो आई

0: to choose, I have to decide, but then I am responsible. So फिर जो return में result आएगा, result materialistically हो सकता है कि बहुत progression हो, लेकिन internal progression है या regression है.
1: Bottom line comes down to is I am my own master actually. Absolutely. मैं जैसा करूँगा वो कर सकता हूँ.
0: अपने जीवन को अपने principles पर चलाएं, ना कि you know sometimes we say majority is doing this, but it does not mean ki majority jo kar rahe hai wo right hai. Ye zaruri nahi hai ki aaj vartaman samay ki majority jo kar rahe hai wo right hai. Nahi, mujhe right kya feel hota, ye bahut important hai, kyunki result fir mujhe jhelna hai. Wo meri destiny hai, sabki destiny apne apne hogi.
1: So wonderful Shivani, yahan se aage badhte hain aur ek bahut bada mudda jo humne ghar mein bhi uthaya tha, वो बाहर निकलते तो और ज्यादा हो जाता क्योंकि हम उसे जस्टिफाई करने लगते हैं, वो है एंगर. खासकर देखा गया है कि बिना गुस्से के कोई काम नहीं करता. जब तक कि मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगा तब तक कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, और मुझे अपना एक ऑरा क्रिएट करके रखना है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूं या मैं काम करवा के ही बात मानता हूं. ये जस्टिफाइड है. क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकती है?
0: इसमें दो बिलीफ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं. एक है कि अगर मैं इस तरह का एक ओरा क्रिएट करके रखता हूँ, ये बहुत गुस्से वाले हैं, मीनिंग आई क्रिएट एन ओरा विच सेज टच मी नॉट, डोंट कम नियर मी, यू नो आई एम लाइक दिस एंड आप सब मेरे से थोड़ा सा दूर रहिए, मेरे नजदीक नहीं आइए. क्यों? क्योंकि मैं फील करता हूँ कि इस तरह का एक इमेज क्रिएट करने से लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फियर और रिस्पेक्ट को मिक्स कर दिया कि जहां फियर होगा तो रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो डर कर चलेंगे, अच्छा ये आ रहे हैं इनसे डर कर रहना, इनके सामने कुछ नहीं बोलना है, इनके आगे कुछ नहीं बोलना, वी फील दैट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. लेकिन रिस्पेक्ट इज लव, और लव एंड फियर
1: कांट गो टुगेदर.
0: तो ये रिस्पेक्ट आपको लगेगा कि ये रिस्पेक्ट है, बट दिस इज ओनली फियर, ये तो डर है. और एक लीडर वो होगा जिससे लोग मिलना चाहें, जिसके लोग नजदीक आना चाहें, ना कि जिससे लोग दूर भागना चाहें. तो अगर हम जबरदस्ती अपने अराउंड एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने से दूर फेंक रहे हैं, वी आर रिपेलिंग देम, दे विल मूव अवे. ये रिस्पेक्ट नहीं है. जूनियर्स मेरे सामने कुछ नहीं बोले, मेरी हर बात को माने, जो मैंने कह दिया वो ही राइट है, this is not respect. Respect would be ki they should be able to say everything that they think about, unke mind mein chote se bhi baat aaye and they would want to share it with us, that is respect. Tab wo bonding hai. To wo ek energy field apne around nahi create kare, kyunki this is fear.
1: यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है कि अगर हम किसी भी ट्रेनिंग में भी देखते हैं, जब मैनेजमेंट की बात हो रही होती है तो ये कहा जाता है कि ठीक है, बी ओपन. आज के सिनेरियो में भी देखें, बी ओपन, लेट देम बी योर फ्रेंड्स, लेट देम कम नियर यू, बट देन कीप अ डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस जरूर दे के रखिए आप कि आप ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि आपको काम करवाना है. ये कहां तक सही है, कितनी दूरी तक हम उनके साथ, अगर हम परिवार की बात मान रहे हैं तो परिवार में रिश्तों में कोई भी दूरी नहीं रहती है.
0: कोई दूरी नहीं होगी, कोई दूरी नहीं हो सकती है. एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जितना नजदीक का होगा उतना ही वो बच्चे उल्टा पेरेंट की बात मानेंगे, पेरेंट को ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, वो मानना चाहेंगे. सेम विल हैपन इन द ऑफिस. जितना वो मेरे नजदीक होंगे, जितना वो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जितना वो अपनी हर आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकेंगे और हम भी उस आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे, उस आइडिया को अप्लाई भी करेंगे, तो उतना ही वो मेरी हर कही हुई बात को मानना चाहिए.
1: ट्रस्ट होने जाएगा,
0: ट्रस्ट होने लगा,
1: बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा. मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो वो ट्रस्ट की पेरेंट चाइल्ड में भी हमने यही किया.
0: एब्सोल्युटली. और पेरेंट चाइल्ड में ट्रस्ट क्यों बिल्डअप होता है? क्योंकि चाइल्ड को ये पता होता है कि पेरेंट हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, इवन इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. Even if there is a difference of opinion, एक बच्चे को अंदर ये जरूर पता होता है कि पेरेंट कभी भी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता. It is impossible. अगर एक पेरेंट चाहे भी तो भी वो नहीं सोच सकता. Can the same thing happen between a senior and a junior? के junior जो है उसके अंदर इतना faith हो कि ये जो मेरे top level पर है, जिनको मुझे answerable हूँ, वो कभी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते हैं. मतलब उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है.
1: लेकिन आज के इस वक्त में हम कहीं भी मतलब अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ तो मुझे कहीं कोई

0: था, ऑफिस या कोई ऐसा नहीं नजर आता।
1: तो ये तो हमें क्रिएट करना ना, जैसे हम परिवार क्रिएट कर देंगे, सी इट ऑल विल हैपन एट द थॉट लेवल, जहां वो नेगेटिविटी इम्प्योरिटी एंड इट कैन हैपन विद इन डेज। मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट को कुछ एक हफ्तों के लिए सिर्फ करिए एंड विद इन अ मंथ और सो आपके ऑफिस का वायुमंडल चेंज होने लगेगा, अगर आप उसको अंश से भी हटा दें। और जब आप समझेंगे कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा सदस्य है, आप उसके लिए बुरा कैसे सोचेंगे? जब आप उसकी गलती को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, उसको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। इसका बहुत सारा रोल इसमें उस सीनियर पर है। उस सीनियर को वो ट्रस्ट ट्रांसमिट करना पड़ेगा। पहले आपको ट्रस्ट पहले करना पड़ता है। हम आज तक उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आप विश्वास के पात्र बने तो हमने सारा उनकी तरफ रख दिया। आप जब विश्वास के पात्र बनेंगे तब हम ऑटोमेटिकली विश्वास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज दिन तक हमारा जो कार्य करने का तरीका था, अदर पीपल हैव टू डू एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच,
0: वो विश्वास के लायक ही नहीं लगते हम।
1: तो सी इट वाज ऑलवेज द बॉल इज इन योर कोर्ट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मैंने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो आप करें, आप अपने ऊपर मेहनत करें, आप विश्वास के पात्र बनेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। व्हाई नॉट द अदर वे अराउंड, कि मैं आप पर विश्वास करूं, इतना विश्वास करूं, फिर वो विश्वास जब आप तक ट्रांसमिट हो तो आप विश्वास के पात्र बन गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। वो कैसे आपके अंदर वो पावर आए? क्योंकि वो विश्वास आपको इतना सारा ट्रांसमिट किया गया। सो नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स हियर नेवर देयर, कि इनको क्या करना है, हर एस्पेक्ट पे, हर क्षण मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, हर रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक दिस मोर ब्यूटिफुल, उसके लिए मुझे क्या करना है। अभी तक था इन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट चेंज, इन्हें चेंज करना, इन्हें चेंज करना, एंड नाउ इट इज आई हैव टू चेंज। एंड आई हैव टू चेंज कोई जबरदस्ती नहीं, बट आई हैव टू चेंज इट्स ओनली गोइंग टू मेक मी मोर ब्यूटिफुल।
0: इनफैक्ट इट बिकम्स इजियर, यू नो, वंस वी से कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेरे संपर्क में है तो हमारा कोई कनेक्शन तो है,
1: एब्सोल्युटली,
0: तो उसको हम बेहतर ही क्यों ना करें, हम क्यों उनके बारे में नेगेटिव सोच के एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो,
1: तभी तो आपको फील होगा ना कि आप एक परिवार में, जब आप वो सेम तरह से वर्क करेंगे। वो सिर्फ एक इसी टूडे व्हाट हैज हैपेंड, पीपल इन द इंडस्ट्री आर सेइंग कि यू नो वर्क कल्चर बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो यू नो कोई हायरार्की नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, बाह्य चीजों में परिवर्तन कर दिया। हमें सर मत बुलाइए, हमें नाम से बुलाइए, कोई अलग अलग कैबिन्स नहीं है, सभी आसपास इकट्ठे बैठे हुए, बाह्य चीजें करने से नहीं होगा ये, दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। अभी क्या हो रहा है, बाह्य चीजें तो परिवर्तन कर दी, लेकिन इंटरनली आई एम द बॉस, यू बेटर रिमेम्बर दैट, इट वॉन्ट वर्क। इंटरनली इफ आई कैन से वी आर फैमिली, देर इज नो बॉस, देन इट विल वर्क। द अदर पर्सन कैन कंटिन्यू कॉलिंग यू सर इफ यू वॉन्ट टू, they can continue calling you sir and still feel that you are family.
0: In fact we always call our mom only.
1: Yeah, you're not calling her by name. aap kabhi apne maat pita ko naam se nahi bulate, lekin sambandh kaisa, to kya bulate hain, door par kya likha hai, usse bahut zyada matter nahi karta, kyunki humne body consciousness, again to body consciousness hone ke karan humne sari bahar ki cheezon ko parivartan kar diya, andar jaise the वैसे ही है, और क्योंकि जैसे थे वैसे हैं, तो जो रिजल्ट है वो भी जैसी थी वैसे ही हो गया। तो इंटरनली वो जो परिवर्तन आएगा, तो अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा भी उस जूनियर और सीनियर के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि साथ वाले को, एंड दिस कैन हैपन बिटवीन कलीग्स ऑल्सो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू पीपल, क्योंकि एक विश्वास है कि आप मेरे लिए गलत कभी नहीं सोच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मुझे आपकी बात उस समय ठीक भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो करना चाहूंगा, नॉट क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हैं, मैं दिल से उसको फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि संपूर्ण विश्वास है कि आप जो कहते हैं उसमें मेरा भला जरूर समाया हुआ होता है। तो ऑर्डर देने की बात कहाँ आएगी, ऑर्डर क्यों देना पड़ेगा आपको, ऑर्डर देंगे तो मुझे जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। और इस विश्वास से अगर हम काम करेंगे, नो ऑर्डरिंग, नो इंस्ट्रक्शन, इट विल जस्ट फ्लो, वर्क विल जस्ट फ्लो लाइक इट फ्लोज एट होम। घर पे कौन ऑर्डर करता है एक दूसरे को, जिम्मेवारी समझकर, एक दूसरे का रिगार्ड रख के हम काम करते हैं।
0: इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, इट मेक्स मी फील सो गुड कि जो भी मेरे बॉस है या मुझसे बड़े हैं, वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। इवन इफ आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट ही इज सेइंग, आई शुड डू इट,
1: आई विल डू इट,
0: आई विल डू इट।

0: You know, it leaves you with a very good feeling, and we're all looking for care.
1: Yes, and आपको वो बहुत हल्का रखेगा when you know. अच्छा, normally क्या होता है office culture में आप बहुत insecure हैं क्योंकि आप अकेले हैं. आपको ये अपनी position को संभाल के चलना है.
0: कोई और नहीं है मेरा क्या करना.
1: वो सारे internal politics में आपको ये अपने आप को बचा कर चलना है. लेकिन जब आप इस तरह के संबंध बनाते हैं जहाँ आपके साथ हैं लोग, people care for you, people are there for you at every step, you're not alone. You're together in a family. You are without fear, and then you go to work without any fear. Tab you love your work. Fear and love.
2: Very nice. But Sister Shivani, is it possible to achieve? Again, यहाँ से बाहर निकलते ही वो questions शुरू हो जाते हैं. अभी तक हम घर पर थे तो घर पे तो फिर भी लग रहा था कि किया जा सकता है. लेकिन I can now say it with my experience that it can be. Again, you'll have to show me the path.
1: It can be. See, it's very simple. अगेन ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पे ज्यादा सोच ले एक बार, समझ ले, लेकिन उसके बाद करके जरूर देखें. कई बार क्या होता है, सोचने और समझने की स्टेज तक उसको रोक देते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी के प्रभाव में जब आते हैं तो हम वो जो सुनी हुई बात थी उसको लगता है देखा कहाँ काम करती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट वॉन्ट वर्क. आज के सिनारियो में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. उसको करके देखें, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव कर्म का रिजल्ट नेगेटिव हो, ये हो नहीं सकता. ये पॉसिबल नहीं है. तो पॉजिटिविटी देते जाइए. रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है. एनर्जी इज लव एंड एनर्जी इज पावर. हम पावर एक्सचेंज कर रहे हैं सारा दिन एक दूसरे के साथ. लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, पावर वी थॉट वॉज मेंट टू बी कि आई एम ओवर यू, दैट इज पावर, आप मेरे से जूनियर है. लेकिन पावर इज एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या, कि मैं आपको पावर दूं, रादर देन आई बिकम पावरफुल ओवर यू, आई गिव यू सो मच पावर दैट यू गेट एम्पावर्ड. सशक्तिकरण, दूसरे को भी शक्तिशाली बना दे, लेकिन उसके लिए खुद बहुत शक्तिशाली होना
0: पड़ेगा.
1: हाँ, तो खुद
0: पे हम ये कहें कि हम शक्तिशाली ही
1: हैं. एब्सोल्युटली.
0: और आप भी शक्तिशाली बने.
1: राइट. तो उसके लिए हम वो पावर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं. जब हम अपने अंदर वो शक्तियों को भरते हैं तो निराकार परमात्मा हमें छोटी छोटी बातें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अन्य आत्माएं जिनके साथ हम कर्म क्षेत्र पर या परिवार में भी आते हैं उनको हम शक्तिशाली कैसे बनाते हैं. सबसे पहले उसके लिए शुभ भावना, जिसको हम कहें गुड विशेस. जब हम शुभ भावना, गुड विशेस किसी के लिए रखते हैं, वो इतना हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है. एंड वो गुड विशेस जब आप तक ट्रैवल करेंगी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, क्योंकि गुड विशेस मतलब पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को ट्रिगर कर देंगे,
0: जागृत कर देंगे. आई कैन फील इट,
1: है ना. तो इफ इवन इफ यू हैव अ लिटिल डाउट कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ ये काम या नहीं कर सकता, मेरे को नहीं लगता मेरे से होगा, यू नो वट एवर, कुछ भी कर, वो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी दूसरी आत्मा से, वो आपकी पॉजिटिविटी को भी स्ट्रांग कर देगी. तो हर आत्मा के प्रति जिसके भी हम कॉन्टेक्ट में आते, शुभ भावना, चाहे वो कुछ भी करे, हमारी शुभ भावना की जो क्वालिटी स्टॉक है वो कभी कम नहीं होना चाहिए. देते जाएं, देते जाएं, दुआएं जिसको बोलते हैं, हर एक को देते जाएं. और दूसरा है ट्रस्ट, अपने का विश्वास. विश्वास करने के वो लायक बने नहीं, हम उन पर विश्वास करें. विश्वास एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसमिट होगी आप तक और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगी. आपको अगर कोई डाउट भी था अपने ऊपर, आप अगर डिसऑनेस्ट रास्ते पे चलने की सोच भी रहे थे, तो वो विश्वास की शक्ति जब आप तक पहुंचेगी तो वो आपकी नेगेटिविटी को सबमर्ज कर देगी और आपकी पॉजिटिविटी को इमर्ज करेगी. एंड छोटी छोटी चीजें, जब हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम कंसल्ट करें उनको, आपको क्या लगता है ये काम कैसे करना चाहिए, इवन इफ मुझे पता है कि वो कैसे करना है, लेकिन ये जो एक थॉट है नहीं मेरा वाला ही ठीक है, इनसे पूछने की क्या जरूरत है, इनको क्या आता है, ये तो अभी नए नए आए हैं. नहीं, वो नए आए हैं, लेकिन अगर हम उनसे राय ले लेते हैं, उनसे आइडिया पूछते हैं, तो उससे क्या होगा, हम उनकी कैपेसिटी नए आइडियाज क्रिएट करने की उसको ट्रिगर करते हैं.
0: कि हमें ये थॉट लेकर ही करना चाहिए कि हो सकता है उनका थॉट अच्छा हो और मैं इम्प्लीमेंट करूँ. होता सही बात क्या है कि उनको खुश करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए मैं उनकी ओपिनियन तो ले लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ही बेस्ट
1: नहीं.
0: दैट एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट भी मैंने देखा है. हमारे पास
1: वो तभी होगा अगर आप बॉडी कॉन्शियस लेवल पर वर्क कर रहे हैं. अगेन, जब आपके थॉट्स और वर्ड्स में इंटेग्रिटी नहीं है, कि आप अंदर से सोच रहे हैं कि आपको नहीं आता और बाहर से पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जहां

0: वो इंटेग्रिटी होगी तो आप जो सामने वाला आइडिया देगा आप उसको स्वीकार करेंगे और आप उसके अंदर ये विशेषता को ट्रिगर करेंगे नया सोचने की, यू नो, क्योंकि जैसे ही कोई हमें पूछता है आपको क्या लगता है, इस पर आपका क्या थॉट है, तो अगर उसने नहीं भी सोचा होता उस बात के बारे में, क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे पैरामीटर से बाहर की बात है, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है. क्रिएटिविटी, आप उसकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी एम्पावरमेंट बन जाती है सामने वाले के लिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट करना. जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर सामने वाले ने गलती कर दी
1: उसको ये एहसास भी दिलाना
0: नहीं, उससे अपनी रिस्पेक्ट को विथड्रॉ नहीं कर देना. मतलब हमने रिस्पेक्ट तो की, आपको रिस्पेक्ट करते रहे जब तक आप ठीक कर रहे थे. लेकिन जब आपने गलती कर दी तो हम आपसे वो रिस्पेक्ट को विथड्रॉ कर देते हैं. एक्चुअली उस समय आपको सपोर्ट चाहिए. अगर हम आपको उस समय रिस्पेक्ट देते रहते हैं तो आपने जो गलती की उसकी आप जो यू नो गिल्ट थी वो खत्म हो जाती है. लेकिन अगर उस समय आपसे रिस्पेक्ट विथड्रॉ कर ली तो आपके अंदर जो गिल्ट की फीलिंग है वो एम्पावर हो जाती है. तो रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, नॉट फॉर द जॉब, नॉट फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. तो अगर गलती भी हो जाए तो वो रिस्पेक्ट को विथड्रॉ नहीं करें, क्योंकि उस समय आप डिस एम्पावर कर देंगे. उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो खुद थोड़ा सा
1: और सबसे ज्यादा उसे ले लिया जाता है.
0: एब्सोल्युटली. और ये हमेशा हर जगह होता है, घर में भी होता है. ये बच्चे से छोटी सी गलती हो जाए, पेरेंट्स विल जस्ट विथड्रॉ दैट रिस्पेक्ट, एंड तब वो गिल्ट ऑलरेडी है और वो उस समय और ज्यादा हो जाता है. तो उस समय जो हम डिसएम्पावर करते हैं ये उस आत्मा के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है. सो कंटिन्यू रिस्पेक्ट अनकंडीशनली, कीप गिविंग दैट. और कंपैशन, यू नो, इट्स अ सोल, वी आर सोल्स वर्किंग टूगेदर. तो हरेक के पेन में, सफरिंग में उनके साथ, बट नॉट टेक द पेन, कि हम खुद ही डिटैचमेंट, डिटैच्ड होंगे तभी तो वो पावर ट्रांसमिट कर सकेंगे.
1: वी बीन नाउ हियरिंग अबाउट एंगर मैनेजमेंट, यू नो, वर्कशॉप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर तरह के वर्कशॉप, किसी भी तरह का नाम लिया जाए, मैनेजमेंट वर्कशॉप, हर लेवल पे वर्कशॉप हो रहे हैं, स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स. यू नो, इतने सारे, इतना काम किया जाने के बावजूद, तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें उस जिस सिनेरियो को हम देख रहे हैं, जो जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंच जा पाएगी?
0: एब्सोल्युटली. अभी तक जो आपने कहा, जो वर्कशॉप्स हम करते हैं वो क्यों हमें वो रिजल्ट नहीं देती है जो देनी चाहिए? रिजल्ट तो वो देती है, लेकिन जिस लेवल पर हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं आती. क्यों? क्योंकि जो वर्कशॉप्स है उसमें हम बहुत ज्यादा तो बाह्य चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, कि कैसे बोलना, कैसे करना, कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना. तो वी विल से गो एंड पैट देयर बैक, गो एंड से अ गुड वर्ड. व्हाट वी नॉट वर्किंग ऑन, गो एंड क्रिएट गुड थॉट्स. यू नो, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन जब एक वर्कशॉप में आ जाता है या जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है तो वो थॉट लेवल पर वर्क करता है. अभी तक हम वर्ड और बिहेवियर लेवल पर वर्क कर रहे हैं. तो वर्ड और बिहेवियर लेवल चेंज नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी चेंज है, कि आज हमारी ट्रेनिंग हुई, दो दिन तीन दिन हम कर सके.
1: कहाँ भी जाते, गुस्सा आए तो आप दस तक गिनिए.
0: हाँ,
1: और आप कह क्या रहे,
0: पानी पीजिए.
1: हाँ, पानी पी लीजिए. लेकिन अगेन एंगर तो रहा मेरे साथ,
0: तो फिर हम दस तक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं गिन पाते थे, क्योंकि फिर हम कहते नहीं वो इतनी जोर से आ गया, बिकॉज हमने सीड को नहीं चेंज किया. हम वृक्ष को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्तों को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. इट वॉन्ट हैपन टिल आई चेंज द सीड. तो ट्रेनिंग या वर्कशॉप में इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को एड करना पड़ेगा, कि जो परिवर्तन चाहिए वो थॉट लेवल पर चाहिए, वो कॉन्शियसनेस की लेवल पर चाहिए, कि अंदर से ही मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा सोचने का तरीका, वो पूरा परिवर्तन हो जाए. व्यवहार तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा. उसको चेंज करने के लिए जो पावर चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेशन. कि कैसे हम हर रोज अपने साथ समय निकाले, बैठे, अपने आप को चार्ज करें, क्योंकि ये बैटरी चार्ज होगी तब तो औरों को वो पावर देगी. सारे डिस्चार्ज होंगे तो एक दूसरे को एम्पावर कैसे करेंगे? सारे डिसएम्पावर्ड है, और सारे डिसएम्पावर्ड जब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो देर आर सो मेनी क्लैशेस. तो हर रोज अपने साथ 10 मिनट्स, इवन इफ यू आर वेरी बिजी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट एज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, बिकॉज दैट विल मेक यू अ वेरी गुड लीडर. नॉट लीडर इन टर्म्स ऑफ रोल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिविटी. बच्चे. दैट इज वॉट इट विल डू. हर रोज 10 मिनट अपने आप निकाले, अपने आप को एम्पावर करे, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे संबंध जोड़, उन पावर्स को ले, सोल कॉन्शियसनेस वो यू नो अभ्यास इतना अच्छे तरह से कर ले कि जब आप ऑफिस में घुसे तो आपको डेजिग्नेशंस नाम नहीं दिखाई दे लेकिन आपको आत्मा दिखाई दे हरेक. और जब आत्मा दिखाई दे तो आत्मा की विशेषता दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे तो स्नेह अपने आप उस तक ट्रांसमिट हो, प्यार देना नहीं पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली जाएगा, विश्वास करना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिकली जाएगा. ऑफिस में हम ये कर सकते हैं कि हर एक घंटे के बाद जो 1 मिनट साइलेंस, इफ यू डू दैट इन द ऑफिस इट विल क्रिएट वंडर्स. इतना टर्मोइल है, ट्रैफिक जैम सारा दिन हो रहा है, हर एक घंटे के बाद अगर कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करे और 1 मिनट के लिए आप इंट्रोस्पेक्ट करें, डिटैच हो जाए, रेस्ट दे दें इसको, यू विल रिचार्ज एंड आपका पूरा ऑफिस का वायुमंडल चेंज हो जाएगा. ये सिर्फ करके देखने की चीज है, इट्स पॉसिबल.
1: अगेन एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि घर घर है, ऑफिस ऑफिस है, उसके बीच का जो दूरी है वो हम कई बार मेंटेन नहीं कर पाते, तो कितना जरूरी है उसे मेंटेन करना या नहीं करनी चाहिए?
0: एक्चुअली जब अंदर चार्ज्ड है सारा दिन तो कोई फर्क नहीं है. कोई दूरी भी नहीं है, कुछ नहीं है. मैं आत्मा हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ जो वो रोल प्ले कर रही हूँ. जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, जब मैं घर आ रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, और जब मैं इंटरनली स्टेबल हूँ घर पे तो अगर कोई ऑफिस की बात उस समय आ जाती है मेरे पास, कोई फोन कॉल आ जाता है या कोई काम आ जाता है, इट डजंट मैटर बिकॉज इट विल नॉट डिस्टर्ब. वो स्टेबिलिटी जब आती है तो हम घर को संभालते हुए भी ऑफिस की एक आधी बात को सॉर्ट आउट करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इट्स माई लाइफ, यू नो. सोल कॉन्शियसनेस मीन्स कम्प्लीशन. आइडेंटिटीज अभी तक सेपरेट थी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सेपरेट आइडेंटिटीज थी, तो उनको मैच करके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था. एक आइडेंटिटी है जो इतने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि एक आइडेंटिटी एक टाइम पे बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकती है इंटरनली बिना डिस्टर्ब हुए.
1: एक साथ पे काफी कुछ निभाया जा सकता है. दैट्स वंडरफुल. एक्चुअली शिवानी ये पूरी बातचीत जो रही बहुत कुछ समझ में आया, एक नए परिपेक्ष में हमने देखा. थैंक यू सो मच. जब मैं ऑफिस में होती हूँ वहां पर भी अगर मुझे ये लगे कि हर कोई जो मेरे साथ काम कर रहा है, चाहे वो मेरा सबॉर्डिनेट है या फिर मेरा बॉस, वो मेरी केयर कर रहा है, तो पूरा का पूरा एटीट्यूड मेरा बदल जाएगा, क्योंकि मेरा जो अकेलापन है, जो मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ जब मैं ऑफिस में होती हूँ, वो कहीं खत्म हो जाता है और हर कोई मुझे काट रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है. ये परिपेक्ष, ये नजरिया बदल जाता है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999934666, 9893666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में अभी बहुत कुछ बातें बाकी करनी है. जीवन के कई और एस्पेक्ट्स को हमने देखना है. मिलकर देखेंगे और फिर होगी मुलाकात. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, या हम ऐसे ही डिप्रेस फील करते हैं, जरा सा लो हुए तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो कहीं न कहीं एक सवाल के रूप में कभी न कभी हमारे दिमाग में उपजती हैं और फिर उसके सोल्यूशन भी तलाशने की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में हमने ये जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के इलाज पॉसिबल हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइकोथेरेपी से हो, या फिर कई बार जब ज्यादा सीवियर केसेस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। किस तरह के ये इलाज है, आज इस पर कुछ और चर्चा करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात वो ये थी कि तीन तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की इस वक्त संभव है। उसमें सबसे पहले आपने बात की थी ड्रग्स से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत जरूरी है। कई मिथ्स हमने दूर की थी जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी कि दवाइयां लेना कितना जरूरी है और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली सीवियर केसेस में लीड टू सुसाइड ऑल्सो। सो इतना जरूरी हो जाता है ड्रग्स या दवाई लेना। आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलिए आपने कहा था कि 2.5 से 3 महीने तो क्लिनिकली बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या हमें लाइफ लॉन्ग ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है, या हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं हम ठीक हो गए हैं।
1: लाइफ लॉन्ग तो लेने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा, किसी भी डिप्रेशन में नहीं जरूरत,
1: लाइफ लॉन्ग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो गलतियां हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती हम करते हैं। वास्तव में जैसे कहा कि उसे हर 5-6 दिन में मेडिसिन को बढ़ाते बढ़ाते एक क्लिनिकल डोज पर आना पड़ता है कि जब केमिकल जो इम्बेलेंस हुआ है वो ठीक होने लगे, और वह जब एक क्लिनिकल डोज पर आ गए फिर 2-2.5 मास में उसकी परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा साइकेट्रिस्ट उसे कम करना प्रारंभ करेगा कि हर 20 दिन या 1 मास में थोड़ी थोड़ी वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, और फिर एक छोटा सा डोज जिसे मेंटेनेंस डोज कहा गया है वो बहुत ही मामूली होता है, वो एकदम जो मामूली डोज है उसे कम से कम 1 साल लेना चाहिए।
0: अच्छा, ये जो जब हम इस पे पहुंचेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा? वो 6 महीने भी हो सकता?
1: नहीं
0: है?
1: वो करीब 2.5 मास वो होने, वहां तक पहुंचेंगे 15-20 दिन में पहुंचेंगे, फिर 2.5 मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए। बोले कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की जरूरत पड़े, परंतु अगर आप सचमुच रिलीजियसली साइकेट्रिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह एक जो सिस्टम है वो काफी है। अब गलती कहां होती है कि एक तो पेशेंट अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं, और जैसे ही आपको पता चला ना कि भई ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे, कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ है ना, वो क्या कहते हैं कि भई ये विधि करा लो, फलाना भुआ है वो ये विधि करता है उससे ही तुम। और देखा है मैंने 60-70% लोग 8-10 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दे, फिर सेकंड अटैक आता है तो फिर से जाएंगे साइकेट्रिस्ट।
0: अच्छा, सबसे बड़े फक्र से ये कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद कर दी, मतलब मुझे, मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुए
1: हैं। और जब अभी सेकंड अटैक आए तो सेकंड अटैक में अब ठीक होना मुश्किल है, फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा मुश्किल है, थर्ड में और मुश्किल है, और अगर फोर्थ अटैक आ गया तो फिर तो बस फिर 90% ठीक नहीं हो सकते।
2: अटैक मतलब
1: मतलब रिपीट हो, जिसको कहें ना कि रिलैप्स कहेंगे, कि भी एक बार आप डिप्रेस हुए, आपने कुछ समय मेडिसिन ली, थोड़े अच्छे हुए, आपने छोड़ दी कोई भी कारण से, 10-15 दिन के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गए, फिर से साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने और कुछ मेडिसिन दी और फिर से आप ठीक हुए, फिर से आपने कुछ समय ली उसको छोड़ दी, और ऐसा अगर जिसको रिलैप्स भी कह सकते हैं कि दोबारा बीमारी होनी।
0: लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट क्या है डिप्रेशन के? एक्चुअली हम ये तो मान लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, हार्ट की हम दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर है उसकी

0: उठ के दवाई ले लेंगे, थायराइड है उसकी दवाई लेंगे, लेकिन डिप्रेशन की दवाई, क्योंकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर फिजिकल इम्पैक्ट इतने शायद नहीं नजर आते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या है अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, ये बार बार अटैक्स जो आएंगे, हाउ विल इट यू नो इफेक्ट माई बॉडी?
1: डिप्रेशन में जो हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एक तो वह बीमारी है वह लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर विकृति भी आ सकती है, जिसको कहा है डिप्रेसिव साइकोसिस, कि पागलपन भी आ जाए, डिप्रेशन के साथ साथ भी पागलपन की, जो और भी बुरा है। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह सुसाइड तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसके कारण ठीक से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है।
0: तो लाइफ के ऊपर भी एक्चुअली अगर हम शिवानी देखें तो कभी जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम इसलिए दवाई खाते हैं कि हमें पता है भाई हमारा दिल रुक गया तो सब रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर
1: और बीमारियां भी जो आपने बताए ना कि अगर लंबा समय डिप्रेशन चले तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, लंबा समय डिप्रेशन चले डायबिटीज हो सकता है, नहीं बैक के प्रॉब्लम, कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं लंबा समय। तो उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो सेफ है वो हमें ठीक से करना बहुत आवश्यक है।
0: दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
2: क्योंकि सिंपल बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी
0: और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी,
1: और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी जिसके कारण नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, तो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाएगी।
0: स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, हमने जब कारणों की बात की थी तो जो लाइफस्टाइल हमारा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो भी डिप्रेशन की तरफ
1: ले जाता है। ये विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन से आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे थे कि जब इलाज कर रहे हैं आपने 2.5 से 3 महीने तक अपना एक प्रॉपर क्लिनिकल डोज ली उस लेवल पे लिया, उसके बाद आपने कहा था कि धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना, कई बार लगता है कि 0.25 mg की गोलियां ना ही लो तो चलो रहने देते हैं, यू नो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि 0.25 mg तो यही होगा ना, इतना ही होगा छोटा सा, तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना, जिसे आप कह रहे हैं कि सर्वाइविंग के मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए?
1: एक तो क्योंकि वो केमिकल्स को मेंटेन करना है, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए,
0: अगर हो जाए
1: तो क्या होगा कि केमिकल आपके स्लोली बिल्टअप हो रहे हैं, आपने एक दिन नहीं ली फिर से डाउन आ गए तो फिर से उस केमिकल को बिल्टअप करने को और आपको ज्यादा टाइम लगे,
0: नहीं तो फिर अगले दिन डबल डोज तो ना
1: ले। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये दीज आर द थिंग्स
1: व्हिच पीपल, दैट इज वेरी रॉन्ग राइट नो, फिर उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। ये संभव है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि भी सोने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेना, बाई चांस आप भूल गए, आपको रात को 2 बजे याद आया तो बोले 2 बजे भी ले लो, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो केमिकल्स की जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव इफेक्ट स्लोली होगी,
0: तो अगले दिन फिर उसी टाइम पे लेना चाहिए।
1: हाँ उसे फिर उसी टाइम पर ले हम, और मिस ना करे, डबल डोज तो बिल्कुल नहीं लेना, दैट विल बी स्टिल मोर हार्मफुल। और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े, सबसे अच्छा था कि डॉक्टर को डिसाइड करने दो, आप अपने डॉक्टर नहीं बनो, फिर भी एक जनरल आइडिया जो देना मैं चाहता हूं कि एक बार आपको बिल्कुल अच्छा हो गया, 2.5-3 महीने तक सचमुच आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए, आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कि भी हर मास में या 20 दिन में स्लोली वो डोज को कम करते हैं, और एक जो फिर मेंटेनेंस डोज आएगा वह मेंटेनेंस डोज कम से कम 1 साल लेना चाहिए। और फिर भी एक तो एक्सपेरिमेंट करना है वास्तव में, कुछ लोगों को और भी 2-3 साल भी आवश्यकता हो सकती है, इन तब हम छोड़ सकते हैं,
0: तब वो बहुत मिनिमल होती है।
1: और उसके बीच में फिर और चीजें भी करो, जैसे मेडिटेशन करो, है ना, जीवन शैली को परिवर्तन में लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग,
0: रिलैक्सेशन
1: करो, हाँ
0: साइकोथेरेपी विल हेल्प। डॉक्टर साहब, आप ड्रग्स को तो हमने काफी डिटेल में
1: जाना, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो लोगों में मिथ है और कई लोग पूछते हैं ये कि भी क्या मेडिसिन कभी बंद नहीं हो सकती है, तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी मेडिसिन जरूर बंद करो, ठीक से लो,

0: और फिर बंद करो। अंत में थोड़े समय दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर, लेकिन फिर वह हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो एडजस्ट हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड एज का जहां सवाल है, मैंने कई देखे जो बूढ़े पेशेंट है, 70 इयर्स के, 75 इयर्स के है, मेडिसिन लेने से वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर ये भूत सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है। तो उनको मैं कई बार कहता हूं कि कितना जीना है अभी आपको, अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना।
1: अच्छा, और सबसे बड़ी बात, खुद को भी तो नहीं पता होता कि हमें कितना लंबा जीना है अभी।
0: सोच भी लो, और सिर्फ मेडिसिन की जो थोड़ी सी इफेक्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, कि जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज है, इनोवेटिव पावर्स है, हो सकता है कि सब मेडिसिन में कुछ मेडिसिन की इनोवेटिव पावर्स, क्रिएटिव एबिलिटी पर थोड़ी सी 5-10% इफेक्ट हो सकती है। इसलिए यूथ को एडवाइस देंगे कि आप इसके थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए और प्रॉपर उसका जो रूट कॉज है वो भी दूर करना चाहिए। रूट कॉज दूर हो गया तो फिर वो मेडिसिन को बंद करने में मुश्किल आती है।
1: आपने जब कहा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, वो
0: अगर आवश्यकता है, ये भी नहीं, अगर वो छोड़ सकते भले छोड़िए, लेकिन आप समझते हैं भी छोड़ने पर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और मेडिसिन से आप एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो स्मॉल डोज में लेने में आपको डिफिकल्टी।
1: यहाँ लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन ये चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं और ऐसे में हम कोई योगा या मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे हैं कि वो दैट रियली हेल्प्स, वहां पर जाते भी योगा करते हुए खासकर या इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाने के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम ठीक ही हो जाएंगे ये सारी क्रियाएं करके, क्या वो छोड़ना चाहिए?
0: नहीं, बहुत अच्छा कनुप्रिया जी, एकदम पावरफुल प्रश्न है आपका, जिसको मैं कहता हूँ फीलिंग गुड। जब व्यक्ति योग आसन आदि करता है उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूं, तो वो डेंजरस चीज है। ये केमिकल्स एकदम कम हो जाएंगे और सीरियस प्रॉब्लम होगा। छोड़ भी आप सकते हैं, एक बार आपने अगर प्रॉपर जो ड्यूरेशन, महीने का, 3 महीने का ड्यूरेशन, वह दवाइयां ले ली आपने, आप एकदम नॉर्मल है, फिर जो मेंटेनेंस डोज आपका है वो भले दूसरे पेशेंट को हम कहते हैं 1 साल के बाद बंद करो, आप ट्राई कर सकते 6 मास के बाद भी करो। अगर अब उससे आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए, और तुरंत लो, फिर रुको नहीं।
2: कई बार
0: फिर से डिप्रेशन सेट हो जाए तब तक रुको नहीं।
2: कई बार सेंटर पे भी कुछ भाई बहने आते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन करने से अच्छा लग रहा है,
0: हाँ,
2: तो मेडिटेशन करने के बाद दवाई अपने आप छोड़ देते हैं, वो भी शायद खुद नहीं छोड़नी चाहिए ना,
0: डॉक्टर को पूछ को ही, हाँ।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंसेस क्रिएटेड हैं, इवन इफ वो मेडिटेशन से अगर ठीक हो रहे हैं तभी वो इम्बैलेंस तो है,
2: लेकिन फिर भी एक ट्रीटमेंट तो फिनिश कर लेनी चाहिए। हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर जैसे
0: एडवाइस से ही करिए,
1: जैसे कि आपने कहा था कि साइकियाट्रिस्ट जो आपका डॉक्टर है उस पर 100% फेथ रख के ही हमें अपना इलाज कर, जैसे हम अपने हार्ट के डॉक्टर हैं या हमारे कोई और प्रॉब्लम चल रही है, इवन जनरल फिजिशियन है उसके ऊपर भी तो 100% फेथ रखते हैं, वो कहते हैं इतनी एंटीबायोटिक खानी है, इतनी चाहे कितनी भी हालत खराब हो आप वो 5 दिन का कोर्स खत्म करेंगे ही। आई हैव सीन रियली यू नो पीपल दे सेइंग कि आपको 5 दिन की दवाई खानी है, चाहे आप बीच में ठीक हो जाए, लेकिन वो 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कम्प्लीट करना ही है, और आई थिंक वो हर कोई करता है, तो फिर इसको भी पूरे कोर्स को करना जरूरी हो जाता है। एक और मिथ, आज हम मिथ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डिप्रेशन जो जैसा मुद्दा है उसमें जब यंगस्टर्स में डिप्रेशन की बात आती है तो चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, पेरेंट्स के दिल में एक बहुत ये, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो यू नो चाहे वो अभी इलाज कर रही है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके यू नो मैरिज के बाद कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं दैट हाउ डज इट रियली अफेक्ट,
0: ये भी मिथ ही है वास्तव में, बल्कि कुछ मेडिसिन इफेक्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ मेडिसिन इफेक्ट कर सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन नहीं देनी है, वो डॉक्टर जानता है,
1: वो तो उस वक्त पे है ना कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिसिन नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई बच्ची या जो व्यक्ति है वो कॉलेज में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो डिप्रेशन,
0: तो कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में मेडिसिन देनी ही चाहिए, और अगर कोई थोड़ी सी साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी नई दवाइयां हैं जो डॉक्टर उसको चेंज भी करेंगे,
1: और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होते ना,
0: और यूथ में तो देनी चाहिए क्योंकि यूथ में कई बार सिम्टम्स अलग प्रकार के होते हैं, और इसके कारण यूथ में अगर उनको जरूरत है तो सही ड्यूरेशन के लिए अवश्य

0: ही उनको हम दवाइयां दे, और एक मिथ है वास्तव में, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
1: तो चलिए ये पूरा एक यहाँ एक ये कंप्लीट चैप्टर ये होता है कि दवाइयां जरूरी हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर अगर डिप्रेशन में हैं आप, और कुछ देर के लिए ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म ही करना है। मेंटेनेंस के लिए अगर साल भर है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद हम एक बेहतर जिंदगी, जो एक बोझ लेके हम डिप्रेशन का चलते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम शॉक की बात करते हैं कि शिवानी बहन ने भी उस टाइम पे उस वक्त जब बात हो रही थी कि शॉक ट्रीटमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स या कन्वर्जन जिसे कहते हैं जो दिया जाता है फिल्मों में, अगर हम देखें तो वो एक सबसे खतरनाक चीज होती है, किसी को टॉर्चर करना है तो शॉक्स दिए जाते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दे बिकम एट टाइम।
0: सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं, ये शब्द बड़ा डरावना है और ये शब्द सही भी नहीं है, नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो इसका नाम है, जिसको कहा है ECT, है ना, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, कि जैसे हमको फिट्स आते हैं, किसी को कन्वल्जन आते हैं नेचुरली, वह इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एक तो कि भी वह रेयर है, आज वर्तमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि वह रेयरली आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे कि भाई 1000 या 2000 पेशेंट में एक आध किसी को उसकी आवश्यकता पड़े, बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। और अच्छा साइकेट्रिस्ट पहले तो सभी दवाइयों का प्रयोग करेगा, अगर एक नहीं हुई तो सेकंड जनरेशन की अच्छी दवाइयां हैं, थर्ड जनरेशन की है उसका भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वो ECT का सहारा लेगा। और दूसरा एक होता है कि जिसमें सीरियस सुसाइडल टेंडेंसी है, किसी भी क्षण ही आत्महत्या कर लेगा, और ऐसे किस्से हुए हैं, यहां तक कि वो साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में गए हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, पेशेंट ऊपर टेरेस में गया, उसने जंप लगाई। तो जहां पर ये पता है कि भी इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहां कुछ किस्सों में ECT कार्य कर सकती है। और अब ये जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे आपने वो शॉक ट्रीटमेंट और लोग डरते हैं उससे, अब जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है, पहले तो मैंने कहा रेयर है, इट्स में भी 1000-2000 पेशेंट में एक आध को जरूरत पड़े। और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं, ऐसे एनेस्थीसिया देने के बाद, और अब जो नए मशीन आए दे आर सो सेफ, इसमें जो कन्वर्जन हो तो उसका भी पूरा सेट होता है कि हमें अराउंड 8 ECTs की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, तो उस अनुसार वह भी जो डिप्रेशन के पेशेंट में जरूरत है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बोले आप दूसरा भी ओपिनियन ले लो, आपको यह लग रहा है कि भी आपके डॉक्टर ने सही सब मेडिसिन का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं, तो दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, वह भी समझता है कि ये सब दवाइयों का प्रयोग किया
1: क्या
0: गया
1: होता
0: है।
1: जैसे हमने ड्रग्स की जब दवाइयां ली तो हमें पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस था, तो वो बैलेंस करने के लिए उसको कंप्लीट करते हैं, दवाई ली जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है, इसमें क्या होता है, क्या चेंज आता है?
0: ऐसा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा एक बात की 100% पता नहीं, परंतु फिर भी इसमें जो दो बातें होती है कि भी केमिकल में भी परिवर्तन आता है, और दूसरा एक जो फायदा होता है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव मेमोरीज है ना, वो व्यक्ति भूल जाता है, स्ट्रेस की मेमोरी, सर्टन ट्रॉमाज, एब्यूज, समथिंग नो विच माइट हैव ट्रिगर्ड, कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी अगर हिस्ट्री को हम देखें ना, तो ECT की शुरुआत वास्तव में पागल पेशेंटों के लिए हुई।
1: यही मैं आने वाली थी कि क्या डिप्रेशन लीड्स टू मैडनेस ऑल्सो एट टाइम्स,
0: इट कैन
1: वायलेंट जब हो जाता है तो,
0: यानी वायलेंट हो या तो वो ज्यादा समय रहे। हमने आगे डिस्कस भी किया था कि डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, तो वो डिप्रेसिव साइकोसिस में मैडनेस होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट यहां बता रहा हूं कि जो शुरुआत हुई ECT की वो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए हुई, जो पागलपन के पेशेंट्स हैं उनके लिए हुई, परंतु फिर कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी दिया गया और देखा कि सबसे फायदा इनको हो रहा है, पेशेंट एकदम नॉर्मल हो रहे हैं, और इवन मिरेकल्स हो सकता है कि जिस पेशेंट को आपने एक साल तक दवाइयां दी, अलग अलग दवाइयां डॉक्टरों ने प्रयोग किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, और उसको आपने 4 ECT दिए, एकदम मिरेकुलस एकदम वो नॉर्मल हो गया।
1: डीप डिप्रेशन में जो गए हुए लोग,
0: या तो जिनको आवश्यकता है कि भी उसके सुसाइडल थॉट्स एकदम

0: खत्म हो गया, जैसे लगा जादू हो गया। तो रेयर किस्सों में जब ये जजमेंट लेना चाहिए कि भी कहां पर आवश्यकता है तो देने में हर जाने,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैड मेमोरीज को सप्रेस कर देता है, निगेट कर देता है, डिलीट कर पाता है। अगर कोई हम मेमोरी में जाके उन मेमोरी अपनी मेमोरी बॉक्स में जाके उन बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाए, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो है साइकोथेरेपी।
0: बिल्कुल
1: विचारों का जो जनरेट, जो बेसिक अगर हम कहें कि जहां से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दें, वहीं बदलाव ले आए,
0: तो
1: वो हमारा आपके साथ जरूर उस पर डिटेल में और डीप जाने की जरूरत है कि क्या होगा वहां पे। लेकिन अभी समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू में पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी में किया क्या जाता है।
0: अच्छा, अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी है वास्तव में, जो शुरुआत हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं, जिसको कहा साइको एनालिसिस, कि सेगमेंट फ्रॉइड ने इसकी शुरुआत की और वो सारी उसकी थियरी है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कई ऐसी बातें हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बीमार करती है, जिसको कहेंगे चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट। उनकी अपनी एक सारी पर्सनालिटी की थियरी है, तो फ्रॉइडियन थियरी थी। फिर उसमें भी बदलाव आया, यूंग ने उसमें परिवर्तन करके एनालिटिक साइकोलॉजी नाम दिया उसका, और भी कई एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वो जो थेरेपी थी उसमें कुछ कुछ चेंज करते लाए। फिर एक जो दूसरी थेरेपी प्रीडोमिनेंटली यूज होती है जिसको कहा बिहेवियरल थेरेपी, कि हमारे बिहेवियर में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया, कि जो भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती थी। और अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसको कहा है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना, क्योंकि विचारों में मूड है और ये जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज्यादा संबंध नहीं, अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो उन मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे। प्रयोग भी हुए हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफी इफेक्टिव है।
1: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सिस्टर शिवानी, इनफैक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात जरूर करना चाहेंगे, ये कि विचारों में परिवर्तन डॉक्टर साहब ने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसमें मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकती है, पूरा जो हमारा पूरा
2: पूरी तरह से शायद है ना मेडिटेशन में भी अलग प्रकार होती है ना, जैसे आजकल बहुत सारी मेडिटेशन हम देखते हैं, तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जो बॉडी के ऊपर फोकस्ड है, ब्रीदिंग टेक्निक पर एंड कोई आसन को भी योगा कहते हैं, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट डील्स ओनली विद द माइंड। तो हाँ, ओनली विद द माइंड, एंड फिर माइंड थॉट्स चेंज होंगे तो एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। तो राजयोगा मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज, यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग और फिजिकल पोस्चर, वो पूरी तरह से मन और संकल्पों के ऊपर केंद्रित है, तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहें हम अपने विचारों में ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो साइकोथेरेपी एक वो थेरेपी है जो कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की तरफ, सिर्फ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा,
0: मामूली डिप्रेशन भी
1: मुझे लगता है हम में से हर एक को, मुझे तो होगा ही इतनी सारी बातें मैं समझते, तो ये हम जो है अपना सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में आने वाली कड़ियों में हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल और सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए। आज जो हमने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है मेडिसिन लेना, और उसके अलावा जो आपने ईसीटी के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स न रह के डिफरेंट तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार यूजफुल हो जाता है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सी बातें आपके पास भी होंगी, आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से साइकोथेरेपी को हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं, किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बातें करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही एनालिसिस करके अपने ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए, हो सकता है ये पॉसिबल हो, आने वाली कड़ियों में इन्हें जरूर तलाशेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रयास जारी रखेंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज़ 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका effect कितना लंबा जाएगा। तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं,
3: बने रहिए। जीवन में सेवा का महत्व और सेवामय जीवन की मधुरता, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है डॉक्टर मिनी वासुदेवन, जिनसे हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों हमसे फिर से दोबारा जुड़ने के लिए। और पिछली बार की ही हमारी गेस्ट डॉक्टर मिनी वासुदेवन के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। और क्यों, ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। डॉक्टर मिनी वासुदेवन का दिल जो है वो हर एक के लिए करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इन हर एक में स्पेशली उनका दिल उनके लिए धड़कता है जो मूक प्राणी है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, जानवर, जो कि सड़कों पे आप देखते हैं। इनके भी जीवन में बहुत दुखदायी घटनाएं होती हैं, इनके साथ भी एक्सीडेंट होता है, ये भी भूख प्यास से गुजरते हैं, बट इनके लिए कौन कुछ सोचता है। डॉक्टर मिनी वासुदेवन ने शुरुआत की ह्यूमेन एनिमल सोसाइटी की, और इसके तहत उन्होंने आज तक लगभग 3,000 से भी ज्यादा पशुओं के दर्द को कम करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विद डॉक्टर मिनी वासुदेवन, आवर एस्टीम्ड गेस्ट टुडे। Welcome, Mini ji.
4: So when you are serving these animals, this come at a cost. You might need funds, you might need materials, you might need medicines, you might need doctors, you might need human resources. How do you bring them?
5: Yeah. So in the early days when I started, it was all whatever I had. I spent whatever I had. I wanted to do it, and it was giving me a lot of satisfaction, and I did it. But when it became a bigger movement, and when more people joined, and there was that sense of, there's a huge responsibility that came with that. And when that responsibility was not, the funds were not enough to fulfill that responsibility, we had to go out and ask for funds, and we had to make a compelling cause that would enable those who had deeper pockets to be able to give you the funds to see it. So philanthropists and people who are helping humans usually would be the first choices when we were going, but we found very different type of attitude, or that sense of understanding towards the animal was missing over there. What we found was we found among the less privileged and those who were able to put themselves in the foot of those animals that were suffering, they were the ones who were readily able to give, and they were not the ones who had deeper pockets, and they were not the ones who were privileged in that sense. So I personally felt very privileged because I had very good education, I had a very well paying job, and I was earning a good salary, and I was able to spend that money to do what I wanted, to give me the satisfaction of helping animals. But very few people of that kind of people felt the same way, and it was more most of the people who were able to donate were people like I said, who were not in that level. But India as a country was also changing, and there was this corporate social responsibility that many companies were forced to implement, and that was mandated by the government, and it was based on the revenue. It was not even based on the profit, it was based on, so which made a lot of companies look for causes that they wanted to support. And in always, in every company or in places where we went asking for funds, there was always somebody who had that special feeling for animals. And wherever we felt or wherever we found that corner of special people, we were able to push for their ability to support our cause. So that is how actually we were able to get more funds the way we are running it today. So today we have positively impacted more than 75,000-80,000 animals in some way. Maybe it is vaccination, maybe it is rescuing and helping them heal, maybe it is finding them permanent homes, maybe it is annual their health checkups. But positive impacting 90,000 healing touches is not possible with no funds. So obviously there were many quarters we received funds, we were able to get CSR support, we were able to mobilize common people to be able to

0: ब्यूटीफुल। मैंने पूछा मिनी कौन है, और जवाब आया एक ऐसी आत्मा जो कि करोड़ों जातियों प्रजातियों के बीच में सुखी रहना चाहती है और दूसरों के दुख को कम करना चाहती है, एंड दैट इज मिनी। मिनी जी, आपसे बात करते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम में, उन्हें ये भी एक समझने का मौका मिला कि भारत केवल मनुष्यों से नहीं बना है, भारत में जो पशु पक्षी रहते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं। खैर, वो मेरे और आपके जैसा वोट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो भारत को भारत बनाने में अपना योगदान जरूर देते हैं। तो ऐसे नागरिकों के लिए जो बेजुबान हैं या जिनकी जुबान हमसे अलग है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उसका एक बहुत उत्तम उदाहरण दिया है मिनी जी ने। यशस्वी भारत कार्यक्रम में अभी तक हम सुन रहे थे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मिनी वासुदेवन जी को। मिनी जी के जीवन ने कईयों के जीवन को प्रभावित किया, और मैं समझता हूँ आज मैं और आप जो सुन रहे थे, मिनी जी से बहुत बहुत सारा कुछ ज्ञान हमने सीखा है और अपने जीवन में सुधारण भी करेंगे। शुरुआत शायद एक हफ्ता चैलेंज लेते हैं, एक महीना चैलेंज लेते हैं, और शुद्ध शाकाहारी भोजन, दर्द से फ्री भोजन, वीगन लाइफस्टाइल अपनाने का। लेट्स ट्राई इट दोस्तों, और आप हमें जरूर बताइएगा रेडियो मधुबन पे आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपको कैसा लगा, व्हाट इज दैट यू आर फीलिंग। आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए, और जैसे कि मिनी जी ने कहा, बहुत सहज है, एक बार कोशिश कीजिए और इस तरीके से आप कईयों को मदद पहुंचा सकते हैं। मिनी जी जैसे कई ऐसी भारत की जगमगाती हस्तियों के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे। यशस्वी भारत कार्यक्रम को सुनते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और जैसा कि कहते हैं ना दोस्तों, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, किसी ना किसी का गम जरूर कम करने का छोटा सा प्रयास करते रहिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ, आरजे शांतनु, मिलता रहूंगा आपसे बार बार ऐसे ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी पहुंच। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुणेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपने जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जीवन में फुल स्टॉप का महत्व। मैं इस पर आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी। हमारे जीवन की गति निरंतर चलने वाली होती है, कभी यह तेज दौड़ती है तो कभी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में फुल स्टॉप का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है? आमतौर पर हम इसे एक वाक्य को समाप्त करने का संकेत मानते हैं, परंतु यदि इसे गहराई से देखा जाए तो यह जीवन में ठहराव, आत्म मंथन और संतुलन का प्रतीक भी है। जीवन में ठहराव का क्या महत्व है? आज की आभाग दौड़ भरी जिंदगी में हम निरंतर आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं। हम बिना रुके, बिना सोचे समझे बस चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। यह रुकावट हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। फुल स्टॉप हमें यह सोचने का समय देता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किन गलतियों को सुधारना चाहिए। आत्म मंथन इंट्रोस्पेक्शन में फुल स्टॉप का क्या महत्व है? फुल स्टॉप केवल किसी बात को समाप्त करने का संकेत नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्म मंथन करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में रुकते हैं और सोचते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने में सहायता करता है। फुल स्टॉप का हमारी मानसिक और शारीरिक शांति में क्या योगदान है? लगातार भागते रहने से हमारा शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। जब तक हम अपने लिए एक ब्रेक नहीं देते, तब तक हम अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। जीवन में फुल स्टॉप का महत्व यह भी है कि हम अपनी ऊर्जा को पुनः संजोए और एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़े। क्या फुल स्टॉप का रिश्तों में भी कोई महत्व है? बिल्कुल, हमारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व होता है। कई बार हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय ही नहीं दे पाते। फुल स्टॉप हमें यह एहसास कराता है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी समय बिताना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर होता है जब हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। फुल स्टॉप से सफलता को कैसे पाया जा सकता है? हर किसी के जीवन में सफलता और असफलता आती है। जब हमें असफलता मिलती है तो हमें एक पल रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसी तरह जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो फुल स्टॉप हमें यह

0: समझने में मदद करता है कि हम अपनी इस सफलता को कैसे बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आज के चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि फुल स्टॉप का महत्व केवल व्याकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सोचने, ठहरने, आत्ममंथन करने और संतुलन बनाने का अवसर देता है। इसलिए हमें समय समय पर अपने जीवन में फुल स्टॉप लगाकर यह देखना चाहिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आगे बढ़ना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों, बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे, ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: शुक्रिया
1: सिस्टर. आपके एपिसोड के बाद मैं एक क्या कहते हैं इसको इंटरनेट पे देख रहा था. किसी ने मुझे बहुत सुंदर लाइन भेजी एंड एज यूजुअल मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं. इट सेज नॉट ओनली द थॉट यू आर चूजिंग right now, not only the thought you are choosing right now, attract the next thought and the next and the next and so on. It also provides the basis of your alignment with your inner being.
2: Beautiful.
1: मुझे सबसे पहले first line clear करनी है कि मतलब when I think मैं अगली थॉट को अट्रैक्ट एंड अट्रैक्ट उसके बाद उसके तीसरे मतलब एक इसकी नॉन स्टॉप परेड चलती जाएगी.
2: इट्स वेरी ब्यूटिफुल. यू एवरी थॉट अट्रैक्ट द नेक्स्ट थॉट
1: एंड द नेक्स्ट
2: एंड द नेक्स्ट
1: एंड द नेक्स्ट
2: एंड द नेक्स्ट एंड नॉट ओनली दैट इट बिकम्स द बेसिस ऑफ योर अलाइनमेंट विद द इनर बीइंग.
1: इट रिमाइंड्स मी ऑफ सिस्टर कि एक सीड में जिस चीज का बोता

0: This is the power of one seed, the ability to influence. This is the power of one thought.
1: Itni shakti hoti ek thought mein, na?
0: Ek thought hai na? Jaise humne kuch episodes pehle dekha. Ek kisi ne mujhe kuch kaha, to meri ek thought bhi jab us direction mein chali gayi, ki aisa kyun kaha, aisa nahi kehna chahiye tha, it attracted the next thought. To wo next thought bhi kis quality ki hogi? फिर उसकी नेक्स्ट थॉट एंड उसकी नेक्स्ट थॉट एंड जब मैं इस नेगेटिव थिंकिंग के डायरेक्शन में चली गई माय अलाइनमेंट विद माय इनर बीइंग ऑफ पीस डिस्कनेक्ट
1: मेरे साथ हुआ ना उस दिन लड्डू के उसमें सीरियसली वो छोटी सी चीज थी क्योंकि मुझे बचपन से जैसे आप कहते हैं ना एक चीज की एक संस्कार मेरा संस्कार है कि कोई मुझे खाते हुए टोके ना तो मैं खाना छोड़ देता था फिर मैं खाऊं नहीं खाऊं कितना खाऊं क्या हाउ कैन स्टॉप मी
0: हाँ लेकिन आज हम तो ये प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे
1: नहीं गए थे ना
0: आज चेंज करेंगे ना आज चेंज करेंगे
1: नहीं हो रहा है ना
0: नो नो ये नहीं वर्ड कभी भी यूज करना है कि नहीं हो रहा है दिस वर्ड इटसेल्फ इज डिसएम्पावरिंग नहीं हो रहा नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है सब तो ऐसे ही है ये वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट
1: थॉट मैंने एक अच्छा काम किया वो जो लड्डू वाली को डांटा था ना बहन को उसको बहुत प्यार किया बाद में बाकी उसकी चीजों की तारीफ की उसको सब बोला मैंने उसको ये भी बोला कि आपके कंसर्न में आप बोले थे वो सब मैंने ठीक ठाक उसको तो कर दिया लेकिन थोड़ा सा अंदर ना ऑनेस्टली मेरे अंदर अभी भी है
0: ना इट्स फाइन अब मुझे वो प्रोग्रामिंग को चेंज करना है एंड ये प्रिपेयर करना है क्योंकि ये जब हम See, every thought attracts the next thought and the next. Why this line is so important?
1: हुआ ना मेरे साथ
0: नहीं जैसे अभी भी आपने कहा बचपन से मेरे अंदर ये संस्कार है कि कोई अगर मेरे खाने के लिए मुझे टोकेगा तो फिर मुझे इरिटेट होना
1: सिर्फ रोकेगा नहीं मैं खाना खाता हूँ ना अगर मेरी प्लेट में कोई सब्जी डाल दे रोटी डाल दे जबरदस्ती के कुछ बोलो खा ले तो आप कौन टोकने वाले भी नहीं सिर्फ अब डालने वाले भी कौन
0: लेकिन आप ये देखें कि हमने अपने जीवन के कितने साल अ लाइफ टाइम इस कंडीशनिंग से बिता दिए और पूरी जीवन बिता देंगे कि उस टाइम पे फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा आई ईटिंग फूड इज इट द टाइम टू गेट डिस्टर्ब अब उसी चीज को कैसे फेस करना है
1: आपने जो एक शब्द कहा था रॉयल्टी से
0: सिचुएशन लेकिन जब हम ये थॉट करेंगे कि मेरा ये संस्कार है बचपन से तो हम अपने आप को लिबर्टी दे देते हैं हम अपने आप को परमिशन दे देते हैं कि ये है था और रहेगा एंड दैट्स व्हाई इट सेज वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट एंड एवरी टाइम जब इस काइंड ऑफ थिंकिंग की हम अपने इनर बीइंग से अलाइनमेंट मिल गए
1: बट ये जो आपने लाइन कही ये था है और रहेगा अगर ये तीन शब्दों को हम अपनी ओरिजिनलिटी में रख लें याद कर लें
0: हाँ
1: जो सोल इसमें इस लाइन में कहा इनर कि आपका कोई इनर बीइंग को कोई कोई ले जा नहीं सकता आपका था है और रहेगा
0: ब्यूटीफुल
1: यहाँ से कन्वर्ट कर लेना
0: वो जो इनर बीइंग का ओरिजिनल संस्कार था ना वो तो ओरिजिनल था है और रहेगा लेकिन ऊपर ऊपर लेयर्स कौन से बने अक्वायर्ड संस्कार के अब इनर बीइंग का संस्कार है पीसफुल एंड पावरफुल ठीक है अक्वायर्ड लेयर ऑफ संस्कार इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बना कि कोई खाना डालेगा मुझे वेस्ट नहीं करना वो एक सिचुएशन थी फिर कोई डालने लगा तो मैंने रोका लेकिन उस समय मेरा रोकने का तरीका कैसा था एजिटेटेड
1: 100%
0: डिस्टर्ब्ड
1: जी
0: धीरे धीरे वो ग्रूव बन गया वो एनर्जी पैटर्न बन गया एंड अब इतने साल बीत गए और इतनी बार इतने लोगों के साथ खाना खाया और हर बार क्या कर दिया
1: यही कर दिया
0: अब कॉन्शियसली भी नहीं करना पड़ता है अब वो करने का तरीका बन गया तो वो ग्रोव फिक्स हो गया ना अंदर वो पैटर्न पे ही जा रही है बार बार अब अलग बिकॉज दिस इज डैमेजिंग फॉर मी आई एम लूजिंग माय इनर पावर
1: तो सिर्फ सिस्टरी खाने के लिए नहीं
0: फिर हर एक
1: आदत पड़ जाएगी तो दूसरी चीजों में भी भाई मुझे पसंद है या नहीं पसंद बोलने का फिर वो ढंग तो वही रह जाएगा पैटर्न वही बन जाएगा
0: कौन सा पैटर्न
1: ग्रोव जो आपने कहा था कि चिड़के बोलना एजिटेटेड जो आपने शब्द यूज किया
0: बिकॉज पावर कम होती जाएगी ना एक सिचुएशन में पावर कम की
1: आदत भी पड़ जाएगी ना
0: वो पावर कम होने के बाद आदतें भी कैसी बनेंगी फिर
1: यू मीन टू से जिसकी चीज की आदत रहती है तो यू आर वीक वीकनेस है वो
0: एवरी टाइम कोई परिस्थिति में आई गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई ओरिजिनल बीइंग

0: ओरिजिनल बीइंग में मैं कनेक्टेड था अभी कब?
1: ओरिजिनली कनेक्टेड थे ना,
0: मैं अब इस जन्म में तो था ही नहीं कभी फिर इसका
1: नहीं,
0: मतलब
1: अभी
0: तो...
1: भी होते हैं हम कितनी बार।
0: अच्छा,
1: सिर्फ फर्क ये है कि अभी हम कम होते हैं ना, तो हमें कई बार अवेयर नहीं होता उस चीज का। हाउ मेनी टाइम्स यू विल फील वेरी डीप इनर पीस, वेरी वेरी डीप। कितनी बार ऐसा होगा कि कोई आपके सामने बड़ी से बड़ी गलती कर दे और आप कहेंगे इट्स ओके।
0: एक्चुअली मुझे बड़ी से बड़ी गलती पे कभी गुस्सा आया भी नहीं। गाड़ी ठुक गई, घर के बड़े बड़े आईने का मतलब डोर ऑफ टूट गए, वहां मैं बोल ठीक है अब क्या कर सकते हैं। मतलब जहाँ ज्यादा पैसों का भी नुकसान हो, ज्यादा बड़ा ये छोटी छोटी चीज की मुझे गंदी सी।
1: अब मैं अपने आप को ये बताऊं,
0: अब रियलाइज कर रहा हूँ बात
1: करते करते, बड़ी चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया,
0: छोटी नहीं कर सकता।
1: छोटी छोटी चीजों में मैंने पैटर्न अलग बना लिया, लेकिन जो बड़ी चीजें एक्सेप्ट कर सकता है वो छोटी चीजें कितनी इजीली एक्सेप्ट कर सकते होंगे?
0: पता नहीं, ये तो कर सकते होंगे, लेकिन मैं
1: तो इट्स लाइक सेइंग मैं पहाड़ उठा लेता हूँ लेकिन पत्थर उठाने में मेरे हाथ को दर्द होता है। इट्स ओनली अ कंडीशनिंग कि पत्थर उठाते टाइम ना मुझे लगता है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सी हाउ इट इज कि बड़ी बड़ी बातें, और ये हम सबके जीवन के साथ है, हर एक के जीवन में चैलेंजेस आते हैं।
0: कोई बड़े बड़े चैलेंजेस में जैसे फादर की डेथ हो गई,
1: वो टाइम पे
0: मैं एकदम शक्ति में आ गया कि रोया हुआ नहीं, ठीक है ये करना ऐसा हो गया, अब ये हो गया, घर एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएटली अलर्ट हो गया मैं, गाड़ी बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुलाओ। वहाँ छोटी सी चीज में कोई रोना है तो मैं वहाँ
1: मेजोरिटी ऑफ अस गो थ्रू दिस। कोई बिजनेस की बड़ी चीज में फेस कर लेते हैं, कोई एक बहुत टर्मिनल इलनेस को क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉनिक बीमारी, कोई किसी नजदीकी संबंध की मृत्यु को फेस कर लेते हैं, और छोटी छोटी चीज में
0: चिड़चिड़ हो जाती है।
1: तो अपने आप को याद दिलाना, मुझे आत्मा के पास कितनी शक्ति है कि मैंने बड़ी बड़ी परिस्थितियां
0: उठा ली,
1: लेकिन छोटी छोटी जो रोज और दिन में कई बार आती है। अब बड़ी परिस्थिति में पावर डिप्लीट नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियों में पावर डिप्लीट हो रही है। जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां बहुत कम आती हैं। आप अगर अपने जीवन काल को देखें तो बड़ी परिस्थितियां कितनी
0: सालों में कभी आती,
1: सालों में एक, और छोटी दिन में कई,
0: मिनटों में आती रहती है, हर घड़ी छोटी बड़ी तो चलती ही रहती है।
1: छोटी मोटी में अगर ये कंडीशनिंग बन गई तो फिर पावर वेस्ट होती जाएगी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज सोल पावर, ये है बीइंग शक्ति, आंतरिक शक्ति ये है कि मुझ आत्मा के पास शक्ति है कि मैं कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, कोई भी क्राइसिस को क्रॉस कर,
0: कोई भी, कैसी भी, कभी भी।
1: तो फिर छोटी छोटी क्रॉस करना, तो आज से मैंने वो कंडीशनिंग को चेंज करना है कि जो पहाड़ उठा सकता है वो पत्थर को तो एक उंगली पे हिला देगा, और पुराने वाला जो ग्रूव है उसको अब हम धीरे धीरे धीरे क्या कर देना है, फिनिश हो जाएगा वो पुराना ग्रूव, क्योंकि अब नए ग्रूव पे थॉट पावर चलनी शुरू हो जाएगी, एक नया वे ऑफ थिंकिंग। एंड दिस लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल, माय एवरी थॉट विल अट्रैक्ट थॉट आफ्टर थॉट, एंड वो मेरी इनर बीइंग से या तो मुझे अलाइन कर देगा या फिर वो अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाएगी। एंड जितना जितना हमारा अपनी इनर बीइंग से अलाइनमेंट शिफ्ट होती जाती है ना, हम अपनी वास्तविकता से जितने जितने दूर होते जाते हैं, हमारी खुशी, संतुष्टता, ये सब हमें अनुभव नहीं होते हैं। फिर सब कुछ होते हुए भी, इवन पावर ऑफ पोजीशन होते हुए भी, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ एजुकेशन, सब कुछ होते हुए भी
0: कुछ नहीं,
1: अंदर कमजोर, डिससैटिस्फाइड, नॉट कंटेंटेड, नॉट हैप्पी, बिकॉज अंदर
0: आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो लोनली, आई एम सो अनहैप्पी, समथिंग इज मिसिंग, क्या मिसिंग है,
1: अंदर की पावर डिप्लीट हुई ना हर छोटी छोटी परिस्थिति में।
0: जैसे इसने बोला कि एवरी थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, ऐसे
1: अब क्या करना है, मुझे वो थॉट उस डायरेक्शन में जाते ही
0: एडिट कट
1: चेंज। वन, आई प्रिपेयर बिफोर अ सिचुएशन, परिस्थिति आने से पहले जो कंडीशंस मुझे पता है कि इस परिस्थिति में मुझे डिस्टर्ब होता है, इस परिस्थिति में मैं डिस्टर्ब होता हूँ आज, ऐसे नहीं भी अगर हुआ, जैसे ही वो बात आई, देखा अपने आप को धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाते हुए, कट चेंज। ज्यादा देर उसमें अगर बह जाते हैं, और फिर जैसे आपने लास्ट टाइम कहा, कई घंटे तो कई दिन तो कई जन्म,

0: वह कितनी शक्ति कम होती जाएगी। आज से एक प्रतिज्ञा अपने आप के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे,
1: अपने राजा की रॉयल थ्रोन।
0: देखो दुनिया में, देखो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, वी रेडी टू डू एनीथिंग, कहेंगे ना, क्योंकि आई वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, ये कहेंगे आई वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट पोजिशन, आई वॉन्ट टू रिमेन इन दिस पावर एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट पोजिशन, ये मेरा जीवन जीने का तरीका। एंड वेन आई एम इन दिस पावर, तो फिर कंटेंटमेंट, संतुष्टता कितना आत्मा को अनुभव होगा। दिस इज द नीड ऑफ आवर फॉर ऑल ऑफ अस। जो पावर की हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम एनर्जी। आत्मा, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, आत्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति, इसलिए हमने कहा शिव और शक्ति। तो आत्मा वो शक्ति है, एनर्जी है, उस एनर्जी से हमने पावर क्रिएट करनी है। दुनिया में आप देखो कितने एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि एनर्जी है, उस एनर्जी से हमने पावर क्रिएट की, राइट? बट वी हैड टू हैव अ मैकेनिज्म इन बिटवीन जिससे हम उस एनर्जी से पावर क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी है, हमने पावर क्रिएट की है उससे। लेकिन बीच में एक चीज आएगी। बचपन में हम एक सिंपल एग्जाम्पल करते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास ले गया, ठीक है, फिर उसको कागज के ऊपर या सूखे हुए कपास के ऊपर फोकस कर दिया। सूर्य वही है जो पहले था, अनलिमिटेड एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अनलिमिटेड एनर्जी उस कागज पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। लेकिन जैसे ही उस एनर्जी को फोकस किया तो उसने उस कागज पर प्रभाव डाल के उस कागज को परिवर्तन कर दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके फोकस किया ना, उसको कॉन्सेंट्रेट किया ना उस एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर। जब तक वो बीच का मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था, सूर्य की बेअंत शक्ति थी, लेकिन उसे पावर नहीं क्रिएट हो पाई। सो आई नीड दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इन माई लाइफ कि इस एनर्जी को, अब जो आत्मा की एनर्जी है, इसको मैं किस चीज पे फोकस करूं, क्या मेरा फोकस पॉइंट होगा जिससे ये पावर बनेगी अब, क्योंकि अभी तक वो एनर्जी है, पावर नहीं बन रही। दैट्स द डिफरेंस, कन्वर्टिंग एनर्जी टू पावर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग।
1: आप बताइए कि हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ से लाएं?
0: वो है, वो तो ऑलरेडी बैठी हुई है।
1: नहीं, मैं फोकस कैसे करें?
0: फोकस हमें चूज करना है मेरे जीवन का, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पर्पस ऑफ माई लाइफ।
1: ओके,
0: माई पर्पस ऑफ माई लाइफ क्या है? जब मेरा जीवन का पर्पस क्लियर होगा, वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, तो हमारी हर थॉट इंटरेक्शन में वो एनर्जी उस पर्पस के द्वारा पावर में रेडिएट होगी।
1: मेरा पर्पस ये है कि जैसे लोग बुढ़ापे के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट, पैसा वैसा सब रखते हैं, तो मैं अपने अगले जन्म के लिए अच्छा कार्मिक एक बंडल बना के रखना चाहिए।
0: चलो ठीक है, तो अगला जन्म अच्छा करने के लिए पहले कौन सा जन्म अच्छा करना पड़ेगा?
1: अभी का।
0: अभी का, सिंपल है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में रख लीजिए, ठीक है। अब आत्मा की शक्ति है, ये पर्पस है अब आपका, कि माय पर्पस इज कि मेरा ये जीवन कैसा होना चाहिए
1: कि अच्छे कर्म के मेरे वो खाता बने।
0: ठीक है, मतलब मेरा हर कर्म कैसा होना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्म होना होगा, ठीक है। अब अगर ये पर्पस ऑफ लाइफ उस क्षण याद था जब वो बहन ने वो मिठाई खिलाई, तो रिस्पॉन्स कुछ और हुआ होता। पर्पस ऑफ लाइफ ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, अब आपने कहा मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मेरे को अगले जीवन में अच्छे कर्म का खाता लेके जाना है, तो अगले जीवन के लिए मतलब मुझे ये जीवन में क्या करना पड़ेगा?
1: अच्छे कर्म करने।
0: अच्छे कर्म, तो ये ब्यूटीफुल पर्पस ऑफ लाइफ है। अब लेकिन ये पर्पस ऑफ लाइफ पर मुझे सारा दिन क्या करना पड़ेगा?
1: उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे पैसे कमाए, शूटिंग किया, फिल्मों में गया।
0: पर्पस था ना उस टाइम,
1: पर्पस था,
0: पर्पस
1: वैसे
0: था।
1: अब इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी।
0: आपके पास शक्ति थी, फिर आपने एक पर्पस ढूंढा, वो पर्पस क्या था? मुझे ये बनना है, ठीक है। उस पर्पस के ऊपर उस शक्ति को जब कॉन्सेंट्रेट किया, पावर आ गई, रिजल्ट आ गया।
1: अब मेरे पास शक्ति है,

0: शक्ति तो है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पर्पस
1: करती है वो बार बार,
0: पर्पस नहीं याद रहता मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है।
1: पर्पस जो दीवानगी, वो जो पागलपन, वो मैडनेस थी कि मैं सब कुछ दुनिया छोड़ने तैयार था,
0: पर्पस
1: दुनिया छोड़ने तैयार था टू बिकम एन एक्टर, उतनी स्ट्रांग नहीं है ये वाली,
0: तो वो बनानी है ना। जब आपने क्लियर कह दिया, आपने कहा कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है,
1: पर्पस तो है,
0: क्योंकि अब अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों का खाता अपने साथ आगे लेकर जाना है, तो मुझे वो पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा क्या करना पड़ेगा। सपोज आपको याद था कि मुझे पर्पस ऑफ ये है कि मुझे एक्टर बनना है, वो आपका गोल था। सी, गोल शॉर्ट टर्म होते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ इज कंटिन्यूअस।
1: मेरी ये लाइफ का भी नहीं है, मेरे तो पर्पस ऑफ लाइफ अगले जन्म का
0: भी है। पर्पस ऑफ द सोल ना,
1: लॉन्गर,
0: पर्पस ऑफ द बीइंग। तो उस लाइफ टाइम में छोटे छोटे गोल आएंगे, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये पर्पस ऑफ लाइफ कंटिन्यूअस है। जब हमने कहा मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है श्रेष्ठ कर्म करना, तो मुझे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी बात आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, माय पर्पस ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया, कुछ भी कहा और मेरे पर्पस ऑफ लाइफ को
1: हिला के चला गया।
0: फिर पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ?
1: छोटे थे हम तो वो ब्लॉक्स के ऊपर कोई घर बनाते थे, तब भी किसी को नजदीक नहीं आने देते थे, पैर लग जाएगा मेरा घर गिर जाएगा, मैं घर बना रहा हूँ ऊंचा ऊंचा, वो इतना उसको संभाल के
0: रखते।
1: और यहाँ तो कोई भी आता है मुझे गिरा देता है मेरी पर्पस ऑफ लाइफ से।
0: सो पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: या तो पर्पस ऑफ लाइफ मेरी वीक है, मेरी थॉट की जो मेरी चाहत है मेरी चाह वीक है, या फिर मैं वीक हूँ।
0: पर्पस ऐसी चीज है जो दोनों डायरेक्शन में जा सकते, जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए यूज कर दिया, किन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूज किया, और कईयों ने अपनी आंतरिक शक्ति को दुनिया के बहुत सारे नुकसान और विनाश के लिए यूज किया। वो भी शक्ति थी, वो भी शक्ति है। दैट सोल वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अ वीक सोल कैनॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। लेकिन the soul used its power,
1: atomic energy को कोई कैंसर ठीक करने के लिए यूज करता है, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, या सैटेलाइट के लिए, और वही एटॉमिक एनर्जी को कोई बॉम्ब बना के,
0: क्योंकि एनर्जी वही है, लेकिन किसी ने पर्पज यूज किया हीलिंग का, और किसी ने उसका पर्पज यूज किया वॉर का। तो एनर्जी तो वही थी, पावर भी उसने दी, लेकिन पर्पस कौन सी डायरेक्शन में था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव टू हैव दैट कंपस हमारे साथ हमेशा, कि पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड गाइडेड बाय वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। सपोज एक कंपनी है, दो लोग चलाते हैं, दोनों का पर्पस सपोज ये है कि हमें इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, हमने बहुत अच्छा बिजनेस करना है, हमें ये कारोबार ऐसे ऐसे फैलाना है। लेकिन एक का वैल्यू सिस्टम कहता है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, दूसरे का वैल्यू सिस्टम,
1: दूसरे का जो वैल्यू सिस्टम है वो शायद ये सोचता होगा कि भाई इसकी वैल्यू सिस्टम में तो कब बनेंगे, कब हमारी फैक्ट्री फ्लरिश करेगी, कब हमको तरक्की करेगी, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना।
0: तो इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से, अटेंशन से यूज करनी है, मेरा पर्पस क्या है और मेरे वैल्यू सिस्टम क्या है, और ये पर्पस और वैल्यू सिस्टम को बीच में रखते हुए एनर्जी को पावर के रूप में ट्रांसलेट करना है। ज्यादातर हम में से मेजोरिटी पर्पस ऑफ लाइफ अपने अगेन बाह्य चीजों पर बना लेते हैं, जैसे सपोज एक्टर हैं आप, तो एक्टर कहेगा मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है लोगों को एंटरटेन करना। एक मदर है, वो कहेगी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है मेरे बच्चों की संभाल करना। तो हम ज्यादातर अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, वो अपने डूइंग में ढूंढते हैं।
1: ओके
0: अपने प्रोफेशन में, अपने रिश्तों में, समाज की सेवा करने में, बाहर ढूंढते हैं डूइंग में। डूइंग में जो पर्पस हम ढूंढेंगे वो पर्पस मेरा नहीं है। दिस इज व्हाई वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद आवर लाइफ। सी सिंपल, अगेन सिंपल, एक डॉक्टर है, वो कहता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है लोगों का इलाज करना। ठीक है, दिस इज इन हिज डूइंग। ठीक है, इलाज करना वेरी ब्यूटीफुल भावना है, लेकिन उस इलाज करते करते अगर उसने स्ट्रेस भी क्रिएट किया, गुस्सा भी क्रिएट किया,
1: ग्रीड भी क्रिएट किया,
0: फियर भी क्रिएट किया, कंपटीशन भी क्रिएट किया,
1: पॉपुलैरिटी के नंबर वन बन जाओ ये ऑपरेशन करके,
0: डूइंग वाला सब कुछ कर रहा है वो पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन वो पर्पस ऑफ द बीइंग से अलाइंड नहीं है।
1: तो यही डॉक्टर पर्पस ऑफ बीइंग से अलाइंड होता तो क्या करता,
0: तो क्या करता बताओ, पर्पस ऑफ द बीइंग, पर्पस ऑफ द
1: मतलब सारी बातें जो
0: वो हीलिंग करता सारी, लेकिन उसका पर्पस ऑफ द बीइंग क्या होता,
1: टू हील द पर्सन,
0: नो टू हील द पर्सन तो डूइंग में
1: लव,
0: नाउ वी आर कमिंग टू द पर्पस ऑफ द बीइंग, डूइंग
1: कंपैशन, उसके दर्द को अपना दर्द समझना,
0: कंपैशन, एम्पैथी, लव, केयरिंग, हैप्पी, स्टेबल, पावरफुल, नाउ हीलिंग, बीइंग, डूइंग, बहुत फर्क है। आज क्या हुआ, पर्पस ऑफ द डूइंग हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन करते करते मेरा, क्योंकि हम कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाई एम आई हियर, मेनी पीपल विल आस्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, सो द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू बी इन दैट ओरिजिनल स्टेट ऑफ द बीइंग एंड रेडिएट दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग इन एवरी इंटरेक्शन, फिर उसमें आप डूइंग में कुछ भी जो कर रहे हैं, लेकिन इस डूइंग में अगर पर्पस ऑफ द बीइंग का नहीं ध्यान रखा, तो फिर कितने भी साल बीत गए, कितना भी डूइंग आपने कर लिया, एंड में यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो आज हमें पर्पस ऑफ द बीइंग, आई द बीइंग, उसका इस जीवन में क्या पर्पस है,
1: बीइंग शक्ति,
0: बीइंग को डूइंग में लेकर आना है सारा दिन।
1: वो डॉक्टर ने जो डूइंग करना था, ही शुड हैव ब्रॉट बीइंग इन इट,
0: तो बीइंग को डूइंग में लाएंगे ना।
1: ओके पहले वो बन बीइंग सो एंड सो।
0: अगर आप एक्टर हैं, आप फादर हैं, ये सब आपका डूइंग है, आप हस्बैंड हैं, ये आपका डूइंग है, लेकिन पर्पस ऑफ द बीइंग क्या है, टू बी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इन एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। तब आप सब कुछ करते करते हुए भी आप अपने जीवन के लक्ष्य को जी रहे हैं, और वो करते करते आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, डे बाय डे बढ़ती जाएगी। अब ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया बीच का।
1: सिस्टर ये आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाएं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, बीइंग और डूइंग क्या है, उस पर एक छोटा सा मेडिटेशन कर दीजिए।
0: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली, अपने आप को देखे, आई द बीइंग, the energy, the consciousness, this is my life, mere jeevan ka lakshya, the purpose of my life, the purpose of my life is with my being, mujh atma ki original quality, बींग की ओरिजिनल नेचर, लव, केयरिंग, कंपैशन, प्योरिटी, इसको अपने हर कर्म, हर डूइंग में लेकर आना, पर्पस ऑफ माई लाइफ। खुश रहना और हरेक को अपनी खुशी रेडिएट करना, पर्पस ऑफ माय लाइफ। स्वमान में रहना, हरेक को सम्मान देना, पर्पस ऑफ माय लाइफ। डिग्निटी में रहना, हरेक को डिग्निटी से देखना, पर्पस ऑफ माय लाइफ। आज सारा दिन अपने जीने के लक्ष्य को सामने रखते हुए आत्मा की शक्ति को हर सोच और हर कर्म में ट्रांसलेट करके उस पावर के प्रभाव को अपने जीवन में देखेंगे। ओम शांति।
1: Om Shanti. Thank you so much.
0: Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you.
2: When we say

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते रह सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन

0: के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं खाबो का सफर। जी हां, आइए साथियों, आज के इस खाबो का सफर को बना रहे हैं बहुत ही यादगार, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्यारा सा, और इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, ये सफर और भी खुशनुमा हो जाएगा। कहते हैं आदत की अगर बात करें, आदत बदल दूं कैसे तेरे इंतजार की, ये बात अब नहीं है मेरे इख्तियार की। देखा भी नहीं तुझको फिर भी याद करते हैं, बस ऐसी ही खुशबू है दिल में तेरे प्यार की। आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलता हूं मैं 1968 का एक फिल्म जिसका नाम था परिवार। यहाँ 1968 में ये फिल्म

थी परिवार जिसका नाम था और इसमें मुख्य कलाकार के रूप में जितेंद्र नंदा, राजेंद्र नाथ, ओम प्रकाश, पद्मा रानी, सुलोचना, टुनटुन आदि सभी इस फिल्म के कलाकार रहे। परिवार फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो अक्षर एच से शुरू होता है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गुलशन बावरा साहब ने इसे लिखा है, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर साहब ने इसे गाया है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद ये खूबसूरत गीत कार्यक्रम के शुरुआत में आपके लिए। रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।

सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है। हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी लौट के आने की आदत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना परिवार फिल्म से। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ, जो दुल्हा दुल्हन जो 1964 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय में। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो एच अक्षर शुरू होता है, हमने तुझको प्यार किया है जितना शायद कोई और करे। तो आइए, हर प्यार करने वाले की ये दीवानगी रहती है कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गीतकार इंदिवर साहब ने इसे लिखा है, लता मंगेशकर ने इस गीत को आवाज दी है और कल्याण जी अंजी ने संगीत दिया है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए।

0: सुन रहे हैं रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर में और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो सुनने को मिल रहा है उसका आनंद आप ले रहे हैं। कहते हैं, तेरी दोस्ती की आदत सी पड़ गई है मुझे, कुछ देर तेरे साथ चलना बाकी है, शमशान में जलता छोड़कर मत जा।

व्यक्ति गांव से जब मुंबई शहर में आता है तो वो शहर की संरचना को नहीं जानता, किस तरह के लोग कहाँ रहते हैं ये भी नहीं जानता। बिल्कुल नया होने की वजह से सभी लोग ये भी समझ जाते हैं कि नया व्यक्ति है, इसको फसल। तो ऐसे ही होता है राकेश के साथ भी, और वो उन लोगों के साथ जुड़ जाता है जो जुआ या इस तरह के अवैध गतिविधियों में शामिल है, और उसमें ये व्यक्ति भी शामिल हो जाता है। और तो मुख्य कलाकार है शशि कपूर, तनुजा और मदन पुरी। तो आइए, इस फिल्म का एक बहुत एक खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर, मुकेश जी ने इसे गाया है। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, और ये रहा गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो,

खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं। आइए अब ले चलता हूं 1965 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था पूर्णिमा। इस फिल्म के जो कलाकार थे धर्मेंद्र, मीना कुमारी महमूद, अनिता गुहा, नाजिर हुसैन और दुर्गा खोटे। दुर्गा खोटे आप सभी जानते हैं कॉमेडी हीरोइन रही और कॉमेडी करने में उनकी जो है एक अलग पहचान बनी थी उस समय। मुख्य रोल धर्मेंद्र साहब का रहा इसमें। शंकर सिंह रघुवंशी ने इसे म्यूजिक से संवारा था, इस फिल्म में म्यूजिक उसने दिया था। महापत्य शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। नरेंद्र सूरी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और ये एक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक भारतीय फिल्म है और इसमें पूर्णिमा मना फुल मून डे जिसको कहते हैं, खास करके उज्जैन में इसको बहुत मानते हैं लोग, वहां पर फेस्टिवल के रूप में पूर्णिमा को मनाते हैं। फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है, हम सफर। जी हाँ, आ गया याद। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। आइए ये गीत बहुत ही प्यारा सा है। लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गीत को गाया था। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत को संगीत से संवारा था। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं या बिना लैपटॉप के भी

0: को क्रिएट कर दो, या वेट करती रहूं एक साल, सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करो, यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वॉन्ट देन नाउ वट हेज हैपन्ड हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। हर शनिवार को हम लोग शाम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जिसमें खास युवाओं को टारगेट करके हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में खास करियर इन जर्नलिज्म के बारे में बातें की थी, और उसके पहले हमने करियर इन एजुकेशन के बारे में बातें की थी। तो निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे कि आज इस बार भी कुछ नया टॉपिक लेकर ही आप बात करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम लोग करियर इन होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम युवा साथी एंटर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो आइए, हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर शेलके संदीप शेलके सर जुड़े हैं औरंगाबाद से, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं और एग्जामिनर भी हैं। तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको जो है होम्योपैथी से रिलेटेड करियर के बारे में बातें बताने वाले। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शेलके जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति रमेश भाई, बहुत बढ़िया है, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी जी,
1: और बढ़िया चल रहा है सब।
0: बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आपका इस होम्योपैथी में कैसे एंट्री करना हुआ, किस तरह से आप इस मेडिकल फील्ड से जुड़े, वो थोड़ा सा आप बताएं हमें।
1: जी जी, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए काफी एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को कम मार्क्स मिल जाते हैं, कभी आजकल तो आप जानते ही है कि काफी कंपटीशन है। जैसे अभी एमबीबीएस का अगर आप कटआउट लेते हैं, अभी दो दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो लगभग 700 में से 630 मार्क के ऊपर ही गवर्नमेंट

0: कॉलेज मिलता है 630 या 650 मार्क तक। तो अब अगर समझो आपको 600 मार्क है तो आपको सेमी गवर्नमेंट में मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे और फाइनेंशियली भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आपको फाइनेंस कैसा है आपका। तो दूसरी ये बात होती है कि भाई कुछ बच्चों को फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें फिर एक दो तीन अल्टरनेटिव मेडिसिन रहता है जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज होता है और होम्योपैथिक कॉलेज होता है। तो एडमिशन में ऐसा होता है कि अगर आपको एमबीबीएस के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार कुछ बच्चे आयुर्वेद में जाते हैं और कुछ होम्योपैथी में। तो जैसा थोड़ा बहुत अगर स्कोर कम होता है अगर और आप अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी में आ सकते हैं। जी
1: जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में क्या सिनेरियो है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किस तरह की बातें होती हैं ये आपने बताया, तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर संदीप शेल के आपकी बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए कि आपका पढ़ाई और कहां पर हुआ, किस तरह से आप कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइए।
0: जी, तो सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन था जो कि होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक वो जालना में हुआ, उसके बाद 11वीं 12वीं जालना में हुआ। और मैं खुद एमबीबीएस के लिए एडमिशन चाहता था लेकिन उस समय मेरा जो परसेंटेज था मेरे हिसाब से 88% थे, शायद 90 पे क्लोज हुआ था। थोड़ा निराश होने के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अभी डॉक्टरी नहीं करना है। और पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज और सिम्बोसिस में एडमिशन लिया और फर्ग्यूसन में लिया कि भाई चलो अभी एमपीएससी यूपीएससी करते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर मेरा जो एजुकेशन था माँ बाप से दूर हुआ है, तो मेरी मम्मी के जो चाचा थे जैसे मेरे ग्रैंडफादर ही बोल सकते हैं, तो उनके पास था। तो मेरी जो मौसी है वो भी होम्योपैथिक में ही थे। तो फिर उनका कॉल आया कि भाई आप एमपीएससी यूपीएससी मत करो, दोबारा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, अच्छे सीट मिल जा रही है औरंगाबाद में। तो फिर उन्हीं के कॉलेज में मैं होम्योपैथिक कोर्स को ज्वाइन किया।
1: अच्छा,
0: फिर होम्योपैथिक कोर्स एक 4.5 साल का होता है, उसके बाद एक साल इंटर्नशिप, के बाद ये हो गया ग्रेजुएशन, के बाद हमने एमडी किया।
1: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपको जो है मेडिकल फील्ड में एंटर करने का मौका मिला और उसके पहले क्या चीजें हुई वो भी आपने बताया। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज के समय में डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है या आसान है वो थोड़ा सा बताएं। मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है वो बताइए।
0: दोनों चीज पे हाईलाइट करते हैं। आसान तो कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है कि आजकल के जो पीढ़ी हर एक को क्या है, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो इतना आसान नहीं है। अब जब होम्योपैथी में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो सबने समझ लेना चाहिए कि उसका परसेंटेज कम है। और मेडिकल फैकल्टी में जैसा आप सिलेबस की बात करते हैं, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या फिर आपका एमबीबीएस हो, सब में लगभग 90% सिलेबस सेम है। जैसे कि एनाटॉमी आता है, फिजियोलॉजी आता है और पूरी बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये इसमें किताबों में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अगर बच्चा होम्योपैथी में आता है तो उसको एमबीबीएस की किताब पढ़ने के बाद होम्योपैथिक शास्त्र की भी किताब पढ़ना है, या वो आयुर्वेदा में जाता है तो एमबीबीएस की किताब भी पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके साथ आयुर्वेदा का भी पढ़ना है। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जैसा कम परसेंटेज वाला बच्चा है तो हमने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में काफी लो रिजल्ट लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो जो जिसमें पढ़ाई की लगन है उन्होंने ही डॉक्टरी फील्ड में आना चाहिए। और आजकल क्या हो गया है कि काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं और हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कंपटीशन भी काफी है और काफी डॉक्टर्स भी हैं, तो इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। और दूसरी एक चीज अगर आप एनालाइज करते हैं तो जैसा मेडिकल ग्रेजुएशन ये 5.5 साल का तो लगभग 6 साल का होता है, और उसके बाद पीजी करना है जो कि एमडी करना है, तो लगभग आपको 9 साल पढ़ाई करने के बाद आपका करियर चालू होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड आप लेते हैं जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल, तो 6 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। और बाकी जगह पे भी अगर समझो इंजीनियरिंग करता है पॉलिटेक्निक वगैरह, तो कम टाइम में एक कोई भी अच्छा ऑक्यूपेशनल कोर्स लेकर वो जल्दी से उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो मेहनती बच्चे हैं और जो कुछ उनको डॉक्टर ही बनना है उन्होंने ही ट्राई करना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर संदीप शेल के सर। मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत, उसके बाद फिर से होम्योपैथी एज ए

ईयर कैसे हम लोग चुन सकते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर संदीप शेलके जी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं, अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे हैं और खास होम्योपैथी में कुछ करना चाहते हैं तो उनको किस तरह से सीधा तरीका क्या है, सिंपली वो किस स्टेप्स को फॉलो करें वो बताइए।
1: तो अभी कैसा है कि मेडिकल एजुकेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसमें तरीका एक ही है कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसेस होती है, एक महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट होती है या जो भी स्टेट में जो बच्चा है, एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। तो जो जिस तरह उसका मेरिट आएगा उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है और कट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा एमबीबीएस का सपोज आप ऐसा पकड़ लो कि एमबीबीएस का हो गया है 590 पे क्लोज होता है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद फिर शुरू होगा 590 से नीचे तक जो भी कॉलेजेस है, जितने जितने सीट है। तो फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में 1500 सीट एमबीबीएस की है तो इस 1500 सीट भरने के बाद उसके बाद होगा सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस, उसके बाद डेंटल की सीट भरी जाएगी, उसके बाद आयुर्वेदा की सीट भरी जाएगी और उसके बाद आएगा होम्योपैथी की सीट। तो आप ये समझ लो कि सपोज अभी इस वक्त महाराष्ट्र में लगभग 58 होम्योपैथिक कॉलेजेस है। 58 इंटू सपोज आप एक ऐसा पकड़ लो कि एक 70 सीट, कुछ कॉलेजेस में 100 सीट है, कुछ कॉलेज में 50 सीट है, तो लगभग आप 50 × 5 × 25 तो लगभग 3-4 हजार सीट महाराष्ट्र में होम्योपैथिक है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको करना है, जिस जैसा भी आपका मेरिट आता है तो आपको मेरिट कॉलेज का नाम डालना है, 2 या 3 कॉलेज के प्रेफरेंस डालना है और फिर जैसे जैसे राउंड होते हैं उस हिसाब से आपको कॉल आएगी। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने कॉलेज सही चुनना है, उसका पिछला कटआउट देखना है और उसी प्रकार से थोड़ा ऑनलाइन में अलर्ट रहना है और एडमिशन होना है। अभी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही एक मेडिकल एजुकेशन का फिलहाल का तरीका है जी।
0: अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि कई बार हम लोग जो है कॉलेज ढूंढ लेते हैं एडमिशन के लिए, हम लोग चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्तर है उसके बारे में आप
1: जी सर।
0: तो ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर प्राइवेट के लिए भी है?
1: जी अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट का बताता हूँ। मोस्टली होम्योपैथी में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। अगर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी पूरे प्राइवेट कॉलेज है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भोपाल में है। तो एक हर स्टेट में लगभग अभी एक ही कॉलेज है महाराष्ट्र में। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी जो है ना कि कट ऑफ मार्क्स आपको देना है और वैसा प्रिफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो अभी 99% गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, सब पूरे प्राइवेट ही कॉलेज है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी जो आपने करंट सिनेरियो के बारे में बताया। और इसके साथ में चलिए एडमिशन हो गया, उसमें एडमिशन होने के बाद किस तरह से हमें जो है आगे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे हम लोग ध्यान दें पढ़ाई पर, होम्योपैथी में क्या चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें समझना है।
1: मान लो कि आपका एडमिशन हो जाता है तो अभी एडमिशन होने के बाद ये जो कोर्स होता है 4.5 साल का होता है, जो मेडिकल में सभी कोर्सेस 4.5+1 रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप, 4.5 साल का कोर्स, तो उसमें 1.5 साल फिर एक साल, तो ऐसा 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, पहला साल होगा 1.5 साल का, दूसरा साल 1 साल का, तीसरा साल 1 साल का, चौथा साल 1 साल का, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप। और एमबीबीएस में जो होता है कि 3 ही साल होते हैं 1.5-1.5 साल के। तो एडमिशन हो जाए आपकी, उसके बाद फर्स्ट ईयर की एग्जाम आएगी आपको। और अभी जो है एक नया तरीका या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, अभी आ रहा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो काफी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हो गए, सिलेबस में भी चेंजेस हो रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि काफी चीजें उनके पास लेके थोड़े रिफॉर्म्स ला रही है। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा एक सिस्टम आ रहा है अच्छी तरह, टीचिंग सिस्टम चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हुआ है और प्लान ऑफ टीचिंग भी बदल गया है। तो इससे थोड़ा एक एजुकेशन में बेहतर चीज आएगी। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में आयुर्वेदा होम्योपैथी का जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड कम है, तो अभी गवर्नमेंट खुद उसमें ख्याल दे रही है। तो टीचर्स का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी अपग्रेडेशन हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो प्रिंसिपल मीटिंग थी उसमें भी मैं भोपाल में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो वो खुद मैं अटेंड किया हूँ।
0: अच्छा,
1: तो गवर्नमेंट के काफी अच्छे प्लानिंग्स है, और अगर बच्चा चाहे कि अच्छी, देखिए अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए होम्योपैथी में एडमिशन ना ले, अगर वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में भी काफी जिसे जो पुरानी बीमारियां होती है, कैसा है कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है, एक्यूट स्टेज में आप सर्जरी केस में एमबीबीएस का छात्र अच्छा काम कर सकता है, लेकिन 90% जो बीमारियां है वो जटिल बीमारियां होती है, पुरानी बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, और इसी में जहां तक अंग्रेजी दवा का इलाज है वो टेम्परेरी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बच्चों ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये पैथी कम है या वो पैथी कम है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आज 23 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं मेडिकल कॉलेज में भी आज प्रोफेसर हूँ, एचओडी हूँ, और काफी बोले तो कोई रिजल्ट्स के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और बच्चे में एक हुनर होना चाहिए और पढ़ाई करने की जिद होना चाहिए। तो वो एडमिशन होने के बाद अगर वो फोकस करता है, प्रॉपर पढ़ाई करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई पैथी के बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा। जी
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने बताया कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी

0: परमिशन ना लें तो इसका क्या भाव अर्थ है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
1: हाँ, तो जनरली क्या होता है कि काफी लोग डॉक्टर बनने के बाद वो कोई जनरल प्रैक्टिशनर बन जाता है और वो होम्योपैथी पढ़ने के बाद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करता है। ये जो सिनेरियो है 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं। हालांकि उसे जो पढ़ाया जाता है वो पूरा होम्योपैथिक शास्त्र पढ़ाया जाता है या आयुर्वेदा का शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो जो छात्र आयुर्वेदा में पढ़ता है उसने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए, जो छात्र होम्योपैथी में पढ़ाई कर रहा है उसने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट और जल्दी पैसा कमाने के बच्चों को लगता है, इसके कारण वो शॉर्टकट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथी का जिसको अच्छा नॉलेज है, जिस छात्र को अच्छा नॉलेज है, वो होम्योपैथी में अगर फोकस करे तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है और उसी में इसे कमाई भी अच्छी हो सकती है और सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। जी
0: जी जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया क्योंकि कई बार चीजें जो है हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का जो जुनून है वो शायद ढीला डाला ही रहता है।
1: yes.
0: ये आपने थोड़ा सा बताया इसलिए मैं भी चाह रहा था कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें आप। आगे हम लोग बातें करेंगे कि होम्योपैथी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास नाम से भी इस कार्यक्रम को करते हैं।

0: व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दे, एक उनका विकास हो, उनका व्यक्तित्व में विकास हो, नाम कमाए, काम करे, अच्छा काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, उनका पूरा ऑलराउंड हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, इसलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी ने बहुत ही आत्मदृष्टि की बात कही कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें, आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है और अच्छे डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में एक नाम करना है, होम्योपैथी का भी नाम करना है, ये अगर मकसद लेके आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। कि कोई भी फील्ड छोटा नहीं है, आप हर फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और लोग आपके नाम से होम्योपैथी को पहचानेंगे, तो इसीलिए आप होम्योपैथी के एम्बेसिडर बनते हो। सिर्फ एडमिशन लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एडमिशन के बाद ही आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसीलिए किसी भी फील्ड को छोटा ना समझे और जो भी फील्ड है उसको पूरे ईमानदारी से आप करें। आइए डॉक्टर संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप होम्योपैथी में जब एंटर किए तब क्या सिचुएशन था और अभी होम्योपैथी में क्या क्या नया चेंजेस आए हैं और सरकार इस पे क्या काम कर रही है, जो आपने बीच में थोड़ा सा हिंट दिया उसको और स्पष्ट की।
1: जी, तो काफी अच्छा सवाल है आपका रमेश जी। तो सबसे पहले जब मेरा जो एडमिशन था होम्योपैथी में 1996, तो उस समय सिनेरियो काफी डिफरेंट था कि एडमिशंस इजीली हो जाते थे, प्रोसेस डिफरेंट थी और लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। आज के डेट में लोग या जो भी पब्लिक है बाय चॉइस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आती है, तो सबसे ये डेवलपमेंट हो सकता है होम्योपैथी के बारे में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि करियर ऑप्शंस क्या होते हैं होम्योपैथी में। तो सबसे पहले करियर ऑप्शंस क्या है कि जब भी आप, कुछ लोग कैसा है कि बीएचएमएस जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथी का खुद का एक छोटा क्लिनिक चालू करके वो पेशेंट को सेवा दे सकते हैं। ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना, जो कि एमडी होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है। जब भी कोई छात्र एमडी करता है तो उस शास्त्र के बारे में उसको डिटेल मालूम होती है और वो और अच्छी सेवा दे सकता है। अगर एमडी करने के बाद उसके जॉब ऑप्शन भी बढ़ते हैं। काफी लोग ये भी करते हैं कि बीएचएमएस हो गया, एमडी हो गया, तो प्रैक्टिस के अलावा आप मेडिकल कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको शिक्षक बनना है होम्योपैथी में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो है एमडी, और उसके बाद आजकल उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पीएचडी कर सकते हो। अभी एमडी करने का सबसे मेन फायदा जो होता है कि काफी लोगों को या पेशेंट भी सोचते हैं कि भाई अगर मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो कम से कम डॉक्टर एमडी होना चाहिए, तो ये एक साइकोलॉजिकल भी उसको फायदा होता है और उसका नॉलेज अपग्रेड होने के कारण उसको सही मात्रा में सही दिशा में वो ट्रीटमेंट दे सकता है। इसके बाद जैसा आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप एमपीएससी यूपीएससी से भी ट्राई कर सकते हैं, ये एक हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स, अभी आज पूरे महाराष्ट्र में मैं पढ़ाता हूँ, ऑल इंडिया में मैं जाता हूँ, तो काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में एचआर मैनेजर हो गए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, कुछ बच्चे इमरजेंसी कोर्सेज करते हैं होम्योपैथी के बाद, कुछ बच्चे जो है ना कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं, और कुछ छात्रों ने हमने ये भी देखा है कि खुद के क्लासेस शुरू किए जो होम्योपैथी पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अभी मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप में कुछ करने की चाहत है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र, जैसा आपने बताया कि छोटा या बड़ा है, तो काफी स्कोप है। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों ने ऐसा समझना चाहिए कि मुझे, मेरा होम्योपैथी में एडमिशन हुआ है या एलोपैथी में एडमिशन हुआ है तो प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने खुद बाय चॉइस होम्योपैथी सिलेक्ट करके इसमें आगे शिक्षण लेके बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हुआ हूँ। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। इसके साथ में मैं चाहूंगा कि सरकार होम्योपैथी को लेकर किस तरह से जागरूक है और क्या नया कुछ करने वाली है इस फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जी आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि अभी पहले जो था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी कम थे। अगर आपको एग्जाम्पल देना तो महाराष्ट्र में जो था ही नहीं, तो अभी एक नया कॉलेज जलगांव में चालू हुआ है, फिर काफी जगह में जाता हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, केरला में है, हैदराबाद में है, उसके बाद भोपाल में है, तो अभी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन आगे चल के जैसे कि हर गांव में एक सिविल अस्पताल होता है, तो तुम्हारा

0: आरोग्य केंद्र होता है, तो हर जगह पे मेडिकल ऑफिसर की जगह निकलने के बाद, अभी फिलहाल तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इतना स्कोप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 साल में हर हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी एक मेडिकल ऑफिसर या जिसको RMO कहते हैं, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, इनके लिए जगह निकलेंगी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो एक सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई छात्र चाहता है तो आगे चल के उसको नौकरी मिलने के एक 30% चांसेस है जी।
1: हाँ, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि हर टाउन में, छोटे छोटे टाउन में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वो राजस्थान सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है सारे, तो ऐसा क्या हो सकता है इन फ्यूचर कि होम्योपैथी हॉस्पिटल्स भी जगह जगह खुले और वहां पर होम्योपैथिस्ट बैठे? तो चलिए, मैं चाहूंगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सरकार अगर चाहे तो कर सकता है, जैसे राजस्थान में आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हर जगह मिलेंगे आपको और वहां बेकायदा डॉक्टर भी बैठते हैं और मेडिसिन भी लोगों को फ्री दिया जाता है।
0: मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा कोरोना पीरियड में होम्योपैथी में जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि एक आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा है तो हर किसी ने लेना चाहिए और खाना चाहिए, तो उस समय दवा का रिजल्ट तो था ही था, काफी हद तक कोरोना कंट्रोल करने में हेल्प हुई, लेकिन इससे ये पता चला गवर्नमेंट से कि उनको भी पता चला कि होम्योपैथिक दवा अच्छी तरह काम कर सकती है और लोगों में जो जागरूकता थी होम्योपैथिक के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता बढ़ी, उनका विश्वास बढ़ा और डेफिनेटली काफी हद तक होम्योपैथी ने कोरोना कंट्रोल करने में मदद की। तो इस तरह लोगों की जो आज होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी काफी प्रैक्टिस भी बढ़ी और लोगों का उसमें विश्वास कायम रहा। तो ये चीज होती है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक पहल लेती है तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उस दिशा में सोच रही है, जैसे कि योगा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, ये एक पिलर्स कह सकते हैं आप कि इससे ही, इसके कारण देश में सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और जैसे कि बीमारियां कंट्रोल करने में, जटिल बीमारियां कंट्रोल करने में डेफिनेटली होम्योपैथी काफी काफी मदद कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
1: जी जी जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, होम्योपैथी में जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और वो व्हाइट कलर के गोलियां
0: जी
1: है ना,
0: जी जी,
1: तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन बनता है ये कैसे बनता है, हर्ब से बनता है?
0: हाँ,
1: या तो इसमें अल्कोहल की मात्रा भी होती है, तो कितना
0: जी,
1: होती
0: जी,
1: है
0: थोड़ा बता,
1: थोड़ा सा डिफाइन कीजिए।
0: तो होम्योपैथिक मेडिसिन का जैसा बताना चाहता हूँ कि इसमें केमिकल कोई होता नहीं है। अगर आपको अभी एग्जांपल है ना, पैरासिटामोल जो क्रोसिन गोली आती है उसको अगर बनती है तो पूरी एक पाउडर फॉर्म में बनती है, उसमें केमिकल होता है। होम्योपैथिक में अगर दवा जो होती है इसका मेन सोर्स होता है हर्बली सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है, मिनरल सोर्स होता है, तो जितनी भी चीज धरती पर पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए अगर बता जाओ तो नमक से भी दवा बनती है, हल्दी से भी दवा बनती है, तुलसी से भी दवा बनती है, और जितने भी आयुर्वेद में जितने भी झाड़ या जितने भी सोर्सेस बताए गए उसी सोर्स से ये दवा बनती है। लेकिन आयुर्वेदा से भी जो होम्योपैथी में जो दवा होती है उसकी मात्रा बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी जैसा, एक नैनो पार्टिकल जैसी होती है। जैसा कि अगर आपको एग्जांपल देना है तो अगर तुलसी के इससे दवा बनाना है तो तुलसी का एक बूंद लेना है दवा का, जो जूस का, और उसको क्या करना है कि एक 100 ml फॉर एग्जांपल एक 100 ml अल्कोहल में डालते हैं, अल्कोहल में डालने के बाद उसमें से फिर एक एक बूंद लेना है और उसको एक 100 stroke मारना है या 100 झटके मारना है, तो उसके बाद ये 1 power की दवा होती है। तो अगर आपको 30 power की दवा होना है फिर दोबारा उसको क्या करेंगे, 100 ml अल्कोहल में डाला जाता है, फिर उसमें से एक बूंद लेने का, फिर उसको 100 stroke मारना है, तो ये होगी 2 power की दवा। तो ऐसा कंटिन्यू 30 बार हर इसमें से वो जो हर बार एक एक ड्रॉप उसमें से लेके 100 ml में डाला जाएगा और ऐसा 100 जब 30 बार किया जाएगा तो वो हो जाएगी 30 potency की दवा। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दवा जो है इसमें नाम मात्र होती है और ये अल्कोहल बेस्ड होती है, तो शरीर में पाई नहीं जाती है, लेकिन इसकी जो पावर है वो काफी अच्छी होती है, इसको डायनेमिक पावर बोलते हैं, वाइटल पावर बोलते हैं, और हम जब ये शरीर में दवा देते हैं तो ये स्टिमुलेशन का काम करता है और वो स्टिमुलेशन होने के बाद वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करता है। जी सर,
1: तो इसमें अल्कोहल का कोई परसेंटेज भी होता है कि नहीं होता है?
0: अल्कोहल लगभग 99% होता है, लेकिन ये जो होता है कि जो मार्केट में अल्कोहल पाया जाता है ये डिफरेंट, ये मेडिसिनल अल्कोहल

0: बहुत कम होती है इसमें, तो डायबिटीज के पेशेंट भी इसको आसानी से खाते हैं। जो शुगर, इससे डायबिटीज की शुगर बिल्कुल नहीं बनती, बढ़ती बहुत अच्छी प्रकार से बनती है, स्टराइल रहती है और आसानी से। मैं सबको, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे आसान इजीली जो दवा आप खा सकते हैं वो होम्योपैथिक है। आयुर्वेदिक में भी काढ़ा होता है या कड़वी दवा होती है, होम्योपैथी में ऐसी कोई चीज आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं दवा खा रहा हूँ। जैसे एलोपैथिक दवा भी आप खाएंगे तो खाने के बाद थोड़ा रेस्टलेस होता है पेशेंट या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ये ऐसा कोई चीज होम्योपैथी में पाई जाती नहीं, इसीलिए ये बच्चों में, बूढ़ों में और सब लोगों में काफी लोकप्रिय है।
1: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी कैसे बनता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है और उसके पावर्स के बारे में आपने स्ट्रोक के साथ समझाया। इसके साथ में क्या होम्योपैथी में लिक्विड्स भी, जैसे एलोपैथी में सिरप्स होते हैं वैसे होम्योपैथी में सिरप्स भी बनते हैं क्या?
0: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो अभी जैसी एलोपैथी में जैसी कंपनियां है वैसे होम्योपैथी में भी काफी कंपनियां है। कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि SBL है, लॉर्ड्स है, श्वेब है। तो आजकल कैसा है कि ये इस प्रकार के मेडिसिन भी होम्योपैथी में उपलब्ध है, इसे पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है। जैसे कि कफ सिरप होता है, टॉनिक होता है। अब होम्योपैथी में अगर कहा जाए तो नाम के लिए एक बताता हूँ, अल्फा अल्फा टॉनिक आता है, कफ सिरप भी काफी आते हैं। तो सभी प्रकार की होम्योपैथी में भी लिवर टॉनिक, अल्फा टॉनिक, कफ सिरप, डायबिटीज के ड्रॉप, सब प्रकार के दवा अवेलेबल है और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा बिजनेस भी कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो पेशेंट्स को आजकल कुछ डॉक्टर्स इस गोलियों के साथ, अगर खांसी की दवा है, टॉनिक है, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट को क्या लगता है कि फिर ये गोली ठीक नहीं करेंगी, ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट में एक धारणा होती है। तो इसी कारण कुछ कंपनियां अच्छे दवा लेकर आई है और काफी लोग सक्सेसफुली ये जो एलोपैथी जैसी दवा होम्योपैथी में भी उपलब्ध है और वो दे रहे हैं।
1: जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो युवा साथी हैं या जो सुन रहे हैं उन सभी को काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, होम्योपैथी में अगर हम समझो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो वो और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं क्या, इसके अलावा प्राइवेट से काफी कौन कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं।
0: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, इनमें भी वो जाके पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वो पर्सनल कोचिंग चालू कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जैसा मैंने बताया आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 90%, जैसा अभी औरंगाबाद में भी आप मुझे पूछते हैं, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है तो हर जगह हमारे ही स्टूडेंट्स, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स काम करते हैं एज अ असिस्टेंट डॉक्टर। जो मेन डॉक्टर होते हैं उनको हेल्प करने के लिए और काफी अच्छी तगड़ी कमाई भी निकलती है, अच्छी उनकी पगार भी होती है और काम भी अच्छा करते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि भाई सिर्फ MBBS करने के बाद ही हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और अपनी जैसी चर्चा हुई है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी है तो 10-20% है, स्लोली स्लोली वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एक छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करता है या कोई HR मैनेजर का कोर्स करता है और एक नया कोर्स करते हैं सब, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो होम्योपैथी करने के बाद, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद भी कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स है हमारे कि जो हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह हॉस्पिटल संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। तो ये बच्चे ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शंस हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और जो नए बच्चे होम्योपैथी में जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पे, संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे अभी?
0: संदेश में यही बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बनना है तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कोई पैथी छोटी या बड़ी होती नहीं है। आप अगर अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या MBBS या एलोपैथी हो, आपका निश्चय मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है, आपका विश्वास अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा डॉक्टर बनने में कोई रोक सकता है। और अगर आप में सेवा भाव सेवा करने की रुचि है तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया है। तो मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी में आइए, विस्तार कीजिए होम्योपैथी का और लोगों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।
1: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन।

0: आपने दिया होम्योपैथी के बारे में छोटी छोटी बातें आपने सुनाया है और निश्चित तौर पे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल में, खास होम्योपैथी में, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संदीप जी से सारी जानकारी करियर इन होम्योपैथी के बारे में लिया। अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला ऐसा लगता है तो आप रेडियो मधुबन पर मैसेज कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पे। अपना नाम के साथ आप मैसेज कीजिए तो आपको फॉलोअप करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ इच्छा के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति
1: ओम शांति।
0: सुनते रहो मस्कराते रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy, life है। ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैसे जीते हैं भला।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बंटी, पात्र परिचय, आकाश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य। बंटी की मॉरल साइंस नैतिक शिक्षा की क्लास चल रही थी, तभी
2: हमारे राष्ट्रपति को तुम जानते ही हो, उनकी अहिंसा की नीति आजादी की लड़ाई में बड़ी कारगर साबित हुई। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, जिससे कोई भी देश विकास नहीं कर पा रहा है। विकास करने के लिए जरूरत है शांति कायम होने की, चाहे खाड़ी युद्ध हो या कारगिल युद्ध या फिर पानीपत की लड़ाई। सारी लड़ाइयों में जन और धन दोनों का नुकसान हुआ है।
1: एक हफ्ते से टीचर यही टॉपिक पढ़ा रही थी, तभी बंटी ने सोचा,
3: ओह कितना बोरिंग टॉपिक है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे बोरियत दूर हो जाए।
1: वह अपने पड़ोस में बैठे राहुल से बोला,
3: यार राहुल, तुमने कल मैच देखा था?
4: हाँ बंटी, देखा था।
3: सहवाग की बैटिंग देखने लायक थी, उसने जो कवर ड्राइव लगाया वह तो बहुत शानदार था। सहवाग बहुत अच्छा बल्लेबाज है।

0: ए का कैप्टन होगा बंटी और ग्रुप बी का राहुल।
1: पूरी क्लास दो ग्रुप में बट गई। तब टीचर बोले,
0: अब दोनों ग्रुप इस पर डिस्कस करेंगे कि अहिंसा हिंसा से अच्छी कैसे है। बंटी की टीम अहिंसा के पक्ष में बोलेगी। बंटी तुम तैयार हो ना?
2: यस सर। लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे धन का नुकसान हो जाता है। दुनिया की हालत देखते हुए लगता है शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सारा देश शांति से मिलजुल कर रहे तो युद्ध नहीं होगा। जब युद्ध ही नहीं होगा तो हम इतिहास में कम चैप्टर पढ़ने लगेंगे।
1: तो इस तरह नटखट बंटी का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाकर टीचर ने और बातों से हटा दिया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

टीरी टीरी देखो तम सुहाना के तैयारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती आँख ना चुराओ ना चुराओ रूठ कर न जाओ आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ ए न जाओ आँख ना चुराओ

0: सोनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: एंगर इज अ वेपन जिसको हम

0: हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है. व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा. बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है. तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे. बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में. तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा. ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल. सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: की बिना करे सुने ये बात हो गई
0: ओहो ओहो ओहो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

Tatta,

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗಳಿಗೆ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡ ಕರಕ ಗಜೆ.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि गणित में प्रयोग होने वाले पाए का मूल्य भारतीय गणितज्ञ बुधायन ने ज्ञात किया था। उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया था उसे हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने ये खोज 6वीं शताब्दी में की थी जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले का समय है।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर है, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक रिश्ता हम अपने आप से कायम रखते हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे कि अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके साथ जो रिश्ते हमारे हैं उनके बारे में सोचते थे, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में हमने ये जाना कि सबसे सुदृढ़ सबसे मजबूत रिश्ता हमारा अपने आप से होना चाहिए। जब वो रिश्ता कायम हो गया तो बाकी रिश्तों में भी सौहार्द्रता और मधुरता नजर आने लग सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को लेंगे उसी तरह से हम अपने आसपास जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी ले सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर रिश्ते को टटोला, चाहे वो घर में था या फिर बाहर। जब हम कर्म क्षेत्र में हैं, जब हम अपने ऑफिस में हैं, चाहे किसी भी तरह का हमारा काम है, हम एक परिवार की तरह वहां रहते हैं अगर, तो फिर रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे माइंडसेट पे, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं उसी ऑफिस में जहां हम काम कर रहे हैं

0: ये मेरा सदस्य है, आप उसके लिए बुरा कैसे सोचेंगे? जब आप उसकी गलती को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, उसको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। इसका बहुत सारा रोल इसमें उस सीनियर पर है। उस सीनियर को वो ट्रस्ट ट्रांसमिट करना पड़ेगा। पहले आपको ट्रस्ट पहले करना पड़ता है। हम आज तक उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आप विश्वास के पात्र बने तो हमने सारा उनकी तरफ रख दिया। आप जब विश्वास के पात्र बनेंगे तब हम ऑटोमेटिकली विश्वास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज दिन तक हमारा जो कार्य करने का तरीका था, अदर पीपल हैव टू डू एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच,
1: वो विश्वास के लायक ही नहीं लगते हम।
0: तो सी, इट वाज ऑलवेज द बॉल इज इन योर कोर्ट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मैंने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो आप करें, आप अपने ऊपर मेहनत करें, आप विश्वास के पात्र बनेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। वाई नॉट द अदर वे राउंड, कि मैं आप पर विश्वास करूं, इतना विश्वास करूं कि वो विश्वास जब आप तक ट्रांसमिट हो तो आप विश्वास के पात्र बन गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। वो कैसे आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि वो विश्वास आपको इतना सारा ट्रांसमिट किया गया। सो नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स हियर नेवर देयर, कि इनको क्या करना है, हर एस्पेक्ट पे, हर क्षण मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, हर रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक दिस मोर ब्यूटिफुल, उसके लिए मुझे क्या करना है। अभी तक था इन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट चेंज, इन्हें चेंज करना, इन्हें चेंज करना, एंड नाउ इट इज आई हैव टू चेंज, एंड आई हैव टू चेंज कोई जबरदस्ती नहीं, बट आई हैव टू चेंज इट्स ओनली गोइंग टू मेक मी मोर ब्यूटिफुल।
1: इनफैक्ट इट बिकम्स इजियर, यू नो, वंस वी से कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेरे संपर्क में है तो हमारा कोई कनेक्शन तो है,
0: एब्सोल्युटली,
1: तो उसको हम बेहतर है क्यों ना करें, हम क्यों उनके बारे में नेगेटिव सोच के एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो,
0: तभी तो आपको फील होगा ना कि आप एक परिवार में, जब आप वो सेम तरह से वर्क करेंगे। वो सिर्फ एक इसी टूडे व्हाट हैज हैपेंड, पीपल इन द इंडस्ट्री आर सेइंग कि यू नो वर्क कल्चर बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो यू नो कोई हायरार्की नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, बाह्य चीजों में परिवर्तन कर दिया। हमें सर मत बुलाइए, हमें नाम से बुलाइए, कोई अलग अलग कैबिन्स नहीं है, सभी आसपास इकट्ठे बैठे हुए, बाह्य चीजें करने से नहीं होगा ये, दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। अभी क्या हो रहा है, बाह्य चीजें तो परिवर्तन कर दी, लेकिन इंटरनली आई एम द बॉस, यू बेटर रिमेम्बर दैट। It won't work. Internally, if I can say we are family, there is no boss, then it will work. The other person can continue calling you sir if you want to. They can continue calling you sir and still feel that you are family.
1: In fact, we always call our mom only.
0: Yeah, you're not calling her by name. आप कभी अपने माता पिता को नाम से नहीं बुलाते, लेकिन संबंध कैसा है? तो क्या बुलाते हैं, डोर पर क्या लिखा है, उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने बॉडी कॉन्शियसनेस, अगेन तो बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण हमने सारी बाहर की चीजों को परिवर्तन कर दिया, अंदर जैसे थे वैसे ही हैं, और क्योंकि जैसे थे वैसे हैं तो जो रिजल्ट है वो भी जैसी थी वैसे ही हो गया। तो इंटरनली वो जो परिवर्तन आएगा, तो अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा भी उस जूनियर और सीनियर के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि साथ वाले को, एंड दिस कैन हैपन बिटवीन कलीग्स ऑल्सो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू पीपल, क्योंकि एक विश्वास है कि आप मेरे लिए गलत कभी नहीं सोच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मुझे आपकी बात उस समय ठीक भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो करना चाहूंगा, नॉट क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हैं, मैं दिल से उसको फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि संपूर्ण विश्वास है कि आप जो कहते हैं उसमें मेरा भला जरूर समाय हुआ होता है। तो ऑर्डर देने की बात कहाँ आएगी, ऑर्डर क्यों देना पड़ेगा आपको, ऑर्डर देंगे तो मुझे जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। और इस विश्वास से अगर हम काम करेंगे, नो ऑर्डरिंग, नो इंस्ट्रक्शन, इट विल जस्ट फ्लो, वर्क विल जस्ट फ्लो लाइक इट फ्लोज एट होम। घर पे कौन ऑर्डर करता है एक दूसरे को, जिम्मेवारी समझकर एक दूसरे का रिगार्ड रख के हम काम करते हैं।
1: इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, इट मेक्स मी फील सो गुड कि जो भी मेरे बॉस हैं या मुझसे बड़े हैं वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। इवन इफ आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट ही इज सेइंग, I should do it.
0: Yeah. I will do it.
1: Actually, yeah. You know, it leaves you with a very good feeling, and we're all looking for care.
0: Yes, and आपको वो बहुत हल्का रखेगा when you know. अच्छा, normally क्या होता है, office culture में आप बहुत insecure हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, आपको ही अपने position को संभाल के चलना है,
1: कोई और नहीं है मेरा care करने।
0: वो सारे internal politics में आपको ही अपने आप को बचा कर चलना है। लेकिन जब आप इस तरह के संबंध बनाते हैं जहाँ आपके साथ हैं लोग, people care for you, people are

0: for you at every step. You're not alone.
1: Mm.
0: You're together in the family. You are without fear. And then you go to work without any fear. Tab, you love your work. Fear
1: wow,
0: and
1: that
0: love.
1: Looks very nice. Huh. But Sister Shivani, is it possible to achieve? Again, यहाँ से बाहर निकलते ही वो questions शुरू हो जाते हैं. अभी तक हम घर पर थे तो घर पे तो फिर भी लग रहा था कि किया जा सकता है. लेकिन I can now say it with my experience that it can be. Again, you'll have to show me the path.
0: It can be. See, it's very simple. Again, ये सारी चीजें जो हम discuss कर रहे हैं ना, इस पे ज्यादा सोच ले एक बार, समझ ले, लेकिन उसके बाद करके जरूर देखें. कई बार क्या होता है, सोचने और समझने की स्टेज तक उसको रोक देते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी के प्रभाव में जब आते हैं तो हम वो जो सुनी हुई बात थी उसको लगता है देखा कहाँ काम करती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट वॉन्ट वर्क. आज के सिनारियों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. उसको करके देखें, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव कर्म का रिजल्ट नेगेटिव हो, ये हो नहीं सकता. ये पॉसिबल नहीं है. तो पॉजिटिविटी देते जाइए. रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है. एनर्जी इज लव एंड एनर्जी इज पावर. हम पावर एक्सचेंज कर रहे हैं सारा दिन एक दूसरे के साथ. लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, पावर वी थॉट वॉज मेंट टू बी कि आई एम ओवर यू, दैट इज पावर, आप मेरे से जूनियर है. लेकिन पावर इज एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या, कि मैं आपको पावर दू रादर देन आई बिकम पावरफुल ओवर यू. आई गिव यू सो मच पावर that you get empowered. सशक्तिकरण, दूसरे को भी शक्तिशाली बना दे. लेकिन उसके लिए खुद बहुत शक्तिशाली होना
1: तो
0: पड़ेगा.
1: खुद से हम ये कहें कि हम शक्तिशाली ही
0: एब्सोल्युटली,
1: और आप भी शक्तिशाली बने.
0: राइट, तो उसके लिए हम वो पावर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं जब हम अपने अंदर वो शक्तियों को भरते हैं. तो निराकार परमात्मा हमें छोटी छोटी बातें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अन्य आत्माएं जिनके साथ हम कर्म क्षेत्र पर या परिवार में भी आते हैं उनको हम शक्तिशाली कैसे बनाते हैं. सबसे पहले उसके लिए शुभ भावना, जिसको हम कहें गुड विशेस. जब हम शुभ भावना गुड विशेस किसी के लिए रखते हैं वो इतना हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है. एंड वो गुड विशेस जब आप तक ट्रैवल करेंगी वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, क्योंकि गुड विशेस मतलब पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को ट्रिगर कर देंगे,
1: जागृत कर देंगे. आई कैन फील इट,
0: यू नो. तो इफ इवन इफ यू हैव अ लिटिल डाउट कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ ये काम या नहीं कर सकता, मेरे को नहीं लगता मेरे से होगा, यू नो वट एवर, कुछ भी करना, वो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी दूसरी आत्मा से वो आपकी पॉजिटिविटी को भी स्ट्रांग कर देगी. तो हर आत्मा के प्रति जिसके भी हम कॉन्टेक्ट में आते शुभ भावना, चाहे वो कुछ भी करे, हमारी शुभ भावना की जो क्वालिटी स्टॉक है वो कभी कम नहीं होना चाहिए. देते जाएं, देते जाएं, दुआएं जिसको बोलते हैं, हर एक को देते जाएं. और दूसरा है ट्रस्ट, जपने का विश्वास. विश्वास करने के वो लायक बने नहीं, हम उन पर विश्वास करें. विश्वास एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसमिट होगी आप तक और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगी. आपको अगर कोई डाउट भी था अपने ऊपर, आप अगर डिसऑनेस्ट रास्ते पे चलने की सोच भी रहे थे, तो वो विश्वास की शक्ति जब आप तक पहुंचेगी तो वो आपकी नेगेटिविटी को सबमर्ज कर देगी और आपकी पॉजिटिविटी को इमर्ज करेगी. एंड छोटी छोटी चीजें, जब हम ऑफिस में काम करते हैं अगर हम कंसल्ट करें उनको, आपको क्या लगता है ये काम कैसे करना चाहिए, इवन इफ मुझे पता है कि वो कैसे करना है, लेकिन ये जो एक थॉट है नहीं मेरा वाला ही ठीक है, इनसे पूछने की क्या जरूरत है, इनको क्या आता है, ये तो अभी नए नए आए हैं. नहीं, वो नए आए हैं, लेकिन अगर हम उनसे राय ले लेते हैं, उनसे आइडिया पूछते हैं, तो उससे क्या होगा, हम उनकी कैपेसिटी नए आइडियाज क्रिएट करने की उसको ट्रिगर करते हैं.
1: हमें ये थॉट लेकर ही करना चाहिए कि हो सकता है उनका थॉट अच्छा हो और मैं इम्प्लीमेंट करूँ. होता कई बार क्या है कि उनको खुश करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए मैं उनकी ओपिनियन तो ले लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ही बेस्ट है.
0: नहीं,
1: दैट एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट भी मैंने देखा है कई बार हमारे पास.
0: वो तभी होगा अगर आप बॉडी कॉन्शियस लेवल पर वर्क कर रहे हैं. अगेन, जब आपके थॉट्स और वर्ड्स में इंटेग्रिटी नहीं है, कि आप अंदर से सोच रहे हैं कि आपको नहीं आता और बाहर से पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जहां वो इंटेग्रिटी होगी तो आप जो सामने वाला आइडिया देगा आप उसको स्वीकार करेंगे और आप उसके अंदर ये विशेषता को ट्रिगर करेंगे नया सोचने की, यू नो. क्योंकि जैसे ही कोई हमें पूछता है आपको क्या लगता है, इस पर आपका क्या थॉट है, तो अगर उसने नहीं भी सोचा होता उस बात के बारे में, क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे पैरामीटर से बाहर की बात है, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है. क्रिएटिविटी, आप उसकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर कर

0: तो ये बहुत बड़ी एम्पावरमेंट बन जाती है सामने वाले के लिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट करना. जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर सामने वाले ने गलती कर दी
1: उसको ये एहसास भी दिलाना
0: नहीं, उससे अपनी रिस्पेक्ट को विथड्रॉ नहीं कर देना. मतलब ने रिस्पेक्ट तो की, आपको रिस्पेक्ट करते रहे जब तक आप ठीक कर रहे थे. लेकिन जब आपने गलती कर दी तो हम आपसे वो रिस्पेक्ट को विथड्रॉ कर देते हैं. एक्चुअली उस समय आपको सपोर्ट चाहिए. अगर हम आपको समय रिस्पेक्ट देते रहते हैं तो आपने जो गलती की उसकी आप जो यू नो गिल्ट थी वो खत्म हो जाती है. लेकिन अगर उस समय आपसे रिस्पेक्ट विथड्रॉ कर ली तो आपके अंदर जो गिल्ट की फीलिंग है वो एम्पावर हो जाती है. तो रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, नॉट फॉर द जॉब, नॉट फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. तो अगर गलती भी हो जाए तो वो रिस्पेक्ट को विथड्रॉ नहीं करें, क्योंकि उस समय आप डिस एम्पावर कर देंगे. उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो खुद थोड़ा सा
1: और सबसे ज्यादा उसे ले लिया जाता है.
0: और ये हमेशा हर जगह होता है, घर में भी होता है. ये बच्चे से छोटी सी गलती हो जाए, पेरेंट्स विल जस्ट विथड्रॉ दैट रिस्पेक्ट एंड तब वो गिल्ट ऑलरेडी है और वो उस समय और ज्यादा हो जाता है. तो उस समय जो हम डिसएम्पावर करते हैं ये उस आत्मा के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है. सो कंटिन्यू रिस्पेक्ट अनकंडीशनली, कीप गिविंग दैट. और कंपैशन, यू नो इट्स अ सोल, वी आर सोल्स वर्किंग टूगेदर. तो हरेक के पेन में, सफरिंग में उनके साथ, बट नॉट टेक द पेन. कि हम खुद ही डिटैचमेंट, डिटैच्ड होंगे तभी तो वो पावर ट्रांसमिट कर सकेंगे.
1: वी बीन नाउ हियरिंग अबाउट एंगर मैनेजमेंट यू नो वर्कशॉप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर तरह के वर्कशॉप्स, किसी भी तरह का नाम लिया जाए, मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, हर लेवल पे वर्कशॉप्स हो रहे हैं. स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स. यू नो इतने सारे, इतना काम किया जाने के बावजूद, तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें उस जिस सिनेरियो को हम देख रहे हैं, जो जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंच जा पाएगी?
0: एब्सोल्युटली. अभी तक जो आपने कहा, जो वर्कशॉप्स हम करते हैं वो क्यों हमें वो रिजल्ट नहीं देती है जो देनी चाहिए? रिजल्ट तो वो देती है, लेकिन जिस लेवल पर हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं आती. क्यों? क्योंकि जो वर्कशॉप्स है उसमें हम बहुत ज्यादा तो बाह्य चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बोलना, कैसे करना, कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना. तो वी विल से गो एंड पैट देयर बैक, गो एंड से अ गुड वर्ड. व्हाट वी नॉट वर्किंग ऑन, गो एंड क्रिएट गुड थॉट्स. यू नो द स्पिरिचुअल डायमेंशन जब एक वर्कशॉप में आ जाता है या जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है तो वो थॉट लेवल पर वर्क करता है. अभी तक हम वर्ड और बिहेवियर लेवल पर वर्क कर रहे हैं. तो वर्ड और बिहेवियर लेवल चेंज नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी चेंज है कि आज हमारी ट्रेनिंग हुई, दो दिन तीन दिन हम कर सके.
1: कहाँ भी जाकर गुस्सा आए तो आप दस तक गिनिए.
0: हाँ,
1: आप कह क्या रहे,
0: पानी पीजिए.
1: हाँ, पानी पी लीजिए. लेकिन अगेन एंगर तो रहा मेरे साथ,
0: तो फिर हम दस तक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं गिन पाते थे, क्योंकि फिर हम कहते नहीं वो इतनी जोर से आ गया. बिकॉज हमने सीड को नहीं चेंज किया. हम वृक्ष को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्तों को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. इट वॉन्ट हैपन टिल आई चेंज द सीड. तो ट्रेनिंग या वर्कशॉप में इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को एड करना पड़ेगा कि जो परिवर्तन चाहिए वो थॉट लेवल पर चाहिए, वो कॉन्शियसनेस की लेवल पर चाहिए कि अंदर से ही मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा सोचने का तरीका, वो पूरा परिवर्तन हो जाए. व्यवहार तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा. उसको चेंज करने के लिए जो पावर चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेशन. कि कैसे हम हर रोज अपने साथ समय निकालें, बैठें, अपने आप को चार्ज करें. क्योंकि ये बैटरी चार्ज होगी तब तो औरों को वो पावर देगी. सारे डिस्चार्ज होंगे तो एक दूसरे को एम्पावर कैसे करेंगे? सारे डिसएम्पावर्ड है. और सारे डिसएम्पावर्ड जब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो देर आर सो मेनी क्लैशेस. तो हर रोज अपने साथ 10 मिनट्स, इवन इफ यू आर वेरी बिजी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट एज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. बिकॉज दैट विल मेक यू अ वेरी गुड लीडर. नॉट लीडर इन टर्म्स ऑफ रोल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिविटी. दैट इज वॉट इट विल डू. तो हर रोज 10 मिनट अपने आप निकाले, अपने आप को एम्पावर करे. परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे संबंध जोड़, उन पावर्स को ले. सोल कॉन्शियसनेस, वो यू नो अभ्यास इतना अच्छी तरह से कर ले कि जब आप ऑफिस में घुसे तो आपको डेजिग्नेशन नाम नहीं दिखाई दे, लेकिन आपको आत्मा दिखाई दे हरेक. और जब आत्मा दिखाई दे

0: तो आत्मा की विशेषता दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे तो स्नेह अपने आप उस तक ट्रांसमिट हो, प्यार देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, विश्वास करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। ऑफिसेज में हम ये कर सकते हैं कि हर एक घंटे के बाद जो 1 मिनट साइलेंस, इफ यू डू दैट इन द ऑफिस इट विल क्रिएट वंडर्स। इतना टर्मोइल है, ट्रैफिक जैम सारा दिन हो रहा है, हर एक घंटे के बाद अगर कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करे और 1 मिनट के लिए आप इंट्रोस्पेक्ट करें, डिटैच हो जाए, रेस्ट दे दें इसको, यू विल रिचार्ज एंड आपका पूरा ऑफिस का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ करके देखने की चीज है, इट्स पॉसिबल।
1: अगेन एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि घर घर है, ऑफिस ऑफिस है, उसके बीच का जो दूरी है वो हम कई बार मेंटेन नहीं कर पाते, तो कितना जरूरी है उसे मेंटेन करना या नहीं करनी चाहिए?
0: एक्चुअली जब अंदर चार्ज्ड है सारा दिन तो कोई फर्क नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ जो वो रोल प्ले कर रही हूँ। जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, जब मैं घर आ रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, और जब मैं इंटरनली स्टेबल हूँ घर पे, तो अगर कोई ऑफिस की बात उस समय आ जाती है मेरे पास, कोई फोन कॉल आ जाता है या कोई काम आ जाता है, इट डजंट मैटर बिकॉज इट विल नॉट डिस्टर्ब। वो स्टेबिलिटी जब आती है तो हम घर को संभालते हुए भी ऑफिस की एक आधी बात को सॉर्ट आउट करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इट्स माय लाइफ, यू नो, सोल कॉन्शियसनेस मींस कंप्लीशन। आइडेंटिटीज अभी तक सेपरेट थी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सेपरेट आइडेंटिटीज थी, तो उनको मैच करके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक आइडेंटिटी है जो इतने सारे रोल्स प्ले कर रही है, बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि एक आइडेंटिटी एक टाइम पे बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकती है इंटरनली बिना डिस्टर्ब हुए।
1: एक साथ काफी कुछ निभाया जा सकता है, दैट्स वंडरफुल। एक्चुअली शिवानी, ये पूरी बातचीत जो रही बहुत कुछ समझ में आया, एक नए परिप्रेक्ष्य में हमने देखा। थैंक यू सो मच। जब मैं ऑफिस में होती हूँ वहां पर भी अगर मुझे ये लगे कि हर कोई जो मेरे साथ काम कर रहा है, चाहे वो मेरा सबॉर्डिनेट है या फिर मेरा बॉस, वो मेरी केयर कर रहा है, तो पूरा का पूरा एटीट्यूड मेरा बदल जाएगा, क्योंकि मेरा जो अकेलापन है, जो मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ जब मैं ऑफिस में होती हूँ, वो कहीं खत्म हो जाता है, और हर कोई मुझे काट रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है, ये परिप्रेक्ष्य, ये नजरिया बदल जाता है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अभी बहुत कुछ बातें बाकी करनी है, जीवन के कई और एस्पेक्ट्स को हमने देखना है, मिलकर देखेंगे और फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया, वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी से। डिप्रेशन, क्या ये कोई बीमारी है या फिर हमारे मन का वहम? क्या डिप्रेशन मुझे आपको हो सकता है? क्या डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, या हम ऐसे ही डिप्रेस फील करते हैं? जरा सा लो हुए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो कहीं न कहीं एक सवाल के रूप में कभी न कभी हमारे दिमाग में उपजती हैं और फिर उसके सोल्यूशन भी तलाशने की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में हमने ये जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के इलाज पॉसिबल हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइकोथेरेपी से हो, या फिर कई बार जब ज्यादा सीवियर केसेस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। किस तरह के ये इलाज हैं, आज इस पर कुछ और चर्चा करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका स्वागत।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात, वो ये थी कि तीन तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की इस वक्त संभव है। उसमें सबसे पहले आपने बात की थी ड्रग्स से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत जरूरी है। कई मिथ्स हमने दूर की थी जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, कि दवाइयां लेना कितना जरूरी है और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली सीवियर केसेस में लीड टू सुसाइड ऑल्सो। सो इतना जरूरी हो जाता है ड्रग्स या दवाई लेना। आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलिए, आपने कहा था कि 2.5 से 3 महीने तो क्लिनिकली बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या हमें लाइफ लॉन्ग ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है, या हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं, हम ठीक हो गए हैं?
2: लाइफ लॉन्ग तो लेने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, किसी भी डिप्रेशन में नहीं,
2: लाइफ लॉन्ग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो गलतियां हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती हम करते हैं।

0: वास्तव में जैसे कहा कि उसे हर 5-6 दिन में मेडिसिन को बढ़ाते बढ़ाते एक क्लिनिकल डोज पर आना पड़ता है कि जब केमिकल जो इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक होने लगे, और वह जब एक क्लिनिकल डोज पर आ गए फिर 2-2.5 मास में उसकी परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा साइकियाट्रिस्ट है उसे कम करना प्रारंभ करेगा कि हर 20 दिन या 1 मास में थोड़ी थोड़ी वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, और फिर एक छोटा सा डोज जिसे मेंटेनेंस डोज कहा गया है वो बहुत ही मामूली होता है, वो एकदम जो मामूली डोज है उसे कम से कम 1 साल लेना चाहिए।
1: अच्छा, ये जो जब हम इस पे पहुंचेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा? वो 6 महीने भी हो सकता?
0: नहीं, वो करीब 2.5 मास वो होने, वहां तक पहुंचेंगे 15-20 दिन में पहुंचेंगे, फिर 2.5 मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए। बोले कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की जरूरत पड़े, परंतु अगर आप सचमुच रिलीजियसली साइकियाट्रिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह एक जो सिस्टम है वो काफी है। अब गलती कहां होती है कि एक तो पेशेंट अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं, और जैसे ही आपको पता चला ना कि भई ये साइकियाट्रिस्ट के मेडिसिन ले रहे हैं, कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ है ना, वो क्या कहते हैं कि भई ये विधि करा लो, फलाना भुआ है वो ये विधि करता है उससे ही तुम। और देखा है मैंने 60-70% लोग 8-10 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दे, फिर सेकंड अटैक आता है तो फिर से जाएंगे साइकियाट्रिस्ट।
1: अच्छा, सबसे बड़े फक्र से ये कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद कर दी, मतलब मुझे, मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुई
0: है। और जब अभी सेकंड अटैक आए तो सेकंड अटैक में अब ठीक होना मुश्किल है, फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा मुश्किल है, थर्ड में और मुश्किल है, और अगर फोर्थ अटैक आ गया तो फिर तो बस फिर 90% ठीक नहीं हो सकते।
1: अटैक मतलब
0: मतलब रिपीट हो, जिसको कहें ना कि रिलैप्स कहेंगे, कि एक बार आप डिप्रेस हुए, आपने कुछ समय मेडिसिन ली, थोड़े अच्छे हुए, आपने छोड़ दी कोई भी कारण से, 10-15 दिन के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गए, फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उसने और कुछ मेडिसिन दी और फिर से आप ठीक हुए, फिर से आपने कुछ समय ली उसको छोड़ दी, और ऐसा अगर जिसको रिलैप्स भी कह सकते हैं कि दोबारा बीमारी हो।
1: लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट क्या है डिप्रेशन के? एक्चुअली हम ये तो मान लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, हार्ट की हम दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर है उसकी सुबह उठ के दवाई ले लेंगे, थायराइड है उसकी दवाई लेंगे, लेकिन डिप्रेशन की दवाई, क्योंकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर फिजिकल इम्पैक्ट इतने शायद नहीं नजर आते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या है अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं? ये बार बार अटैक्स जो आएंगे, हाउ विल इट यू नो इफेक्ट माय बॉडी?
0: डिप्रेशन में जो हम अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एक तो वह बीमारी है वह लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर विकृति भी आ सकती है, जिसको कहा है डिप्रेसिव साइकोसिस, कि पागलपन भी आ जाए, डिप्रेशन के साथ साथ भी पागलपन, कि जो और भी बुरा है, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह सुसाइड तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो इसके कारण ठीक से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है।
1: तो लाइफ के ऊपर भी एक्चुअली अगर हम शिवानी देखें तो कभी जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम इससे दवाई खाते हैं कि हमें पता है भाई हमारा दिल रुक गया तो सब रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर।
0: और बीमारियां भी जो आपने बताया ना कि भी अगर लंबा समय डिप्रेशन चले तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, लंबा समय डिप्रेशन चले डायबिटीज हो सकता है, नहीं बैक के प्रॉब्लम, कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं लंबा समय, तो उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो सेफ है वो हमें ठीक से करना बहुत आवश्यक है।
2: दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिंपल बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी ना,
1: और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी,
0: आपने और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसके कारण नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, तो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाएगी।
1: स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, हमने जब कारणों की बात की थी तो जो लाइफस्टाइल हमारा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो भी डिप्रेशन की तरफ।
0: हाँ, ये विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन से

0: स्ट्रेस बढ़ेगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे थे कि जब इलाज कर रहे हैं, आपने 2.5 से 3 महीने तक अपना एक प्रॉपर क्लिनिकल डोज ली, उस लेवल पे लिया, उसके बाद आपने कहा था कि धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना, कई बार लगता है कि 0.25 mg की गोलियां ना ही लो तो चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि 0.25 mg तो यही होगा ना, इतना ही होगा छोटा सा, तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना, जिसे आप कह रहे हैं कि सर्वाइविंग के, मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए?
0: एक तो क्योंकि वो केमिकल्स को मेंटेन करना है, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए।
1: अगर हो जाए
0: तो क्या होगा कि केमिकल आपके स्लोली बिल्टअप हो रहे हैं, आपने एक दिन नहीं ली फिर से डाउन आ गए, तो फिर से उस केमिकल को बिल्टअप करने को और आपको ज्यादा टाइम लगेगा।
1: नहीं तो फिर अगले दिन डबल डोज तो ना?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: दैट
0: इज वेरी रॉन्ग, राइट ना, फिर उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। ये संभव है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि भी सोने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेना, बाई चांस आप भूल गए, आपको रात को 2 बजे याद आया, तो बोले 2 बजे भी ले लो, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो केमिकल्स की जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव इफेक्ट स्लोली होगी,
1: तो अगले दिन फिर उसी टाइम पे लेना चाहिए।
0: हाँ, उससे फिर उसी टाइम पर ले हम, और मिस ना करें, डबल डोज तो बिल्कुल नहीं लेना, दैट विल बी स्टिल मोर हार्मफुल। और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े, सबसे अच्छा था कि डॉक्टर को डिसाइड करने दो, आप अपने डॉक्टर नहीं बनो, फिर भी एक जनरल आइडिया जो देना मैं चाहता हूं कि एक बार आपको बिल्कुल अच्छा हो गया, 2.5-3 महीने तक सचमुच आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए, आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कि भी हर मास में या 20 दिन में स्लोली वो डोज को कम करते हैं, और एक जो फिर मेंटेनेंस डोज आएगा वह मेंटेनेंस डोज कम से कम 1 साल लेना चाहिए। और फिर भी एक तो एक्सपेरिमेंट करना है वास्तव में, कुछ लोगों को और भी 2-3 साल भी आवश्यकता हो सकती है, कि तब हम छोड़ सकते हैं,
1: तब वो बहुत मिनिमल होती है।
0: और उसके बीच में फिर और चीजें भी करो, जैसे मेडिटेशन करो, है ना, जीवन शैली को परिवर्तन में लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो,
1: रिलैक्सेशन
0: करो। हाँ, साइकोथेरेपी
1: विल हेल्प। डॉक्टर साहब, आप ड्रग्स को तो हमने काफी डिटेल
0: में जाना, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो लोगों में मिथ है और कई लोग पूछते हैं ये कि भी क्या मेडिसिन कभी बंद नहीं हो सकती है, तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी मेडिसिन जरूर बंद करो, ठीक से लो और फिर बंद करो, अंत में थोड़े समय दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर, लेकिन फिर वह हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो एडजस्ट हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड एज का जहां सवाल है, मैंने कहीं देखे जो बूढ़े पेशेंट है, 70 ईयर्स के, 75 ईयर्स के है, मेडिसिन लेने से वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर ये भूत सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है, तो उनको मैं कई बार कहता हूं कि कितना जीना है अभी आपको, अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना।
1: अच्छा, और सबसे बड़ी बात, खुद को भी तो नहीं पता होता कि हमें कितना लंबा जीना है,
0: सोच भी लो। और सिर्फ मेडिसिन की जो थोड़ी सी इफेक्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, कि जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज है, इनोवेटिव पावर्स है, हो सकता है कि सब मेडिसिन में कुछ मेडिसिन की इनोवेटिव पावर्स, क्रिएटिव एबिलिटी पर थोड़ी सी 5-10% इफेक्ट हो सकती है, इसलिए यूथ को एडवाइस देंगे कि आप इसके थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए और प्रॉपर उसका जो रूट कॉज है वो भी दूर करना चाहिए। रूट कॉज दूर हो गया तो फिर वो मेडिसिन को बंद करने में मुश्किल नहीं होगी।
1: आपने जब कहा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, वो
0: अगर आवश्यकता है, ये भी नहीं, अगर वो छोड़ सकते भले छोड़िए, लेकिन आप समझते हैं भी छोड़ने पर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और मेडिसिन से आप एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो स्मॉल डोज में लेने में आपको डिफिकल्टी।
1: यहाँ लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन ये चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं और ऐसे में हम कोई योगा या मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे हैं कि वो दैट रियली हेल्प्स, वहां पर जाते भी योगा करते हुए खासकर या इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाने के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम ठीक ही हो जाएंगे ये सारी क्रियाएं करके, क्या वो छोड़ना चाहिए?
0: नहीं, बहुत अच्छा कनुप्रिया जी, एकदम पावरफुल प्रश्न है आपका, जिसको मैं कहता हूँ फीलिंग गुड। जब व्यक्ति योग आसन आदि करता है ना, उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूं, तो वो डेंजरस चीज है। ये केमिकल्स एक

0: की बात आती है तो चाहे वो लड़कियां हों या लड़के, पेरेंट्स के दिल में एक बहुत ये, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे, इतने साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे तो यू नो, चाहे वो अभी इलाज कर रही है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी यू नो मैरिज के बाद कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं दैट हाउ डज इट रियली इफेक्ट,
1: ये भी मिथ ही है वास्तव में। बल्कि कुछ मेडिसिन इफेक्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ मेडिसिन इफेक्ट कर सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन नहीं देनी है, वो डॉक्टर जानता है।
0: वो तो उस वक्त पे है ना कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिसिन नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई बच्ची या जो व्यक्ति है वो कॉलेज में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो डिप्रेशन,
1: तो कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में मेडिसिन देनी ही चाहिए। और अगर कोई थोड़ी सी साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी नई दवाइयां हैं जो डॉक्टर उसको चेंज भी करेंगे,
0: और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होते ना।
1: और यूथ में तो देनी चाहिए, क्योंकि यूथ में कई बार सिम्टम्स अलग प्रकार के होते हैं, और इसके कारण यूथ में अगर उनको जरूरत है तो सही ड्यूरेशन के लिए अवश्य ही उनको हम दवाइयां दें। और एक मिथ है वास्तव में, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
0: तो चलिए ये पूरा एक यहाँ एक ये कंप्लीट चैप्टर ये होता है कि दवाइयां जरूरी है, कहीं ना कहीं किसी वार्ड पर अगर डिप्रेशन में हैं आप, और कुछ देर के लिए ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म ही करना है, मेंटेनेंस के लिए अगर साल भर है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद हम एक बेहतर जिंदगी, जो एक बोझ लेके हम डिप्रेशन का चलते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम शॉक की बात करते हैं कि श्रीमानी बहन ने भी उस टाइम पे, उस वक्त जब बात हो रही थी कि शॉक ट्रीटमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स या कन्वर्जन जिसे कहते हैं जो दिया जाता है फिल्मों में, अगर हम देखें तो वो एक सबसे खतरनाक चीज होती है, किसी को टॉर्चर करना है तो शॉक्स दिए जाते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे बिकम एट टाइम्स।
1: सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं, ये शब्द बड़ा डरावना है और ये शब्द सही भी नहीं है, नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो इसका नाम है, जिसको कहा है ECT, है ना, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, कि जैसे हमको फिट्स आते हैं, किसी को कन्वल्जन्स आते हैं नेचुरली, वह इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एक तो कि भी वह रेयर है, आज वर्तमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां है कि वह रेयरली आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे कि भाई 1000 या 2000 पेशेंट में एक आध किसी को उसकी आवश्यकता पड़े, बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। और अच्छा साइकियाट्रिस्ट पहले तो सभी दवाइयों का प्रयोग करेगा, अगर एक नहीं हुई तो सेकेंड जनरेशन की अच्छी दवाइयां है, थर्ड जनरेशन की है उसका भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वो ECT का सहारा लेगा। और दूसरा एक होता है कि जिसमें सीरियस सुसाइडल टेंडेंसी है, कि भी किसी भी क्षण या आत्महत्या कर लेगा, और ऐसे किससे हुए हैं, यहां तक कि वो साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में गए हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, पेशेंट ऊपर टेरेस में गया, उसने जंप लगाई। तो जहां पर ये पता है कि भी इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहां कुछ किस्सों में ECT कार्य कर सकती है। और अब ये जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे अपने में शॉक ट्रीटमेंट और लोग डरते हैं उससे, अब जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है, पहले तो मैंने कहा रेयर है, इट्स में भी 1000-2000 पेशेंट में एक आध को जरूरत पड़े। और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं, जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद, और अब जो नए मशीन आए दे आर सो सेफ, इसमें जो कन्वर्जेंस नहीं पाएंगे हो तो उसका भी पूरा सेट होता है कि हमें अराउंड 8 ECTs की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, तो उस अनुसार वह भी जो डिप्रेशन के पेशेंट में जरूरत है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरा भी ओपिनियन ले लो, आपको यह लग रहा है कि भी आपके डॉक्टर ने सही सब मेडिसिन का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं, तो दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, वह भी समझता है कि यह सब दवाइयों का प्रयोग किया
0: क्या
1: गया
0: होता है।
1: है
0: जैसे हमने ड्रग्स की जब दवाइयां ली तो हमें पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस था, तो वो बैलेंस करने के लिए उसको कम्प्लीट करते हैं, दवाई ली जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस है, इसमें क्या होता है, क्या चेंज आता है?
1: ऐसा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा एक बात की 100% पता नहीं, परंतु फिर भी इसमें जो दो बातें होती है कि भी केमिकल्स में भी परिवर्तन आता है, और दूसरा एक जो फायदा होता है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव मेमोरीज है

0: वो व्यक्ति भूल जाता है स्ट्रेस की मेमोरी सर्टन ट्रॉमास एब्यूज समथिंग नो विच माइट हैव ट्रिगर्ड कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी अगर हिस्ट्री को हम देखें ना तो ईसीडी की शुरुआत वास्तव में पागल पेशेंटों के लिए
1: हुई। यही मैं इससे आने वाली थी कि क्या डिप्रेशन लीड्स टू मैडनेस आल्सो एट टाइम्स
0: इट कैन
1: वायलेंट जब हो जाता है तो
0: यानी वायलेंट हो या तो वो ज्यादा समय रहे हमने आगे डिस्कस भी किया था कि डिप्रेसिव साइकोसिस होता है तो वो डिप्रेसिव साइकोसिस में मैडनेस होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट यहां बता रहा हूं कि जो शुरुआत हुई ईसीडी की वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए हुई जो पागलपन के पेशेंट्स है उनके लिए हुई परंतु फिर कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी दिया गया और देखा कि सबसे फायदा इनको हो रहा है पेशेंट एकदम नॉर्मल हो रहे हैं और इवन मिरेकल्स हो सकते हैं कि जिस पेशेंट को आपने एक साल तक दवाइयां दी अलग अलग दवाइयां डॉक्टरों ने प्रयोग किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है और उसको आपने चार ईसीटी दिए एकदम मिराकुलस एकदम वो नॉर्मल
1: डीप डिप्रेशन में जो गए हुए लोग
0: या तो जिनको आवश्यकता है कि भी उसके सुसाइडल थॉट्स एकदम खत्म हो गए जैसे लगा जादू हो गया तो रेयर किस्सों में जब ये जजमेंट लेना चाहिए कि भी कहां पर आवश्यकता है तो देने में हर्जा नहीं
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैड मेमोरीज को सप्रेस कर देता है निगेट कर देता है डिलीट कर पाता है। अगर कोई हम मेमोरी में जाके उन मेमोरी अपनी मेमोरी बॉक्स में जाके उन बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो है साइकोथेरेपी।
0: बिल्कुल
1: विचारों का जो जेनरेट जो बेसिक अगर हम कहें कि जहां से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दें वहीं बदलाव ले आए
0: तो
1: वो हमारा आपके साथ और आपके साथ जरूर उस पर डिटेल में और डीप जाने की जरूरत है कि क्या होगा वहां पे। लेकिन अभी समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू में पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी में किया क्या जाता है।
0: अच्छा अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी है वास्तव में जो शुरुआत हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं जिसको कहा साइको एनालिसिस कि सेगमेंट फ्रॉइड ने इसकी शुरुआत की और वो सारी उसकी थियरी है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कई ऐसी बातें हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बीमार करती है जिसको कहेंगे चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स। उनकी अपनी एक सारी पर्सनालिटी की थियरी है तो फ्रॉइडियन थियरी थी। फिर उसमें भी बदलाव आया यूंग ने उसमें परिवर्तन करके एनालिटिक साइकोलॉजी नाम दिया उसका और भी कई एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वो जो थेरेपी थी उसमें कुछ कुछ चेंज करते लाए। फिर एक जो दूसरी थेरेपी प्रीडोमिनेंटली यूज होती है जिसको कहा बिहेवियरल थेरेपी कि हमारे बिहेवियर में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया कि जो भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती थी। और अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसको कहा है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना क्योंकि विचारों में मूड है और ये जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज्यादा संबंध नहीं। अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो उन मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे। प्रयोग भी हुए हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफी इफेक्टिव है।
1: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सिस्टर शिवानी इनफैक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात जरूर करना चाहेंगे ये कि विचारों में परिवर्तन डॉक्टर साहब ने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है उसमें मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकती है पूरा जो हमारा पूरा
2: पूरी तरह से शायद है ना। मेडिटेशन में भी अलग प्रकार होते हैं ना जैसे आजकल बहुत सारी मेडिटेशन हम देखते हैं तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स होती है जो बॉडी के ऊपर फोकस्ड है ब्रीदिंग टेक्निक पर एंड कोई आसन को भी योगा कहते हैं लेकिन राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट डील्स ओनली विद द माइंड। तो हाँ ओनली विद द माइंड एंड फिर माइंड थॉट्स चेंज होंगी तो एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। तो राजयोगा मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग और फिजिकल पोस्चर वो पूरी तरह से मन और संकल्पों के ऊपर केंद्रित है तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहें हम अपने विचारों में ला सकते हैं।
1: बिल्कुल तो साइकोथेरेपी एक वो थेरेपी है जो कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की तरफ सिर्फ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही नहीं मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा
0: मामूली डिप्रेशन
1: मुझे लगता है हम में से हर एक को मुझे तो होगा ही इस बारे में समझते हैं तो ये हम जो है अपना सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में

वाली कड़ियों में हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल और सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए। आज जो हमने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है मेडिसिन लेना, और उसके अलावा जो आपने ईसीटी के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स न रह के डिफरेंट तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार यूजफुल हो जाता है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सी बातें आपके पास भी होंगी, आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से साइकोथेरेपी को हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं, किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बातें करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही एनालिसिस करके अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। हो सकता है ये पॉसिबल हो, आने वाली कड़ियों में इन्हें जरूर तलाशेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी इसमें एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रयास जारी रखेंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किससे आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी वजह से वो गया गया गया गया। किस्मत तो बदली, क्या कहूँ रियली।

0: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र, एक ऐसा दीप्तिमान व्यक्तित्व जिसका स्मरण हमें आज भी रोमांच से भर देता है। आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को अलीराजपुर रियासत के ग्राम भाबरा में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई गई थी। 14 वर्षीय आजाद ने महात्मा गांधी और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हंसते हंसते ये सजा सही और बालक चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद बन गए। संपूर्ण उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की ज्वाला भड़काने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जाता है। क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का गठन किया था, जिसके कमांडर इन चीफ वे स्वयं थे। 1926 से 1931 तक लगभग हर क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल आजाद ने अंग्रेजों के साथ 100 से भी अधिक युद्ध किए थे। काकोरी डकैती अभियान हो या चटगांव शस्त्रागार कांड, लाला लाजपत राय की मौत का बदला हो या फिर हो अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध, हर क्रांतिकारी घटना के पीछे आजाद का सफल नेतृत्व मौजूद था। आजाद का जौहर तिनके को भी तलवार बना देता था। उनका सानिध्य पाकर क्रांतिकारियों में देशभक्ति का ऐसा नशा पैदा होता जो जीवन के साथ ही अंत होता था। आजाद ने सौगंध उठाई थी कि अंग्रेज कभी भी उन्हें जीवित नहीं पकड़ सकेंगे, और हुआ भी यही। अपनी शहादत के दिन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्होंने पिस्तौल की अंतिम गोली अपनी कनपटी से लगाकर स्वयं पर चला दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जब ये घटना घटी तो यूं लगा मानो वक्त ही ठहर गया हो। जमीन का वो टुकड़ा, वक्त का वो लम्हा,

0: धन्य हो गए। वो आज भी भारत माता के उस लाडले सपूत की कहानी सुनाते हैं जिसने कहा था, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद थे हम आजाद रहेंगे।
1: अरे वाह काका, आपके ढाबे में तो तोता भी है, कितना अच्छा बोलता है ये।
2: मिट्टू फिर बोलो।
3: मिट्टू।
2: वाह कितना प्यारा है काका।
3: बच्चों को खाना दो काका, बच्चों को खाना दो, बच्चों को खाना दो, बच्चों को खाना दो।
2: और क्या क्या बोलता है काका ये?
4: अरे इसके पास जाकर कहो कि गजबीय काका बहुत खराब है, फिर देखो इसका शोर।
1: मिट्टू ए मिट्टू,
5: गजबीय काका बहुत खराब है, गजबीय काका खराब है।
2: काका इसे पिंजरे में नहीं रखते आप, उड़कर चला गया तो?
4: बेटा पिंजरे सही थी, लाए थे इसे, लेकिन हमारे गजबी काका जिद करने लगे कि पिंजरे से निकालो इसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दम फूटता है, और हमने इसे पिंजरे से निकाल दिया। दूर दूर तक उड़ कर वापस फिर आ गया।
1: लोग तो डरते हैं इसलिए इसे पिंजरे में रखते हैं, है ना काका?
4: कहीं भी जाए पर शाम होते ही उड़कर वापस आ जाता है हमारे पास। बेटा आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, हमने इसे उड़ने की आजादी दी और ये हमसे प्यार करने लगा।
1: आजादी? हमें आजादी कैसे मिली काका, हमारा देश भी तो गुलाम था ना।
4: हाँ बेटा हमारा देश भी गुलाम था, कितने ही लोगों के बलिदान से हमें आजादी मिली थी। मैं तुम्हें एक ऐसे ही देशभक्त के बारे में सुनाता हूँ जिसका नाम ही आजाद था, चंद्रशेखर आजाद।
1: हाँ हाँ बताइए ना।
6: क्या नाम है तुम्हारा?
7: आजाद।
6: माता का नाम?
7: आजादी।
6: पिता का नाम?
7: स्वाधीन।
6: तुम्हारा घर?
7: जेल खाना।
6: ए, इसे 15 बेचे लगा कर छोड़ दिया जाए क्योंकि इसकी उम्र कम है अभी।

भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।

0: 15 बार बेंतों के कठोर आघात सहते हुए पीठ की चमड़ी उधड़ गई, लेकिन इतनी कम उम्र में मन की दृढ़ता 100 गुनी हो गई। हर आघात के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नाद किया। उस दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद हो गए थे। 23 जुलाई 1906 भाबरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में जन्मे पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के सुपुत्र भारत माता के सच्चे सपूत बनने का इरादा कर चुके थे। 15 बेतों की सजा इन्हें 1921 में बनारस में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण मिली, लेकिन इन्होंने इसे सजा नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए शपथ समारोह समझा और कुछ दिनों बाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल हो गए और शीघ्र ही काकोरी कांड को सरंजाम देकर धन का अभाव दूर करने पर सोच विचार हुआ।
1: कौन?
2: आजाद।
1: ओ, चंद्रशेखर तिवारी से आजाद बने आजाद, अंदर आओ।
2: इस्मिल जी, बैद की सजा के बाद मैंने महसूस किया कि हमें आजादी मांगकर नहीं अपने अधिकार के रूप में लेना चाहिए।
1: तो तुमने क्रांति का मार्ग चुन लिया है।
2: क्रांति ही शांति लाएगी।
1: अच्छा, संस्कृत काशी विद्यापीठ में पढ़ने आए हो, उसका क्या?
2: इसमें जी, आज देश को शिक्षित ज्ञान से ज्यादा क्रांति की जरूरत है।
1: ये लड़ाई मुश्किल है।
2: हर परिवर्तन की शुरुआत मुश्किल से होती है
1: और खतरा भी।

0: खतरों को पार करके ही मंजिल मिलेगी।
1: लगता है पार कर लोगे,
0: मेरा विश्वास है।
1: और पकड़े गए तो?
0: बैद की सजा के समय ही मैंने दो बातें तय कर ली थी कि अब ना तो असहयोग में जाऊंगा और ना पुलिस के हाथ आऊंगा।
1: तो पहला तुम्हारा निर्णय है और दूसरा?
0: दूसरा मेरा आत्मबल है।
1: प्रणवेश मुखर्जी और मन्मथनाथ गुप्ता ने सही जगह पर लाया है तुम्हें। आज से आजाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के हुए। बोलो वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम।
1: हम हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी दल के कार्यों के लिए धन भी बहुत सा चाहिए।
2: हाँ बिस्मिल, धन तो चाहिए ही।
0: सार्वजनिक रूप से चंदा मांग नहीं सकते।
2: आजाद, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो।
3: लाहड़े जी, धनपतियों को बलपूर्वक लूटा जा सकता है, अभी तो यही जरिया सही लगता है,
0: लेकिन आगे चलकर इससे क्रांतिकारियों की छवि जरूर धूमिल हो सकती है। लूट आखिर लूट ही होती है।
1: लेकिन करें क्या आजाद, सरकारी खजाना लूटा जाए?
0: बिल्कुल, सरकारी खजाना हमारे देश का धन है, लूटती तो इसे अंग्रेज सरकार है।
4: हाँ हाँ, ये सही निर्णय है, हम सब तैयार हैं।
1: तो ठीक है, 9 अगस्त को लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर गाड़ी में खजाना जा रहा है। काकोरी स्टेशन पर गाड़ी को रोककर खजाने पर कब्जा करें।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
0: भारत माता की
4: जय,
0: भारत माता की
4: जय,
0: भारत माता की
4: जय,
0: वंदे
4: मातरम,
0: वंदे
4: मातरम,
0: वंदे
4: मातरम।
1: आजाद, येलो पंपलेट।
0: येलो पंपलेट?
1: हाँ, सशक्त क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, आम मताधिकार, दल का विधान और क्रांतिकारियों का उद्देश्य देश भर में पहुँचाना है।
0: तो येलो पैम्पलेट से हमें दुनिया जान लेगी।
1: हाँ, और फिर होगा एक्शन।
0: कब?
1: 9 अगस्त 1925 को।
0: कहाँ?
1: शाहजहांपुर से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हम 10 लोग होंगे। मैं, तुम, मन्मथनाथ, बनवारी लाल, मुकुंदीलाल गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, राजेंद्र लाहड़ी, शशिन्द्रनाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां मोर्चा लेंगे। काकोरी स्टेशन से 2 फल्लांग दूर एक्शन होगा।
0: अब भारत माँ की आजादी के लिए हम सरकारी खजाने पर हमला करेंगे। वंदे मातरम,
4: वंदे मातरम,

0: लेकिन अफसोस, काकोरी स्टेशन पर सभी गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा हुई और शचिंद्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारीलाल को कालापानी व अन्य सजाएं दी गईं। इधर चंद्रशेखर आजाद के फरार होने पर सरकार ने उन पर 5,000 रूपये इनाम घोषित कर दिया, लेकिन इस अज्ञातवास के समय भी वे जन जागृति अभियान में लगे रहे। खुद का ठौर ठिकाना न था, फिर भी दूसरों का सहारा बनने से पीछे न हटते।
1: कौन हो बेटा, तुम्हें पहचाना नहीं?
2: नमस्कार अम्मा, मैं अजनबी हूँ।
1: कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, भोजन का समय है, तुम भी खाओ हमारे साथ। अरे ला बिटिया, एक थाली इनके लिए भी लगा दे।
2: बहना, भूख तो जोरों की लगी ही है, भगवान तुम्हें खुश रखे।
1: खुशी कब आएगी इसका तो पता ही नहीं बेटा, शादी की बात जमती ही नहीं, हर बार दहेज का दानव बीच में आकर खड़ा हो जाता है बस।
2: अम्मा, आपने पूछा ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।
1: अरे कोई भी हो, अपने वतन के लगते हो। चलो पहले खाना वगैरह खा लो, उसके बाद बताना सब कुछ।
2: अम्मा आप अभी सुन लो, सरकार ने मेरे ऊपर 5,000 का इनाम रखा है, मुझे पकड़वाकर उस इनाम से बिटिया की शादी कर देना। लेकिन ये मेरे पास जो रुपए हैं, उन्हें मेरे साथियों तक पहुंचा देना।
1: अरे बेटा 5,000 क्या, 5,00,000 के लिए भी गद्दारी नहीं करूंगी। कह दिया सो कह दिया, भगवान तुम्हारी उम्र दराज करे, अम्मा के लिए ऐसा सोचता है।
2: अम्मा गलती हुई मुझसे, माफ करना अम्मा।

0: खाना समाप्त कर उन्होंने कागज कलम निकालकर छोटा सा पत्र लिखा और अपने पास रखे रुपए वहीं छोड़ दिए पत्र के साथ। लिखा था, अम्मा इन पैसों से बहना के हाथ पीले कर देना, अजनबी भाई की तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। और भी बहुत से वाक्य हैं उनकी सच्चाई, नेकी और ईमानदारी के। एक नमूना और, भूखे चंद्रशेखर, सामने चने वाला, लेकिन भूख उनकी ईमानदारी को डिगा नहीं सकी।
1: ले गर्मा गर्म मसालेदार चने, ले गर्मा गर्म मसालेदार चने।
2: अरे चने वाले भैया, एक पैसे के चने देना, भूख बहुत जोर से लगी।
1: अरे लो भैया, अब भी देते।
2: अरे एक पैसे के भैया, मेरे पास सिर्फ एक ही पैसा है, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। एक पैसे के भैया, मेरे पास सिर्फ एक ही पैसा है,
1: ये लो, ये लो।
2: अरे अरे क्या कर रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, फिर ना कहना कि बताया नहीं।
1: भैया तुम्हारी कद काठी और चेहरे पर भूख देखकर तो डाल रहा हूँ चने, पैसे का क्या है, एक पैसा ही ले लूंगा, उसमें क्या है, ये लो।
2: अरे भैया चने डालते डालते कुछ और भी डाल दिया तुमने, देख लो पलट कर।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डाला। अरे काहे को शक करते हो भैया।
2: लो देखो मैं पलटता हूँ, लो एक अन्नी निकली ना।
1: अरे
2: भाई ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मेरे लिए हराम है ये, लो उठा लो।
0: चना चबेना खाकर और सिर्फ पानी पीकर भूख मिटाने वाला इतना ईमानदार और सच्चा व्यक्ति ही सच्चा क्रांतिकारी हो सकता है। ऐसे पाठ को चंद्रशेखर आजाद ने बचपन से ही कंठस्थ कर लिया था। काकोरी कांड में हिस्सा लेकर सरकारी खजाना लूटना और बात थी, लेकिन गरीब की कन्नी की लूट बहुत बड़ी चोरी थी उनकी नजर में। ऐसी महानता ही ताकत होती है एक सच्चे क्रांतिकारी की, जो चंद्रशेखर आजाद में थी। फरार होने पर भी चंद्रशेखर आजाद नाम और भेष बदलकर देश के क्रांति सूत्रों को जोड़ते रहे। कानपुर में क्रांतिकारियों की ऐतिहासिक बैठक में निर्णय हुआ कि पंजाब और उत्तर प्रदेश मिलकर कार्य करेंगे। यहां उन्हें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारी साथी मिले। 17 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए, तब चंद्रशेखर आजाद के ही नेतृत्व में सांडर्स वध की योजना बनी। अगले दिन अमल शुरू हो गया।
2: भगत सिंह और राजगुरु, तुम दोनों सांडर्स पर गोली चलाओगे, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा पुलिस से, चलो निकलो।
3: जी, भारत माता की जय।
4: भगत सिंह, यही थाने के सामने से निकलेगा सांडर्स।
3: राजगुरु,
2: राजगुरु,
3: राजगुरु, इधर इधर।
2: इस पेड़ की आड़ में होने जब तक मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आ जाती।
4: वो देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट की उसने, देखो भगत सिंह, वो देखो।
3: हाँ हाँ, चौकस रहना।
4: हाँ बिल्कुल, बहुत उतावला भी हूँ। भारत।

0: aquí. Oh, oh, oh my God.
1: वाह मेरे शेरो, कराए अंग्रेज सरकार की गर्दन पर वार। भगत सिंह, यहाँ लाहौर में पुलिस की सुस्ती है, हम सबको भेष बदलकर तुरंत निकलना होगा। मैं जाता हूँ, बाकी सब लोग वहीं मिलना। और भगत सिंह तुम?
2: मैं दुर्गा भाभी और शहरया को लेकर सुशीला दीदी के यहाँ पहुँचता हूँ। भगवती भाई बाद में आ जाएंगे।
1: कलकत्ता में दो काम करने हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस से मिलना है और दूसरा यतीन्द्रनाथ दास को लाना है।
2: फिक्र ना करें, मैं आपके बम मास्टर को लेकर ही आऊंगा।
1: एक बार बम बनाने का सही फार्मूला मिल जाए फिर आगरा, दिल्ली, लाहौर, झांसी, ग्वालियर, कानपुर और पूरे देश भर में बम बनाने के कारखाने डाल देंगे। तो निकलो, निकलो दूसरे रास्ते से।
0: चलो चलो चलो राज।
1: ओए जानल सिंह, उसके पीछे ना भाग वरना गोली मार दूंगा। तू अपने स्वामी का नौकर तो सच्चा है पर वतन परस्तों का पीछा ना कर। ओए मैं सरकार का नमक खाता हूँ, उन पर हमला करने वालों को नहीं बख्शूंगा। नहीं मानता ना तू? नहीं मानता ना? तो ले गोली खा। ईश्वर मुझे और तुम्हें दोनों को बख्शे।
0: गोली मार।
1: ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे।

0: सुचारू मोर्चेबंदी से सैंडर्स वध अभियान सफल रहा। देखने सुनने में तो ये लालाजी की मौत का बदला था, लेकिन असल में ये सरकारी जुल्म की खिलाफत में वो पुख्ता कदम था जिसमें कमजोर समझे जाने वाले भारतवासियों की ताल ठोक ललकार थी कि अब उन्हें और सताया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर आजाद को सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र राह दिखी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि दुश्मन के पंजों से बचने में शस्त्र ही मददगार होते हैं।
1: भगत सिंह, राजगुरु, चलो निकलो यहां से। सैंडर्स मारा गया, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया।
2: हमारी ताकत के आगे अंग्रेज बौखला जाएंगे। हाँ आजाद, देश को डराने वाले डरकर भागेंगे यहाँ से।
1: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: आगरा, दिल्ली, लाहौर, कानपुर, लखनऊ और ग्वालियर में बम बनाने के कारखाने खोले गए। गुलामी की मार से जर्जर हाथों में बम पकड़ते ही जान आ गई, मन की ताकत दुगनी चौगुनी हो गई। चंद्रशेखर आजाद जी का ये प्रयास रंग लाया और अधिक से अधिक लोग उत्साहित होकर हथियारों का प्रशिक्षण लेने लगे तथा एकता के सूत्र में बंधे ये सभी लोग क्रांति की सच्चाई के उस कठोर रूप को अपनाने को तैयार थे जिसके बिना आजादी मिलना संभव नहीं थी। आजाद की नजर में क्रांति हिंसा नहीं थी, पर स्वतंत्रता की राह में अड़चन बनकर आने वाले गद्दारों को दंड देना भी बहुत जरूरी था।
1: भगवान दास, गद्दार को दंड मिलना ही चाहिए। गद्दार किसी का भला नहीं कर सकते, अपना खुद का भी नहीं।
3: आजाद, तुम्हें दुख होगा सुनकर, जयगोपाल मुखबिर हो गया है पुलिस का और फणीन्द्रनाथ घोष थी।
1: सदाशिव, सुनकर ही तुम्हारे पास इस जेल में मिलने आया हूँ। ये बेपैंदी के लोटे किसी काम के नहीं है, ना ही इन्हें जीना आया और ना ही ढंग से मरना।
3: मन तो करता है कि इनकी गर्दन दबा दूं, पर
1: माउजर पिस्तौल भेजता हूँ। किसी तरह आप लोग किसी बहाने से हथकड़ी खुलवाकर जब ये गवाही देने आए तो इसे काम में लेना। ये अंग्रेज सरकार

0: बाबा पृथ्वी सिंह आजाद जी, नाम के मुताबिक तो हम दोनों आजाद हैं, पर देश के सभी वासी आजादी की सांस ले सकें, इसके लिए बहुत कुछ करना है।
1: अरे इन हड्डियों में बहुत जान है अभी, आप कहें।
0: आप रूस जाकर बोल्शेविक क्रांति की पद्धति सीख कर आएं और यहाँ लौटकर क्रांतिकारियों को मार्गदर्शन दें।
1: मैं कोशिश शुरू कर देता हूँ, हाथ पर हाथ धरे बैठा भी तो नहीं जा सकता।
0: भारत माता की जय।

चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा सुनकर व्यग्र हो उठे। उन्हें जेल से छुड़ाने की योजना भी बनाई पर सफल न हो सके। ये बहुत बड़ा आघात था उनके लिए। दूसरा सदमा भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण के समय हुई मृत्यु पर हुआ, लेकिन उनके नन्हे बच्चे को सीने से लगा अपना कर्तव्य निभाते रहे। इसी बीच पंडित मोतीलाल नेहरू जी से भी मिले। फिर से क्रांति के कार्यों को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में थे वे। 26 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ बातचीत चल रही थी।

0: देवराज, पंजाब यूपी में तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों के धमाके के कारण पकड़ धकड़ में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है।
1: जी आजाद, आपने हिला दिया है सरकार को।
0: सारा देश पूरी तरह आजाद होने को तैयार है, सभी बलिदान को तैयार है।
1: अब आगे की योजना क्या है?
0: बर्मा जाने की योजना है।
2: अरे ये क्या, उठिए चंद्रशेखर जी, पुलिस ने हमें घेर लिया है।
0: देवराज, तुम्हें अगली योजना पर अमल करना है। भाग चलो तुम, मैं इनका मुकाबला करता हूँ।
2: नहीं, मैं नहीं भागूंगा, आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता।
0: भाई ये मेरा हुक्म है, जाओ जल्दी।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता चंद्रशेखर आजाद जी, आपको मेरे साथ चलना होगा।
0: मेरी चिंता मत करो, मैं इनके छक्के छुड़ा दूंगा पर हाथ नहीं आऊंगा। जाओ जल्दी।
2: ठीक है, ख्याल रखना अपना।
3: विश्वंभर नाथ सिंह, ओह।

वाह, निशाना बड़ा पक्का है। कलाई तो जाली, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ए, पकड़ो इसको, जाने मत देना, जान से मार।

0: बस ये आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पर दागी, भारत माता की जय का नारा बुलंद किया और मातृभूमि की गोद में सदा के लिए सो गए। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। उस अल्फ्रेड पार्क को आज चंद्रशेखर आजाद की याद में शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। इस महान व्यक्तित्व के मालिक व भारत माता के सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: जय हिंद। तुम्ही गेल्या दशक भरात घडून आलेला बदलाव पाहिला आहे का? भारत आता दहशतवादाच्या मुळावर थेट प्रहार करतो। आता नक्षलवादाचे उच्चाटन झाले आहे। पूर्वी आपण संरक्षण सामग्री परदेशातून आयात करत होतो, आज आपण विक्रमी संख्येने त्याची निर्यात करत आहोत। भारत आता शांत राहत नाही, भारत आता सहन करत नाही।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सुश्री शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
3: शुक्रिया
2: सिस्टर। आपके एपिसोड के बाद मैं एक क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट पे देख रहा था, किसी ने मुझे बहुत सुंदर लाइन भेजी एंड एज यूजुअल मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। इट सेज नॉट ओनली द थॉट यू आर चूजिंग

0: right now. Not only the thought you are choosing right now, attract the next thought and the next, and so on. It also provides the basis of your alignment with your inner being.
1: Beautiful.
0: मुझे सबसे पहले first line clear करनी है कि मतलब when I think मैं अगली thought को attract and attract उसके बाद उसके तीसरे मतलब एक इसकी non-stop parade चलती जाएगी.
1: It's very beautiful. Every thought attracts the next thought.
0: And the next.
1: And the next.
0: And the next.
1: And the next. And not only that, it becomes the basis of your alignment with the inner being.
0: It reminds me of sister, ki ek seed mein jis cheez ka bota hoon, zameen mein, to ek hi seed bahar nahi aayega. Phir ped, phir phal, phir seed, phir uske bache, never ending hai.
1: Yes. To wo ek beej kitna important hai. और वो एक बीज जिस क्वालिटी का होगा, इसीलिए क्वालिटी ऑफ द सीड इज इम्पोर्टेंट ना. उस एक क्वालिटी ऑफ सीड पर कितने फल और उस फलों के बीज से और कितने फल और कितने फल, दिस इज द इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सो मच चेंज.
0: इतने एपिसोड में आप यही कह रहे थे,
1: दिस इज पावर, दिस इज द पावर ऑफ वन सीड. The ability to influence. This is the power of one thought.
0: इतनी शक्ति होती है एक thought में ना.
1: एक thought है ना. जैसे हमने कुछ episodes पहले देखा, एक किसी ने मुझे कुछ कहा तो मेरी एक thought भी जब उस direction में चली गई कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, it attracted the next thought. तो वो next thought भी किस quality की होगी, फिर उसकी next thought and उसकी next thought. And जब मैं इस नेगेटिव थिंकिंग के डायरेक्शन में चली गई, माय अलाइनमेंट विद माय इनर बीइंग ऑफ पीस डिस्कनेक्ट.
0: मेरे साथ हुआ ना उस दिन लड्डू के उसमें.
1: लड्डू के उसमें.
0: सीरियसली वो.
1: Yeah.
0: छोटी सी चीज थी, क्योंकि मुझे बचपन से जैसे आप कहते हैं ना एक चीज की एक संस्कार. मेरा संस्कार है कि कोई मुझे खाते हुए टोके ना तो मैं खाना छोड़ देता था. मैं खाऊं नहीं खाऊं, कितना खाऊं, क्या हाउ कैन आई स्टॉप मी.
1: हाँ, लेकिन आज हम तो ये प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे.
0: नहीं कहते ना,
1: आज चेंज करेंगे ना, आज चेंज करेंगे.
0: नहीं हो रहा है ना.
1: नो नो, ये नहीं वर्ड कभी भी यूज करना है कि नहीं हो रहा है. दिस वर्ड इट सेल्फ इज डिसएम्पावरिंग. नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, सब तो ऐसे ही हैं. ये वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट थॉट.
0: मैंने एक आज अच्छा काम किया. वो जो जो लड्डू वाली को डांटा था ना बहन को, उसको बहुत प्यार किया बाद में. बाकी उसकी चीजों की तारीफ की, उसको सब बोला. मैंने उसको ये भी बोला कि आपके कंसर्न में आप बोले थे, वो सब मैंने ठीक ठाक उसको तो कर दिया. लेकिन थोड़ा सा अंदर ना, ऑनेस्टली मेरे अंदर अभी भी वो है.
1: अभी भी है ना. इट्स फाइन. अब मुझे वो प्रोग्रामिंग को चेंज करना है एंड ये प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जब हम सी एवरी थॉट अट्रैक्ट द नेक्स्ट थॉट एंड द नेक्स्ट, वाई दिस लाइन इज सो इम्पोर्टेंट.
0: हुआ ना मेरे साथ.
1: नहीं, जैसे अभी भी आपने कहा, बचपन से मेरे अंदर ये संस्कार है कि कोई अगर मेरे खाने के लिए मुझे टोकेगा तो फिर मुझे इरिटेट होना.
0: सिर्फ रोकेगा नहीं, मैं खाना खाता हूँ ना, अगर मेरी प्लेट में कोई सब्जी डाल दे, रोटी डाल दे, जबरदस्ती के कुछ बोलो खा ले, तो आप कौन? टोकने वाले भी नहीं सिर्फ, आप डालने वाले भी कौन?
1: लेकिन आप ये देखें कि हमने अपने जीवन के कितने साल, अ लाइफ टाइम, इस कंडीशनिंग से बिता दिए और पूरी जीवन बिता देंगे कि उस टाइम पे फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा. आई ईटिंग फूड, इज इट द टाइम टू गेट डिस्टर्ब? अब उसी चीज को कैसे फेस करना है?
0: आपने जो एक शब्द कहा था रॉयल्टी से,
1: सिचुएशन. लेकिन जब हम ये थॉट करेंगे कि मेरा ये संस्कार है बचपन से, तो हम अपने आप को लिबर्टी दे देते हैं, हम अपने आप को परमिशन दे देते हैं कि ये है, था और रहेगा. And that's why it says one thought will attract the next and the next. And every time जब इस kind of thinking की हम अपने inner being से alignment हिल गए.
0: But ये जो आपने line कही, ये था, है और रहेगा, अगर ये तीन शब्दों को हम अपनी originality में रख लें, याद कर लें,
1: हाँ,
0: जो soul इसमें इस line में कहा
1: inner
0: कि
1: being.
0: आपका कोई inner being को कोई ले जा नहीं सकता, आपके था, है और रहेगा.
1: Beautiful.
0: तो यहाँ से convert कर लेना.
1: वो जो inner being का original संस्कार था ना, वो तो ओरिजिनल था, है.

0: और रहेगा, लेकिन ऊपर ऊपर लेयर्स कौन से बने? अक्वायर्ड संस्कार के। अब इनर बीइंग का संस्कार है पीसफुल एंड पावरफुल, ठीक है। अक्वायर्ड लेयर ऑफ संस्कार इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बना कि कोई खाना डालेगा मुझे वेस्ट नहीं करना, वो एक सिचुएशन थी। फिर कोई डालने लगा तो मैंने रोका, लेकिन उस समय मेरा रोकने का तरीका कैसा था? एजिटेटेड,
1: 100%
0: डिस्टर्ब्ड
1: जी।
0: धीरे धीरे वो ग्रूव बन गया, वो एनर्जी पैटर्न बन गया। एंड अब इतने साल बीत गए और इतनी बार इतने लोगों के साथ खाना खाया और हर बार क्या कर दिया?
1: यही कर दिया।
0: अब कॉन्शियसली भी नहीं करना पड़ता है, अब वो करने का तरीका बन गया, तो वो ग्रूव फिक्स हो गया ना अंदर, वो पैटर्न पे ही जा रही है बार बार। अब अलग, बिकॉज दिस इज डैमेजिंग फॉर मी, आई एम लूजिंग माई इनर पावर।
1: तो सिर्फ सिस्टर ये खाने के लिए नहीं,
0: फिर हर एक
1: आदत पड़ जाएगी तो दूसरी चीजों में भी, भाई मुझे पसंद है या नहीं पसंद, बोलने का फिर वो ढंग तो वही रह जाएगा, पैटर्न वही बन जाएगा।
0: कौन सा पैटर्न?
1: ग्रूव जो आपने कहा था कि छिड़के बोलना, एजिटेटेड जो आपने शब्द यूज किया।
0: बिकॉज पावर कम होती जाएगी ना, एक सिचुएशन में पावर कम की
1: आदत भी पड़ जाएगी ना।
0: वो पावर कम होने के बाद आदतें भी कैसी बनेंगी फिर?
1: यू मीन टू से जिसकी चीज की आदत रहती है तो यू आर वीक, वीकनेस है वो।
0: एवरी टाइम कोई परिस्थिति में आई गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई ओरिजिनल बींग।
1: ओरिजिनल बींग में मैं कनेक्टेड था अभी कब?
0: ओरिजिनली कनेक्टेड थे ना
1: मैं, अब इस जन्म में तो था ही नहीं कभी फिर इसका
0: नहीं,
1: मतलब
0: अभी
1: तो...
0: भी होते हैं हम कितनी बार।
1: अच्छा,
0: सिर्फ फर्क ये है कि अभी हम कम होते हैं ना, तो हमें कई बार अवेयर नहीं होता उस चीज का। हाउ मेनी टाइम्स यू विल फील वेरी डीप इनर पीस, वेरी वेरी डीप। कितनी बार ऐसा होगा कि कोई आपके सामने बड़ी से बड़ी गलती कर दे और आप कहेंगे इट्स ओके।
1: एक्चुअली मुझे बड़ी से बड़ी गलती पे कभी गुस्सा आया भी नहीं। गाड़ी ठुक गई, घर के बड़े बड़े आईने का मतलब डोर ऑफ टूट गए, वहां मैं ठीक है अब क्या कर सकते हैं। मतलब जहाँ ज्यादा पैसों का भी नुकसान हो, ज्यादा बड़ा ये छोटी छोटी चीज की मुझे गंदी सी।
0: अब मैं अपने आपको ये बताऊं,
1: अब रियलाइज कर रहा हूँ बात करते करते,
0: बड़ी बड़ी चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया,
1: छोटी नहीं कर सकता।
0: छोटी छोटी चीजों में मैंने पैटर्न अलग बना लिया, लेकिन जो बड़ी चीजें एक्सेप्ट कर सकता है, तो छोटी चीजें कितनी इजीली एक्सेप्ट कर सकते होंगे?
1: पता नहीं, ये तो कर सकते होंगे, लेकिन मैं
0: तो इट्स लाइक सेइंग मैं पहाड़ उठा लेता हूँ, लेकिन पत्थर उठाने में मेरे हाथ को दर्द होता है। इट्स ओनली अ कंडीशनिंग कि पत्थर उठाते टाइम ना मुझे लगता है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सी हाउ इट इज कि बड़ी बड़ी बातें, और ये हम सबके जीवन के साथ है, हर एक के जीवन में चैलेंजेस आते हैं।
1: कोई बड़े बड़े चैलेंजेस में जैसे फादर की डेथ हो गई,
0: वो टाइम पे
1: मैं एकदम शक्ति में आ गया, ठीक है, रोया हुआ नहीं, ठीक है ये करना ऐसा हो गया, अब ये हो गया, घर एक्सीडेंट हो गया, इमीजिएटली अलर्ट हो गया, मैं गाड़ी बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बोलो। वहाँ छोटी सी चीज में कोई रोना है तो मैं वहाँ,
0: मेजोरिटी ऑफ अस गो थ्रू दिस। कोई बिजनेस की बड़ी चीज में फेस कर लेते हैं, कोई एक बहुत टर्मिनल इलनेस को क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉनिक बीमारी, कोई किसी नजदीकी संबंध की मृत्यु को फेस कर लेते हैं, और छोटी छोटी चीज में
1: चिड़चिड़ हो जाती है।
0: तो अपने आप को याद दिलाना, मुझे आत्मा के पास कितनी शक्ति है कि मैंने बड़ी बड़ी परिस्थितियां
1: कर ली,
0: लेकिन छोटी छोटी जो रोज और दिन में कई बार आती है। अब बड़ी परिस्थिति में पावर डिप्लीट नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियों में पावर डिप्लीट हो रही है। जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां बहुत कम आती हैं। आप अगर अपने जीवन काल को देखें तो बड़ी परिस्थितियां कितनी?
1: सालों में कभी आती,
0: सालों में एक, और छोटी दिन में कई,
1: मिनटों में आती रहती है, हर घड़ी छोटी बड़ी तो चलती रहती है।
0: छोटी मोटी में अगर ये कंडीशनिंग बन गई तो फिर पावर वेस्ट होती जाएगी। दिस इज सोल पावर, ये है बीइंग शक्ति। आंतरिक शक्ति ये है कि मुझ आत्मा के पास शक्ति है कि मैं कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, कोई भी क्राइसिस को क्रॉस कर सकता,
1: कोई भी, कैसी भी, कभी भी।
0: तो फिर छोटी छोटी क्रॉस करना, तो आज से मैंने वो कंडीशनिंग को चेंज करना है कि जो पहाड़ उठा सकता है वो पत्थर को तो एक उंगली पे हिला देगा, और पुराने वाला जो ग्रूव है उसको अब हम धीरे धीरे धीरे क्या कर देना है, फिनिश हो जाएगा वो पुराना ग्रूव, क्योंकि अब नए ग्रूव पे थॉट पावर चलनी शुरू हो जाएगी, एक नया वे ऑफ थिंकिंग।

0: And this line is very beautiful. My every thought will attract thought after thought. And wo meri inner being se ya to mujhe align kar dega, ya fir wo alignment shift ho jayegi. And jitna jitna hamara apni inner being se alignment shift hoti jati hai na, hum apni vastavikta se jitne jitne dur hote jate hain, hamari khushi, santushta, ye sab hame anubhav nahi hote hai. Phir sab kuch hote hue bhi, even power of position hote hue bhi, power of money, power of education, sab kuch hote hue bhi,
1: kuch nahi,
0: andar kamzor, dissatisfied, not contented, not happy, because under
1: I'm so depressed, I'm so lonely, I'm so unhappy, something is missing.
0: Missing.
1: Huh. I said, avoid it. Kya missing hai?
0: Andar ki power deplete hui na har choti choti paristhiti mein.
1: Jaise isne bola ki every thought after thought after thought. Aise
0: bhi. Ab kya karna hai mujhe wo thought us direction mein jate hi.
1: Edit. Cut.
0: Cut. Change. One, I prepare before a situation. Paristhiti aane se pehle जो conditions मुझे पता है कि इस परिस्थिति में मुझे disturb होता है, इस परिस्थिति में मैं disturb होता हूँ, आज ऐसे नहीं भी अगर हुआ, जैसे ही वो बात आई, देखा अपने आप को धीरे धीरे उस direction में जाते हुए, cut, change, ज्यादा देर उसमें अगर बह जाते हैं और फिर जैसे आपने last time कहा कई घंटे तो कई दिन तो कई जन्म, तो फिर कितनी शक्ति कम होती जाएगी. आज से एक प्रतिज्ञा अपने आप के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे,
1: अपने राजा की रॉयल थ्रोन.
0: दुनिया में देखो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, वी रेडी टू डू एनीथिंग, कहेंगे ना, क्योंकि आई वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, ये कहेंगे आई वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट पोजिशन, आई वॉन्ट टू रिमेन इन दिस पावर and I will do anything for that position. Ye mera jeevan jeene ka tarika. And when I am in this power, to fir contentment, santushta kitna atma ko anubhav hoga. This is the need of power for all of us. Jo power ki hum baat karne na, actually it comes from energy. Atma, jaise humne first episode mein dekha, atma ki shakti, parmatma ki shakti. Isliye humne kaha shiv aur shakti. To atma wo shakti hai, energy hai. उस एनर्जी से हमने पावर क्रिएट करनी है. दुनिया में आप देखो कितने एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि एनर्जी है, उस एनर्जी से हमने पावर क्रिएट की, राइट? बट वी हैव टू हैव अ मैकेनिज्म इन बिटवीन जिससे हम उस एनर्जी से पावर क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी है, हमने पावर क्रिएट की है उससे. लेकिन बीच में एक चीज आएगी. बचपन में हम एक सिंपल एग्जाम्पल करते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया, ठीक है, फिर उसको कागज के ऊपर या सूखे हुए
1: कपास
0: के ऊपर फोकस कर दिया. सूर्य वही है जो पहले था, अनलिमिटेड एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अनलिमिटेड एनर्जी उस कागज पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई. लेकिन जैसे ही उस एनर्जी को फोकस किया तो उसने उस कागज पर प्रभाव डाल के उस कागज को परिवर्तन कर दिया. मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके फोकस किया ना, उसको कॉन्सेंट्रेट किया ना उस एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर. जब तक वो बीच का मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था, सूर्य की बेअंत शक्ति थी, लेकिन उससे पावर नहीं क्रिएट हो पाई. सो आई नीड दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इन माई लाइफ कि इस एनर्जी को, अब जो आत्मा की एनर्जी है, इसको मैं किस चीज पे फोकस करूं, क्या मेरा फोकस पॉइंट होगा जिससे ये पावर बनेगी. अब क्योंकि अभी तक वो एनर्जी है, पावर नहीं बन रहे. दैट्स द डिफरेंस, कन्वर्टिंग एनर्जी टू पावर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग.
1: आप बताइए कि हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ से लाएं?
0: वो है, वो तो ऑलरेडी बैठी हुई है.
1: नहीं, मैं फोकस कैसे करें?
0: फोकस हमें चूज करना है मेरे जीवन का, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पर्पस ऑफ माय लाइफ.
1: ओके,
0: माय पर्पस ऑफ माय लाइफ क्या है? जब मेरा जीवन का पर्पस क्लियर होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, तो हमारी हर थॉट इंटरेक्शन में वो एनर्जी उस पर्पस के द्वारा पावर में रेडिएट होगी.
1: मेरा पर्पस ये है कि जैसे लोग

0: बुढ़ापे के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट पैसा वैसा सब रखते हैं, तो मैं अपने अगले जन्म के लिए अच्छा कार्मिक एक बंडल बना के रखना चाहता
1: हूं। चलो ठीक है, तो अगला जन्म अच्छा करने के लिए पहले कौन सा जन्म अच्छा करना पड़ेगा?
0: अभी का।
1: अभी का सिंपल है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में रख लीजिए, ठीक है। अब आत्मा की शक्ति है, ये पर्पज है अब आपका, कि माय पर्पज इज कि मेरा ये जीवन कैसा होना चाहिए,
0: कि अच्छे कर्म के मेरे वो खाता बने।
1: ठीक है, मतलब मेरा हर कर्म कैसा होना पड़ेगा, श्रेष्ठ कर्म होना होगा, ठीक है। अब अगर ये पर्पज ऑफ लाइफ उस क्षण याद था जब वो बहन ने वो मिठाई खिलाई, तो रिस्पॉन्स कुछ और हुआ होता है। पर्पज ऑफ लाइफ ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है। मेरा पर्पज ऑफ लाइफ, अब आपने कहा मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है कि मेरे को अगले जीवन में अच्छे कर्म का खाता लेके जाना है, तो अगले जीवन के लिए मतलब मुझे ये जीवन में क्या करना पड़ेगा,
0: अच्छे कर्म करने।
1: अच्छे कर्म, तो ये ब्यूटीफुल पर्पज ऑफ लाइफ है। अब लेकिन ये पर्पज ऑफ लाइफ पर मुझे सारा दिन क्या करना पड़ेगा?
0: उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे पैसे कमाए, शूटिंग किया, फिल्मों में गया,
1: पर्पज था ना उस टाइम,
0: पर्पज था,
1: पर्पज
0: वैसे अब इसके लिए मुझे मेहनत करनी
1: पड़ेगी। आपके पास शक्ति थी, फिर आपने एक पर्पज ढूंढा, वो पर्पज क्या था, मुझे ये बनना है, ठीक है। उस पर्पज के ऊपर उस शक्ति को जब कॉन्सेंट्रेट किया, पावर आ गई, रिजल्ट आ गया।
0: अब मेरे पास शक्ति है,
1: शक्ति तो है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का
0: पर्पज
1: पर्पज नहीं याद रहता, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है?
0: पर्पज जो दीवानगी, वो जो पागलपन, वो मैडनेस थी कि मैं सब कुछ दुनिया छोड़ने तैयार था,
1: पर्पज
0: दुनिया छोड़ने तैयार था टू बिकम एन एक्टर, उतनी स्ट्रांग नहीं है ये वाली,
1: तो वो बनानी ना। जब आपने क्लियर कह दिया, आपने कहा कि ये मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है,
0: पर्पज तो है,
1: क्योंकि अब अगर मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों का खाता अपने साथ आगे लेकर जाना है, तो मुझे वो पर्पज ऑफ लाइफ हमेशा क्या करना पड़ेगा? सपोज आपको याद था कि मुझे पर्पज ऑफ ये है कि मुझे एक्टर बनना है, वो आपका गोल था। सी, गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, पर्पज ऑफ लाइफ इज कंटिन्यूस।
0: मेरी ये लाइफ का भी नहीं है, मेरे तो पर्पज ऑफ लाइफ अगले जन्म
1: पर्पज ऑफ द सोल ना,
0: लॉन्गर
1: पर्पज ऑफ द बींग। तो उस लाइफ टाइम में छोटे छोटे गोल्स आएंगे, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये पर्पज ऑफ लाइफ कंटिन्यूस है। जब हमने कहा मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है श्रेष्ठ कर्म करना, तो मुझे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी बात आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, माय पर्पज ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया, कुछ भी कहा और मेरे पर्पज ऑफ लाइफ को
0: हिला के चला गया।
1: पर पर्पज ऑफ लाइफ क्या हुआ?
0: छोटे थे हम तो वो ब्लॉक्स के ऊपर कोई घर बनाते थे, तब भी किसी को नजदीक नहीं आने देते थे, पैर लग जाएगा मेरा घर गिर जाएगा, मैं घर बना रहा हूँ ऊंचा, वो इतना उसको संभाल के रखते। और यहाँ तो कोई भी आता है मुझे गिरा देता है मेरी पर्पज ऑफ लाइफ।
1: सो पर्पज ऑफ लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट।
0: या तो पर्पज ऑफ लाइफ मेरी वीक है, मेरी थॉट की जो मेरी चाहत है मेरी चाह वीक है, या फिर मैं वीक हूँ।
1: पर्पज ऐसी चीज है जो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। कोई अपनी एनर्जी को यूज, आज दुनिया में भी हम हिस्ट्री को अगर देखें, कोई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए यूज कर दिया, किन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूज किया, और कईयों ने अपनी आंतरिक शक्ति को दुनिया के बहुत सारे नुकसान और विनाश के लिए यूज किया। वो भी शक्ति थी, वो भी शक्ति है। दैट सोल वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अ वीक सोल कैन नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस, लेकिन द सोल यूज इट्स पावर।
0: एटॉमिक एनर्जी को कोई कैंसर ठीक करने के लिए यूज करता है, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, या सैटेलाइट के लिए, और वही एटॉमिक एनर्जी को कोई बॉम्ब बना के,
1: क्योंकि एनर्जी वही है, लेकिन किसी ने पर्पज यूज किया हीलिंग का, और किसी ने उसका पर्पज यूज किया वॉर का। तो एनर्जी तो वही थी, पावर भी उसने दी, लेकिन पर्पज कौन सी डायरेक्शन में था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव टू हैव दैट कंपस हमारे साथ हमेशा, कि पर्पज ऑफ माई लाइफ एंड गाइडेड बाय वैल्यूज ऑफ माई लाइफ। सपोज एक कंपनी है, दो लोग चलाते हैं, दोनों का पर्पज

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
3: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
2: हाँ।
3: ताली भी पिट जाएगी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। टाल मटोल अर्थात टालना, अगर मगर आना पानी, अनसुना बहाने बाजी, दरकाना आदि। टालने का दोष समय की पाबंदी की गुण की ठीक विपरीत है। वर्तमान समय ज्यादातर लोग अति आवश्यक कार्य को टालने वाले रवैये को ये शिकार है। समय आने पर कर लेंगे या तो बाद में भी हो सकता है, चिंता मत करो, हो जाएगा, अभी तो वक्त है। ये सब फिक्रें टालने की प्रति को दर्शाते हैं। कुछ समय के बाद यह टालना भी व्यक्ति की आदत बन जाती है। चिंता, उदासी, बेचैनी और साथ झुंझलाहट आदि की वजह से भी व्यक्ति विलंब की स्थिति में आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर टाल मटोल के कारण क्या है। जैसे कुछ व्यक्ति इसलिए मन को टाल देते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी तो उस कार्य को करने का समय ही नहीं आया है, बहुत समय पड़ा है, इसे तो बाद में भी कर लेंगे। और यह प्रतिक्रिया अंत तक बनी रहती है। फिर व्यक्ति आलस्य के कारण उस कार्य को टालता ही रहता है। कुछ लोग इसलिए टाल मटोल करते हैं कि उन्हें यह लगता है कि यह क्या कार्य तो बहुत बड़ा है, इसके लिए अलग से एक निश्चित समय की आवश्यकता है, समय रहते बाद में ही इसे करेंगे, वरना दूसरे जरूर

खड़े रह जाएंगी। कुछ लोगों को कार्य में विफल होने का डर सताता रहता है, अर्थात हिम्मत हीनता का शिकार बन जाते हैं और कार्य को टाल देते हैं कि देखेंगे हम कर पाएंगे या नहीं। ऐसे व्यक्ति डर के कारण किसी भी कार्य में कभी भी सहयोगी नहीं बनते। कई व्यक्ति यह कार्य करना चाहिए या नहीं इस बात का फैसला ही नहीं कर पाते और उस कार्य को टाल देते हैं। कुछ लोग इसलिए भी कार्य को टाल देते हैं कि क्योंकि उन्हें अंत समय में होने वाली भाग दौड़ में रस मिलता है और उत्तेजित होकर कार्य करने का आनंद लेते हैं। इससे हो सकता है कि कार्य समय पर पूरा ना हो। मेहनत की भी उनको लगातार अधिक करनी पड़ती है, थकावट के कारण परेशान भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति हूँ, आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है टालमटोल भी एक विकार है। टालमटोल के नुकसान क्या है? आत्मविश्वास डगमगाता है, इससे आत्मविश्वास कैसे डगमगाता है? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक टालमटोल करता रहेगा तो एक दिन कोई भी व्यक्ति उससे काम करवाना पसंद नहीं करेगा। समय पर कोई भी कार्य नहीं करने की इस आदत के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान, दुखी और भागते हुए दिखाई देगा। कार्य को लेकर उसके मन में डर इस कदर बैठ जाएगा कि वह कोई भी कार्य आगे के लिए अपने हाथ में लेने से बचता नजर आएगा। यह टालने की आदत दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाएगी कि हम अनेक प्रकार के बहाने खोज निकालेंगे। टालमटोल की प्रक्रिया यदि लंबे समय तक चलती रहे तो शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर हो सकती है। इसके बाद चिंता, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन

चिल्लान अनि सन्धि आ जाते है, अर्थात आत्मविश्वास डगमगा जाता है तथा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। एक तरफ हम देखते हैं आत्मसम्मान भी कम होता है, काम टालने वाले को अक्सर अपनी इस आदत पर गर्व होता है, लेकिन काम टालना एक बुरा विचार है। टाल मटोल करने वाले लोग तनाव से भरे हो सकते हैं, वह यह आदत उनको बीमारी बना सकती है। अहंकारियों को टाल देने की आदत की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़े हो सकती है, परंतु जो टाल मटोल करते हैं उनका आत्मसम्मान भी कम होता है। एक तरफ हम देखते हैं कार्य की जो गुणवत्ता भी उनमें नहीं रहती, कोई काम सामने आता है तो लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर कहते हैं कल सुबह कर लेंगे या दोपहर में कर लेंगे। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और काम वहीं का वहीं रह जाता है। आज का कार्य जुड़कर वह काम और अधिक बड़ा हो जाता है, इससे कार्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ जाती है। फिर यदि वह कार्य जल्दी कर लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता नहीं रहती। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे आकर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। जैसे कि हम देखते हैं टाल मटोल का नियम है इंतजार करो। टाल मटोल करने वाले का जो है प्रिय वाक्य होता है, इसे करने वाला हूँ किसी दिन तो अवश्य करूंगा, और इसका जाप करते हुए अपने वर्तमान

अवसरों के प्रति अंधी बहरी और गूंगी हो जाते हैं। टालमटोल का तो नियम है, इंतजार करो, अभी नहीं किसी और वक्त। टालमटोल बीज है और इसे करने वाला हूँ, वह पेड़ है जिससे यह कल का जुनून उत्पन्न होता है। टालमटोल के संस्कार को कैसे बदले, कल का काम आज, आज का काम अभी, यही है उसका मूल मंत्र, इस संस्कार को बदलने का। यदि किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि यह काम 2 सेकंड बात करूंगा, तो यह आलस्य, अलबेलीपन और टालमटोल की निशानी है। काम से जुड़ी मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि कल का काम आज, आज का काम अभी, तभी हम महान कार्य कर पाएंगे। दुनिया के महान लोगों की आत्मकथा से भी यही साथ निकल कर आया है। निश्चय से कहे मुझे अवश्य करना है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो एकाएक ही आदर्श बनकर प्रकट होता हो। हम जो भी करना चाहते हैं, हाँ, पाना या बनना चाहते हो, उसे साकार करने और उसका फल पाने से पहले हमें उसे शुरू करना होता है। हम अगर आशा, सपने और इच्छाएं छुपा कर रखते हैं, तो उन्हें आजमाने के साहस के बिना दिन, महीने, साल गवा देते हैं, तो वे एक दिन नाकामयाब हो जाते हैं। अतः जिस काम से हम जुड़े हैं, उसे, उसके लिए निश्चय से कहें मुझे अवश्य करना है, मुझे ही करना है, यह कार्य मैंने ही चुना है, तब कोई और क्यों करेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे रियावास में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: दे ओ मेरा रंग दे बसंती झोला ओए रंग दे बसंती झोला।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

प्यार के जमाने आए प्यार के जमाने दुल्हन को मनाने दुल्हन को मनाने ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी।

0: सुनता है कम,
1: जो खुशी उसको सनम,
0: दिल सुनता है कम,
1: झूठी बातें है बलम,
0: दिलो प्यार की कसम,
1: झूठी बातें है बलम,
0: दिलो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, फूल समझ कर शोले को उठाने वाला, आग से खेल वही जो है जल जाने वाला।
2: आजा धुआ जा,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गुरु गोविंद दोनों खड़े। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय यश, पंकज, वेदांत, विनोद, सैंडी, रवि, आकाश, उन्नति, दृष्टि।
2: हर रोज सर यही कहकर कक्षा समाप्त करते हैं। इस हौसी को मन में अच्छी तरह से बसाते हुए हम आज की योग कक्षा को यही विराम देते हैं। मैंने कितनी अच्छी तरीके से नकल उतारी ना।
3: कुछ भी कहो, सुबह सुबह यह योग की कक्षा से बस आनंद ही आनंद रहता है दिन भर।
4: मुझे तो हर काम को करने की बस डबल हिम्मत सी हो जाती है।
1: चलो भाई चलो, सब उधर क्यारी की तरफ चलते हैं। आज तो हम सब बासु अंकल का जन्मदिन मना रहे हैं।
5: कैसे? केक काट कर?
6: जी नहीं, पार्क में आम का पेड़ लगाकर।
3: कितना अच्छा आइडिया है। अगर सब अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं तो धरती हरी भरी हो जाए।
5: बासु अंकल ने ही तो इस पार्क में पत्तों को जलाने के खिलाफ आवाज उठाई थी।
1: आज उन्हीं की वजह से तो सबने मिलकर उधर कंपोस्ट पिट बनाया है।
2: और ये सुंदर फूलों के पौधे भी तो उन्होंने ही लगाए थे।
3: बड़ी मेहनत करते हैं अंकल, माली के साथ साथ मिलकर काम करते हैं।
1: दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं।
5: मतलब?
1: बासु अंकल उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और माली उन्हें पौधों का ज्ञान देते हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु हैं।
5: फिर तो गुरु पूर्णिमा पे दोनों एक दूसरे के पांव छूते होंगे।
3: फिर से तुम लोगों ने हंसी में एक बहुत गहरी बात कह दी है।
5: क्या?
3: देखा जाए तो पूरी सृष्टि में ही हमारे गुरु फैले हुए हैं।
1: ठीक कहते हो दीदी, बल्कि पूरी सृष्टि ही हमारी गुरु है।
3: हम सबसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। बापू ने तो जेल में रहते हुए कपड़े की मशीन से सिलाई सीखी।
7: क्या मतलब, दर्जी की तरह?
3: जी हाँ, एक मोची से जूते की मरम्मत करनी सीखी और अपने आश्रम हर समय हर तरह की सफाई करने के लिए तत्पर भी रहते थे। एक बार एक बड़े से पतीले को मांझने लगे। इतना बड़ा पतीला मांझते मांझते बहुत दम लग रहा था, तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी बा आई और उनके हाथों से पतीला छीन लिया और थोड़ी डांटते हुए कहने लगी, बहुत लोग हैं इस काम को करने के लिए, आप आराम कीजिए।
2: हाँ हाँ, बापू को बा का कहना मानना ही पड़ा।
7: मुझे तो एक कविता याद आ रही है जो मैंने एक कॉन्टेस्ट के लिए याद की थी।
5: मैंने भी, चलो मैं एक कविता सुनाता हूँ।
4: मैं भी।
3: ओहो, फिर मैं समझी थी तुम लोग बड़े हो गए हो।
1: दीदी आपने भी तो मैं बोला।
3: हाँ हाँ ठीक कहा, ये मैं बड़ी ही बलवान है।
5: क्या मतलब दीदी?
3: मतलब अगर ईश्वर से संबंध की बात की जाए तो कहा जाता है, जब मैं हूँ तो तू नहीं, जब तू है मैं नहीं।
5: आपका मतलब है मैं का मतलब अहंकार से?
2: मैंने तो एक कविता सुनाने की बात की थी और यहाँ शुरू हो गई एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा।
3: अच्छा तो सुनाओ अपनी कविता, सब सुनाओ।
2: सब?
3: हाँ हाँ सुनाओ, जिसे जिसे आती है बोलो।
2: फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना।
8: ओ, ये वाली, ये तो हम सब में याद है, आओ सब मिलकर बोलते हैं।
9: सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूर तरह पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो तुम्हें जीवित करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जला

0: चलो चलो, सब इशारा कर रहे हैं जल्दी आने के लिए।
1: चलो चलो, बाद में बासु अंकल सबको अपने घर भी तो ले जा रहे हैं नाश्ते पर।
2: कह रहे थे पूरी आलू और हलवा बनाएंगे सबके लिए।
3: मुबारक हो अंकल।
4: हाँ हाँ, धन्यवाद। ये देखो, ये मैंने उधर उन सब लोगों को भी बुलाया है जो मेरी सेवा करते हैं। हमारे पार्क का माली, हमारी लोकेलिटी का गार्ड, पास के स्टोर वाले अंकल, मुझे रोज फल सब्जी पहुंचाने वाला भैया, ये सब भी मेरे मित्र हैं।
2: मित्र या गुरु?
4: गुरु?
0: अभी अभी दीदी यही कह रही थी, हमारे सृष्टि में सब हमारे गुरु हैं।
4: हाँ वो तो है।
5: एक बात बताऊं, उस दिन मैं पार्क में घूम रही थी तो बड़ा मजा आया। मैंने एक घास काटने वाली महिला को देखा, दूर से हरी हरी घास के बीच बैठकर घास काटती हुई, रंग बिरंगे कपड़ों में वह बहुत अच्छी लग रही थी।
0: मैं कल्पना कर सकता हूँ।
5: हाँ हाँ, तो मैं उसके पास तक चल कर गयी। उसने मुझे अपने पास आते देखा और जैसे भांप ही लिया कि मैं दराती से घास काटना चाहती हूँ। उसने बिना कुछ कहे मुझे दराती पकड़ा दी। और मजे की बात यह है कि जब मैंने घास काटने की कोशिश की तो मुझसे कटी ही नहीं।
3: क्यों?
5: हाँ हाँ, दूर से आसान सा काम दिखने वाली चीज के लिए भी एक खास तरह की तरकीब चाहिए। दराती को एक खास तरह से पकड़ा जाता है, घास को दूसरे हाथ से एक तरह से पकड़ा जाता है, फिर एकदम जड़ों के पास से एक एंगल से उसे काटा जाता है।
6: दीदी आपने तो जैसे घास काटने पर पूरी रिसर्च कर डाली।
5: हाँ हाँ, ठीक कहते हो। इतनी आसान दिखने वाली चीज इतनी मुश्किल हो सकती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था।
7: यानी उन पलों के लिए घास काटने वाली महिला आपकी गुरु हो गई?
5: हाँ, उसकी जो भी कला थी, जो भी काम था, उसने मुझे सिखाया। फिर मैंने उसका धन्यवाद किया और घर वापस आ गई।
8: ऐसे कभी कभी कोई बिल्कुल ही अलग सा काम करने में कितना मजा आता है।
6: एक बार मेरी मम्मी गाड़ी चला रही थी, हमने बाजार से सब्जी ली थी और घर वापस जा रहे थे।
0: अच्छा।
6: कुछ अलग करने की बात से ये याद आया।
0: बताओ।
6: उन्होंने दो मजदूर औरतों को एक रिक्शे वाले से कम पैसों में ले चलने को कहा। उन्हें हमारे घर के पास ही जाना था। मम्मी ने तुरंत उनसे कहा, चलो हम उधर ही जा रहे हैं, पूरे पैसे बचा लो, और उनको ले ही अपने साथ और सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया।
0: वाह,
6: बड़ा मजा आया।
0: अरे मैं तो खाली पेट आया था। अच्छी बात है, यहाँ खाना मिल रहा है। और
2: ये लो जी लो, मैं पूरियाँ बांटने का काम कर रही हूँ।
1: क्यों नहीं, चर्चा के साथ साथ पूरियों पर भी तो ध्यान रहना चाहिए।
0: हमारी योग कक्षा के यही तो मजे हैं, हर एक का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम से और गर्मा गर्म चर्चा भी करते रहते हैं।
9: हाँ हाँ, बस बस बहुत हो गया, अभी हलवा भी तो खाना है।
2: आज तो कोई जाने नहीं है, चलना है। बासु अंकल को और भी तो काम है।
4: अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है, सब मिलकर बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, इस बार का तो मैं अपना जन्मदिन हमेशा याद रखूँगा। क्या मजेदार डिस्कशन हुई है हमारे योगाभ्यास ग्रुप की।
3: हाँ हाँ, कल मजा आ गया, पूरी आलू और हलवे का भी।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

संभल ओए मोच न आ जाए। गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो हमें भी चलो ले जा।

0: मोहब्बत की बिरयानी।
1: ओ ओ कौन असरानी?
0: कदर मोरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियाँ मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
1: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
0: बट यू आर माई लैला एंड आई एम योर छैला।
1: ओह अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।

0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे,
0: इतना तो याद।

0: आते जाते रख तुम यारों से ये पूछा।
1: एक ही सवाल था यारों से ये पूछा,
0: कहाँ पे वो फूल है बहार।

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार

चांद के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का

बोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें, शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ।

दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी मुकड़ा ऐसा है उस आलम का उसने बड़ा है सारे आलम का मुकड़ा है।

सुख है वो छुई मुई, अपने आंचल से खुद दब रही है। एक चंपा के मदहोश डाली।

तो कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी।

आपस में मोहब्बत सीखो, दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो, छोड़ो चलन नफरत का। रस्म मोहब्बत सीखो, दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो, दिल जो किसी का चुराओ, दर्द को भी अपनाओ, अब तो हमारे हो।

फिर वो झलक दिखलाओ, आंखों से दिल में समाओ, अब तो हम

0: बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से।
1: जा जा
2: अरे जा जा।

मचल कर नाचे जाती है तो धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है। हे हे हे जा जा अरे जा जा जा जा जा रे

कर तेरा दिल उलझाऊं। खेल खेल में मेलो दिल का ऐसा खेल दिखाऊं, नजरों की मैं दौर फेंक कर तेरा दिल उलझाऊं। पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी। बिना तीर दिल घायल कर दूँ ऐसा मैं हूँ शिकारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी।